दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है सितारा।

थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे सितारा फिल्म से, आवाज़ें भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत है खानदान फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब आपको सुनवाते हैं बावर्ची फिल्म का गीत, आवाज़ें मन्ना डे और असरानी की।

और दोस्तों इस गीत के साथ ही मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि यानी 17 अगस्त 2026। सुबह के 5:53.35 हुए हैं। अब हमारे प्रातकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब पेश है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10

पर भक्ति, संगीत पर आधारित होगा कार्यक्रम अर्पण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 25। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 6:44 पर। गोल्ड सुप्रभात का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:10 और आज सवेरे कार्यक्रम होगा 7:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं सुबह 8:45 पर। दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे सुबह 10:30 पर। तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:10 पर। इस बार आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड के मध्य महेश्वर के बारे में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, ये कार्यक्रम सुना जा सकता है दोपहर 1:10 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे सचिन पिलगांवकर। संगीत.com, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2:30

मन भवन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:10 पर। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए शाम 4:10 पर। परिक्रमा कार्यक्रम होगा शाम 4:30 पर, जिसे आप हिंदी और अंग्रेजी में सुन सकेंगे। गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 पर, और शाम 5:30 का समय रहेगा फोन इन प्रोग्राम का। विश्लेषण कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे शाम 6:10 पर, और 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुना जा सकता है शाम 7:10 पर, और सांझ ढली कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:25 पर। मधुरिमा कार्यक्रम होगा रात 8:10 पर। स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। स्पॉटलाइट 9:15 पर, और पब्लिक स्पीक फोन इन प्रोग्राम का समय रहेगा 9:30। हर श्रृंगार कार्यक्रम का आनंद लीजिए रात 10:30 पर, और 10:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत। तो ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम।

0: आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त तो चला है 6:11 और 58 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। और आज अर्पण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो हम सभी अपनी जिंदगी से जोड़ना चाहते हैं, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, या और बड़े हो गए हों, या जिंदगी के किसी भी कगार पर हों तभी। और ये शब्द है स्वतंत्रता या आज़ादी। हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई हमें किसी भी चीज़ में रोके टोके ना, हम जो चाहते हैं वो करते रहें, जैसा जीना चाहें वैसा जी लें। लेकिन कभी क्या हमने सोचा है कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? और ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है अभी जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना के चुके हैं। जानते हैं, जब हम अपने आप से कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, तो बात बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन अपने अंदर की स्वतंत्रता, उसके बारे में सोचा जाए तो एक प्रश्न ज़रूर आ जाता है, और वो है कि क्या सब कुछ हमारे नियंत्रण में है? अब देखिए, हम मेहनत कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या वो भी हमेशा हमारे हाथ में होता है? और अगर नहीं होता तो क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से। वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, के स्वतंत्र होने का मतलब तुम सब कुछ कर रहे हो वो है, लेकिन जो फल है वो स्वतंत्रता तुम्हें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र होने का अर्थ हुआ कि अपने प्रयासों में पूरी स्वतंत्रता, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो छोड़ देना। अब इसे कैसे समझा जाए, या क्या ये समझने के लिए हमें अपना समय देना चाहिए, ये आप सोचिए। फिलहाल ये सोचने के लिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं कि आप साथ साथ एक भजन सुनिए और इस बात को सोचते जाइए।

जी हाँ, तो बात हो रही थी स्वतंत्र रहने की, आज़ाद होने की और अपने हिसाब से काम करने की, लेकिन इस बात की भी कि हम अपने आप को कितना ही स्वतंत्र मान लें, अपनी ज़िंदगी का मालिक मान लें, लेकिन फिर भी अंदर से अपने आप से पूछें तो ये एहसास हो ही जाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है नहीं। हम मेहनत कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में होता नहीं। जैसे एक किसान है, वो बीज बोता है, खेत तैयार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में है नहीं। तो अब क्या ये सारी बातें सोच के किसान काम करना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो खेत में जाना छोड़ देता है? नहीं। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते रहता है और आकाश की ओर विश्वास से देखता रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। तो जब हम सब कुछ अपने आप करते हैं, उसमें स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन प्रयासों में अगर परिणाम छोड़ देते हैं तो वास्तविक वो स्वतंत्रता महसूस होती है या उसे हम फील कर पाते हैं। तो अगर एक्चुअली ये समझना है कि आप स्वतंत्र हैं, तो ये भी समझना होगा कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, लेकिन परिणाम के बारे में नहीं सोचना। और परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचना? क्योंकि उसको अपने मुट्ठी में करने या उसको कंट्रोल करने पर हमें अहंकार हो जाता है। पर फिर ये भी आता है कि क्या हम अपने परिणाम के लिए उस ऊपर वाले पर निर्भर हो जाएं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं होगी? क्यों किसी पर निर्भर हुआ जाए? क्यों हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने आप क्यों नहीं जी लेते? अब बचपन से सिखाया भी तो यही जाता है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो क्यों हम ऐसा सोचें कि हम परिणाम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहे? अब ये डिपेंडेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने पैरों पर खड़े रहना जरूरी है, लेकिन सिर को झुकाकर चलना जरूरी है। इसी से हमारा अहंकार खत्म होता है। तो परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, मेहनत पूरी लेकिन अहंकार शून्य, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होकर जी पाते हैं। नहीं तो अपने अहंकार के वशीभूत होकर, यानी अहंकार के से इन्फ्लुएंस होकर, हम अपने जीवन को ठीक से जी भी नहीं पाते। तो प्रयासों पर भरोसा रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन संघर्षों के साथ ये समझना जरूरी है कि हमारे उन प्रयासों का जो भी परिणाम मिलेगा वो हमारे बस में नहीं है, पर जो भी मिलेगा उसे स्वीकार हम कर लेंगे। इतना सा समझने से काफ़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे अर्जुन की हो गई थी। क्या हुई थी, कैसे हुई थी, बात करेंगे, पर पहले ये भजन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:27 और ठीक 3 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता के बारे में कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या नहीं, और इसी में हम बात कर रहे थे कि अर्जुन जो थे वो भी तो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशान थे और उनकी दुविधा हमारी दुविधा जैसी थी। कैसे थी? कि वो युद्ध क्षेत्र में थे, उनके सामने एक युद्ध था, कर्तव्य था, उनके सामने रिश्ते थे, उनके मन में बहुत गहरा भ्रम था, उनके हाथ से गांडीव छूट गया था और श्री कृष्ण उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमारे सामने भी युद्ध का मैदान है हमारा जीवन, हमें भी बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, हमारे भी रिश्ते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारा भ्रम होता है उन रिश्तों को लेकर, और हम भी कई बार गिव अप कर देते हैं या हमारे हाथ से गांडी वैसे ही छूट जाता है। लेकिन जब हम गिव अप कर देते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है कि अर्जुन अपनी समस्या से भागे नहीं थे, उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ, वही मार्ग दिखाएंगे। और यही हमारी स्वतंत्रता की बात आ जाती है, हम गिव अप कर देते हैं बजाय इसके कि हम उस ऊपर वाले से कुछ मांगें, उनसे कहें कि मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है ना कि किसी के ऊपर निर्भर हो जाने का मतलब है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि बचपन से सिखाया ऐसा जाता है कि अपने पैरों पर खड़े रहो। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि पैरों पर खड़े रहना ज़रूरी है, लेकिन अपना सिर नवा कर रखना यानी झुका कर रखना भी, चलना झुका कर रख के चलना भी ज़रूरी है। तो अर्जुन ने यही किया था, और यही अगर हम करते हैं तो वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन का कुरुक्षेत्र है ना, जहाँ पर नौकरी का निर्णय करना है, परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं, असफलताएँ हैं, सफलताएँ हैं, भविष्य की चिंता है, ये सब कुछ खुद तय नहीं कर सकते। तो जैसे अर्जुन ने कहा था कि मेरी बुद्धि सीमित है, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, ऐसे ही हम भी ऐसा ही कह सकते हैं, और तब हम स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि तब हम उस सीमित बुद्धि से उतना तो करते हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन उसके आगे का उस ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं और स्वतंत्रता से अपने काम को करते जाते हैं। आप सोचिए कितना प्रेशर होता है अगर आपको ये पता हो कि आपको यहाँ तक पहुँचना ही है। जैसे बच्चों को आप देखिए कितना प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर अगर उनके माँ बाप लगातार ये कहते रहे कि तुम्हें फर्स्ट आना ही है, आना ही है, आना ही है, तो वो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ ये सोचता रहता है कि फर्स्ट आने में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे आप स्वतंत्रता दे देते हैं कि तुम ठीक से पढ़ो, अपने पूरे एफर्ट्स, अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ो, जितना अच्छा कर सकते हो करो, तो वो वास्तव में शिक्षा ले पाता है और इस प्रेशर से स्वतंत्र होता है कि उसे फर्स्ट आना है। बस जैसे ही प्रेशर खत्म होता है ना, तो हम अपने काम को करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं और उसे अच्छी तरह से कर भी पाते हैं। लेकिन अब ये समझना कि हमारे हाथ में है क्या क्या, ये भी जरूरी है, इसे भी समझेंगे।

जी हाँ, तो बात हो रही थी आज़ादी की कि हम आज़ाद अपने आप को समझते हैं, पर क्या वास्तव में आज़ाद हैं? और आज़ाद होने का मतलब ये भी तो होता है कि हम हर चीज़ को अपने हाथ में समझें, यानी हर चीज़ को कंट्रोल करें। इसे हम आज़ादी मानते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से काम करना, जो हमें पसंद है वही हम करें, जो नहीं पसंद है ना करें। तो क्या ये आज़ादी है? पर जानते हैं, ये आज़ादी जो है ये हमें वास्तव में और बांध देती है, क्योंकि या तो हम ऐसा समझते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है, जो वास्तव में होता नहीं है, और दूसरा ये समझते हैं कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, और ऐसा समझते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो सही मार्ग जो है वो इस श्लोक से समझ में आता है जो भगवद गीता में हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कर्मण्य बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, के जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी निष्ठा से करूँ, जो हाथ में नहीं है उसे ईश्वर को, परमात्मा को, परवरदिगार को सौंप दूँ। बस इतना करने से ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और यही स्वतंत्रता हमें बेहतर जीवन दे सकती है। इसीलिए अगर वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आज़ाद होना केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना है? क्या आज़ादी के सिर्फ यही मायने हैं? ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये भजन सुनते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी आज़ादी की, और आज़ादी के बारे में जितनी भी हमने बातें की कि हम कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, जो कुछ हमारे हाथ में है उसे हम बहुत अच्छी तरह से करें, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन एक और आज़ादी की ज़रूरत है, और वो है अपने मन की आज़ादी, यानी जो हमारा अधिकार है उसकी आज़ादी। हमारे मन पर हमारा अधिकार है, और इसी वजह से हम क्रोध कर लेते हैं, हम आलस्य में आ जाते हैं। तो इस पर नियंत्रण करना सीख जाएं, हम आलस्य पर नियंत्रण करना सीखें, हम दूसरों की राय से प्रभावित ना हो, अपनी खुशी खुद तय करें, तो हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम हर छोटी बड़ी असफलता को अपना सकें जो हमें अंदर से मजबूत करती है, तो हम आज़ाद हैं। इसलिए सुबह का समय अपने आप को ऐसे प्रशिक्षित करने का है, तो आप ऐसे ही खुद को प्रशिक्षित कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अर्पण सुनते रहिएगा। फिलहाल समय है कि आप सुने श्री रामचरितमानस।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी, किंतु आसन्न

वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आई

आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अम्सारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:10 और ठीक 57 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात। एक नया दिन, एक नई सुबह और जीवन को और थोड़ा सा सुंदर बनाने का एक नया अवसर, बस इसी के साथ शुरुआत की जाए ना, तो फिर अपने आप ही पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। वैसे सच कहें तो हर सुबह अगर देखा जाए तो खाली पन्ना है, उस पर क्या लिखना है ये हम तय करते हैं। तो क्यों ना हम लिखें कुछ अच्छा, चिंताएं छोड़कर विश्वास लिखें, शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता लिखें, डर छोड़कर साहस लिखें। तो ये सब तो सूरज हमें बता ही रहा है कि हर दिन जब अंधेरा होता है ना, उसके बाद प्रकाश लौट कर आता ही आता है। इसीलिए

मैं आपसे हर सुबह तीन बातें कहना जरूरी है कि मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं और आज का दिन मैं अपना बेस्ट करूंगा। बस इतना सा करना है और दिन खूबसूरत हो गया आपका। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से और इस प्यारे से गाने के साथ।

जी हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, लता जी की आवाज में प्यारा सा गाना फिल्म अनुपमा से। शुरुआत ऐसी हो तो धीरे धीरे अपने आप मन खूबसूरत लगने लगता है, अपने आप को हम प्यार करने लगते हैं और अपने दिन से भी प्यार हो जाता है। वैसे बात करें दिन की तो दिन शुरू होता है सूर्योदय के साथ और आज सूर्योदय हो गया था लगभग 5:51 के आसपास और सूर्यास्त होगा 6:58 के आसपास। दिन काफ़ी खूबसूरत है लेकिन अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए एक्सरसाइज के लिए निकल रहे हैं तो मौसम का ध्यान रखकर निकलें क्योंकि बारिश की संभावना है, तो आप छाता रख सकते हैं या घूमने जाएं तो अपने आप को ऐसा मौसम देख के ही बाहर निकलें। और अगर बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सोचिए इतना खूबसूरत दिन और इस खूबसूरत दिन में हम कितने सारे भेदभाव रख लेते हैं कि आज ये अच्छा है तो ये बुरा, ये ठीक है तो ये गलत। क्या सूर्य भी ऐसे ही करते हैं? क्या वो भी भेदभाव के साथ प्रकाश देते हैं? नहीं ना। तो जब वो बिना भेदभाव के जी सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चॉइसेस के भेदभाव क्यों रखते हैं? मुस्कुराहट के साथ स्वागत क्यों नहीं करते हर उस चीज़ का जो आती है? और इसी से दिन खूबसूरत हो जाता है। वैसे खूबसूरत इस बात से भी होता है कि आपने अपने आप को कितना समय दिया, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप योग करें। कितना करें, क्यों करें, कैसे करें, ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट अगर निकाल लेते हैं ना तो भी काफ़ी है। और उसके लिए आपको सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या सरल योगासन कर सकते हैं जिसमें कि सिर्फ गहरी सांस ली जाए और धीरे धीरे छोड़ी जाए। तो अपने दिन में सिर्फ थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने अंदर की शांति के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए। और उसको कम करने के लिए जो गाने हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए एक और प्यारा सा गाना आपके लिए।

जी हाँ, तो बात हो रही थी गोल्ड सुप्रभात की और सुबह की शुरुआत की, और साथ ही हम बात करते हैं हमारे हर घर तिरंगा अभियान की। जानते हैं ये जो अभियान है ये सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं जुड़ा है बल्कि उससे हमारे व्यक्तिगत जुड़ाव से भी जुड़ा है और राष्ट्र निर्माण में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसीलिए ये जो अभियान है ये अभियान हमारी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है। तीन रंग जो हमारे तिरंगे में है वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, वो हमारी विविधता में एकता का प्रतीक भी है। केसरिया हमें साहस और त्याग की याद दिलाता है, सफेद शांति और सत्य का एहसास देता है, और हरा समृद्धि और प्रकृति से हमारे संबंध की याद दिलाता है, और अशोक चक्र निरंतर गति और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रतीक। तो जब हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमारे देश की प्रगति में हमें मदद कर रहा है या उसे आगे बढ़ा रहा है। देखिए, ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति है, सड़क पर नियमों को मानना भी देशभक्ति है, पर्यावरण की रक्षा करना भी देशभक्ति है, और किसी जरूरतमंद की मदद करना ये भी देशभक्ति का ही हिस्सा है। इसीलिए जब हर घर तिरंगे की बात होती है तो इतने सारे मूल्य हमें याद आ जाते हैं, और यही मूल्य याद रखना हमारे तिरंगे के प्रति हमारा सच्चा सम्मान है।

जी हाँ, प्यारा सा गाना और गाने के साथ हमारे अंदर एक जज्बा जाग उठता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं जिसने सब कुछ सारी दुनिया को दिया, आध्यात्मिक रूप से कहें या फिर भावनात्मक रूप से कहें या फिर वैसे प्रगति की बात करें। लेकिन जब बात अपनी होती है और इस सुबह की होती है तो हमारी सुबह की सबसे बड़ी जीत क्या होती है, कभी सोचा आपने? ऑफिस पहुँचना, भाई वो तो है ही, हम रोज़ पहुँचते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना, वो भी है, लेकिन उससे ऊपर भी एक जीत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाता है, और वो जीत होती है हमारे आलस्य पर हम जीत पाएं। जब अलार्म बजता है तो ये ना कहें कि बस 5 मिनट और, मुस्कुरा कर उठ जाएं और वहीं से हमारा डिसिप्लिन या अनुशासन शुरू होता है। बस इतना सा कर लेने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं और ये जो समय भाग रहा होता है ना, ये हमारी मुट्ठी में आ जाता है। फिलहाल समय तो भाग ही रहा है, चल ही रहा है, तो समय हो रहा है कि आप सुने समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात। तो पूनम को दीजिए इजाजत, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड को सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम हमेशा समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं बीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी गिव इन द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन related to this day, that is the 17th of August 2026.
0: जी बिल्कुल, तो क्यों ना प्रमोद शुरुआत की जाए आज के दिन की मुख्य खबरों के साथ इस कार्यक्रम की।
1: जी बिल्कुल, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 विल बिगिन टुडे इन आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड कंटिन्यू टिल द 31st ऑफ ऑगस्ट। डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अमित शर्मा सेड द एक्सरसाइज विल अलाउ रेजिडेंट्स टू डिजिटली प्रोवाइड देयर डिटेल्स अहेड ऑफ द डोर टू डोर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शेड्यूल फॉर सेप्टेम्बर 1st टू सेप्टेम्बर 30th। He said the population enumeration would

0: cover around 40 questions relating to demographic details, fertility, occupation and other aspects, with caste also being included this time.
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र विषय का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।
0: Following the Controller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As what part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000 locations, including water coolers, and a comprehensive water filtration and monitoring system will also be installed at approximately 20,000 points across the railway network, along with the replacement of water tanks. He also called for centralized monitoring, clear accountability and regular cleaning and maintenance of water storage tanks.
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। अनुभव मंच केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकार में अपने कार्य अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
0: The country's first virtual zoo has been started in Indore, Madhya Pradesh. Along with this, a 14D cinema theatre and a virtual jungle safari have also been opened at the Indore Zoo. The 14D cinema and virtual jungle safari have been developed under the public-private partnership model at a cost of around 4.5 crore rupees. In the virtual jungle safari, people can experience forests and wildlife through technology. The 14-day cinema will offer visitors a different movie-watching experience. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated these facilities yesterday and also watched a film with school children in the 14-day cinema.
1: महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं और आम जनता के बीच मृदा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय रील प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 15 से 30 वर्ष की उम्र के युवा 19 अगस्त तक 30 से 60 सेकंड की इंस्टाग्राम रील अपलोड करके इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी मृदा संरक्षण, जल संचयन, कृषि, तालाब, चेक डैम, जल संभर विकास, वृक्षारोपण और गांवों में सफल संरक्षण पहलों जैसे विषयों पर रील बना सकते हैं। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन उनके संदेश, रचनात्मकता, सामाजिक प्रभाव, प्रस्तुति, तकनीकी गुणवत्ता और इंस्टाग्राम पर जुड़ाव के आधार पर किया जाएगा। जिला स्तर पर शीर्ष 3 विजेताओं को 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही उन्हें युवा मृदा जलदूत के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। तो सभी से अपील की जाती है कि वे इस रील कंपटीशन में भाग लें और इन पहलों पर जिनकी सरकार की नज़र है उनमें अपनी कह सकते हैं कि हम योगदान दें
0: जी। Moving on to sports, the BWF Badminton World Championships will begin today at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi.
2: Indian shuttlers will begin their campaign on the opening day today. In the women's singles, former world champion and 9th seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland, while the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Shetty will face world number 1 and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In the men's doubles discipline, the ace Indian duo and 5th seeds. Satvik Sairaj Ranki Reddy and

0: Chirag Shetty have already proceeded to the second round after receiving a bye. Meanwhile, the Indian duo of MR Arjun and Hariharan Amsakarunan will take on the Irish duo of Scott Gilley and Paul Reynolds. In the mixed doubles category, 15th seed pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have also proceeded to the round of 32 after a bye. Ashish Abraham for Aaj Savere.
1: नीदरलैंड्स में आज हॉकी में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अगर हम बात करें तो वहां स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिन की वार्षिक यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यह यात्रा प्रतिवर्ष हर साल श्रावण मास में शुरू होती है। इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और श्रोताओं, रुख करते हैं महानगरों की खबरों का, तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की।
3: जी,
1: दिल्ली जल बोर्ड ने लंबित पानी के बिलों पर शत प्रतिशत विलंबित भुगतान अधिभार LPSC माफ करने की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस निर्णय के अंतर्गत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि जमा करनी होगी और पूरा LPSC माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में 1,80,000 से अधिक आगंतुक और 23 देशों के 347 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। और अगर हम बात करें दिल्ली में परिवहन से जुड़ी खबर की, तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया है। इस फैसले के अंतर्गत बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 1 सितंबर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाना अनिवार्य हो जाएगा।
3: That's right. Moving on to Chennai, the Tamil Nadu Science and Technology Center in the city is organizing a math and science test to students of classes 6 to 9 from across boards. The test will be held on October 4th for math and 11 for science. Each exam will have 100 questions without negative marking and will be held offline at designated exam centers. The top scorer will get a cash prize of 3,000 rupees followed by 2,000 rupees each for 2 students securing second place. Third place will be awarded to 3 students who get rupees 1,000 each, and the fourth place will be awarded to 5 students with rupees 500 each. Interested candidates can apply on or before September 10th by paying a fee of 100 rupees per exam. Still with Chennai, over 100 students of government model schools across the state presented indigenous cum traditional music and percussion instruments used by ancient Tamils and martial arts equipment, including various forms of silambam, at the Students Artist Conference at Victoria Hall in the city. The 2-day event provided a platform for students and traditional artists to showcase the state's rich cultural heritage.
1: उधर महाराष्ट्र में मुंबई रेलवे विकास निगम ने MUTP3 के अंतर्गत मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर अतिक्रमण नियंत्रण उपायों से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। 551 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 100% प्रगति हासिल की जा चुकी है। इनका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना और पटरियों पर अतिक्रमण को कम करना है। इसके अलावा बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने पैदल मार्गों को सुरक्षित और बाधा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अपने

0: पेडेस्ट्रियन फर्स्ट अभियान के पहले 14 दिनों में 81 खंडों में लगभग 68 किलोमीटर फुटपाथों को साफ किया है। अधिकारियों के अनुसार 1 से 14 अगस्त के बीच नगर निगम ने 337 अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए, जिनमें 77 अनाधिकृत ढांचों और 112 अवैध फेरी वालों को हटाया गया। 8 फुटपाथों की भी मरम्मत की गई। अब बेंगलुरु के अगर हम समाचारों की बात करें तो क्या है आपके पास प्रमोद
1: जी? Union Minister H.D. Kumaraswamy has written to Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar to take over the NICE toll road project from the private developer. The statement comes after the Karnataka High Court last made observations on the alleged irregularities in the Bengaluru-Mysuru infrastructure corridor project to be awarded to the NICE company. He has urged upon the state government to immediately stop the unauthorized toll collection and take over the NICE road project through appropriate legislation. In a 7-page letter, the union minister has pointed out that the NICE has violated framework agreement and project technical agreement. Quoting the court proceedings, Kumaraswamy said that the company has yet to pay compensation to the farmers whose land was acquired in 2003 and 2009. And moving on to Hyderabad now, Chief Minister Revant Reddy will inaugurate Dr. Mari Channa Reddy TIMS, Telangana's new super speciality hospital in Sanatnagar today. Built to bring corporate level health care to common people, it is the largest super speciality hospital built in a single phase in the government sector, spread over 22.6 acres. The hospital has 1,082 beds, including 300 ICU beds, 31 major and 6 minor operation theatres, and advanced diagnostic labs. It is India's first government hospital to install an AI-based pneumatic tube system, which moves blood samples and medical reports between wards, labs, and pharmacy in just 1 to 2 minutes. TIMS is designated as a centre of excellence in 6 areas: organ transplants, cardiac sciences, oncology, neurosciences, nephrology and trauma care.
0: उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज पुरुलिया में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नबन्ना में उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सरकार की प्राथमिकता वाली पहलों और पहले 100 दिनों की उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे सबसे पहले मान बाजार में JICA द्वारा समर्थित मान बाजार पेयजल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रघुनाथपुर में अमित मेटलिक्स द्वारा प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। और कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से भी शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की, जो लगभग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे ऐसे लोग राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के इसके पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और प्रमोद के साथ। तो अब बात करते हैं आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है
1: जी।
0: इस कड़ी में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। तो राजधानी में आज बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उधर कोलकाता में तेज बारिश का आज अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं प्रमोद से
1: जी। पहले मैं शुरू करूंगा हैदराबाद से
0: जी।
1: हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 25 डिग्रीज टू 32 डिग्री सेल्सियस। In Bengaluru, its forecast is to experience generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. And moving on further south to Chennai, Chennai is likely to experience generally cloudy sky with moderate rain. The temperatures are expected to range between a minimum of 28 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
0: और अब बात करते हैं आज के दिन के

0: इतिहास के बारे में।
1: जी, 17th August 1858, the first bank in the Hawaiian Islands is opened.
0: जी,
1: In 1877, on this day, American astronomer Asaph Hall discovered Phobos, the second moon of Mars.
0: और अगर हम बात करें वर्ष 1947 की, तो रेडक्लिफ फैसला आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुआ था आज ही की तारीख को। इससे पंजाब और बंगाल में

0: Dutch before sovereignty was officially transferred in December 1949.
1: इससे दो बरस पहले यानी कि वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत से ब्रिटिश सैनिकों की पहली टुकड़ी भी आज ही की तारीख को मुंबई से रवाना हुई थी। और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
0: जी,
1: इस कड़ी में शुरुआत मदनलाल ढींगरा से। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए भारत माता के कितने ही सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। उन्हीं महान शूरवीरों में अमर शहीद मदनलाल ढींगरा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ। मात्र 25 साल की उम्र में वो देश के लिए बलिदान हो गए थे। उनके पिता दित्तामल जी पेशे से एक सिविल सर्जन थे और उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। वहीं उनकी माँ भारतीय संस्कारों को मानने वाली महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का खास और विश्वासपात्र माना जाता था, लेकिन मदनलाल ढींगरा का स्वभाव इसके उलट था। देशभक्ति उनकी रग रग में ओतप्रोत थी। साल 1909 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जारी था। 1 जुलाई को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के एनुअल फंक्शन में बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हर्ट कर्नल वायली कार्यक्रम में पहुंचे, वैसे ही मदनलाल ढींगरा ने उन पर 5 गोलियां दाग दी। हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा चला। इसके बाद 23 जुलाई 1909 को हत्या के मामले में पेशी हुई उनको और फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रमोद उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन देश को समर्पित कर रहा हूं। और 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटविले जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई और देश के लिए वो शहीद हो गए। नमन करते हैं मां भारती के ऐसे वीर सपूत को।
0: जी, मूविंग ऑन टू बर्थ एनिवर्सरीज, इनफैक्ट बर्थडेज, टुडे इज द बर्थडे ऑफ फेमस एक्टर सचिन पिलगांवकर।
1: जी,
0: ऑफन नोन मोनोमिनसली एज सचिन, ही इज एन इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड सिंगर हु वर्क्स प्राइमरली इन मराठी एंड हिंदी फिल्म्स। हिज करियर स्पैन्स मोर देन 6 decades, ड्यूरिंग विच ही ऑल्सो वर्कड इन गुजराती, कन्नड़ा एंड भोजपुरी सिनेमा, एंड ही इज ऑल्सो देयर ऑन इंडियन टेलीविजन। He has received several honors, including 2 National Film Awards, 6 Maharashtra State Film Awards, and 2 Filmfare Awards in Marathi. Born in Bombay into a family of Goan origin, Pilgaonkar entered films as a child artist at the age of 4 in the Marathi film Ha Maza Marg Ekla, 1962, for which he won the National Film Award for the Best Child Artist. इनफैक्ट मैंने उनका इंटरव्यू सुना था मुकेश, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको अवार्ड से इतनी खुशी नहीं हुई, बट द फैक्ट दैट नेहरू जी ने उनको अपनी गोदी में बिठा के एक फ्लावर दिया,
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो ज्यादा उनको
1: बिल्कुल।
0: ही प्लेड द यंग हस्बैंड इन तरुण मजुमदार बालिका बधु 1976 ऑपोजिट रजनी शर्मा, एंड विच वॉज अ पीरियड ड्रामा सेट इन रूरल बंगाल, and R.D. Burman's soundtrack became very popular. His performance as Arun in the romantic drama Akhiyon Ke Jharoke Se opposite Ranjita was a major success and is regarded as one of his signature films.
1: Ji.
0: As a result, from the late 1970s, he increasingly took on supporting roles in larger productions, appearing in films such as Judai, Satte Pe Satta, Nadia Ke Paar, and Trishul. We have a song from Trishul. Usko sun lete hain.
1: Bilkul.

0: सचिन को अपनी जिंदगी का पहला लीड रोल बतौर हीरो फिल्म गीत गाता चल में मिला
1: जी।
0: राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी सारिका। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, क्यों ना फिर इसका एक ये गाना भी सुना जाए
1: जी।

इसकी सफलता के बाद मानो सचिन की तो लॉटरी ही लग गई थी। सचिन को लीड एक्टर के तौर पर कई फिल्में मिली। ये दोनों कलाकार फिर साल 1976 में बालिका वधू जैसा कि आपने बताया, कॉलेज गर्ल जैसी फिल्मों में भी साथ काम करते नजर आए। नदिया के पार की भी आपने जिक्र किया उनके बारे में, तो उन पर ये फेमस गाना भी फिल्माया गया है जो अब आपके लिए चलाया जा रहा है।

0: क्या खूबसूरत गाना है
1: जी, बिल्कुल।
0: और आज पुण्यतिथि है फादर कामिल बुल्के की भी, वे बेल्जियम से भारत आकर मृत्यु पर्यंत हिंदी, तुलसीदास और वाल्मीकि के भक्त रहे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रामकथा, उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान, हिंदी अंग्रेजी लघुकोश उनकी रचनाओं में शामिल हैं।
1: टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फेमस फिल्म एडिटर दुलाल दत्ता। ही डाइड ऑन दिस डे इन द ईयर 2010 एंड ही इज प्राइमरली रिमेम्बर्ड फॉर हिज एसोसिएशन विद द एक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर सुचित राय, हुज फिल्म्स वर ऑल एडिटेड बाय दत्ता। विद फिल्म्स लाइक परिवर्तन एंड बुरजात्री ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट एडिटर। व्हाइल वर्किंग ऑन द लैटर ही गॉट एक्वेंटेड विद आर्ट डायरेक्टर बंसी चंद्रगुप्त, हु इन टर्न इंट्रोड्यूस्ड हिम टू सुचित राय। Datta edited all of Ray's films from Pother Panchali to Agantuk, apart from shorts and documentaries, in a collaboration that lasted for 36 years. Merchant Ivory Productions approached him to edit one of their productions, which he would have brought good money for him, but he turned down the priced contract since it would have taken him away from Ray's projects. See, kitni badi baat hai na, Mukesh?
0: Bilkul.
1: Ki he was working all his life for Satyajit Ray, but जी. Merchant Ivory Production, which is an American production, British जी. production, उन्होंने उनको approach किया कि आप हमारे लिए edit कर, but he said no, because then that would mean that वो Ray के film नहीं edit कर पाए, even though the money was 10 times more.
0: जी.
1: That's dedication.
0: कहीं ना कहीं उनको अपने देश से जुड़ाव का भी एक संकेत उनके व्यक्तित्व के जो भीतर था उसका संदेश देता है।
1: बिल्कुल। His most famous editing was from the films शतरंज के खिलाड़ी and we have a song from that movie, वो सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तरप तरप सगरी रैन गुजरी, कौन देश गयो सावरी।

0: आज श्रोताओं पुण्यतिथि है भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक पंडित जसराज जी की।
1: जी
0: शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म 1920 के लिए उन्होंने अपनी जादुई आवाज में गाना गाया। पंडित जसराज ने इस फिल्म के प्रचार के लिए बनाए गए वीडियो के गीत वादा तुमसे है वादा को अपनी दिलकश आवाज दी। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये एक और भजन।

0: और श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आज का सुविचार की अपना व्यक्तित्व हमेशा शून्य सा रखें ताकि आप में से कोई कुछ घटा ना सके।
1: वंडरफुल।
0: इसी सुविचार के साथ मुकेश और प्रमोद को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: That's right. Stay tuned for coming up next समाचार प्रभात a Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
7: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
8: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
5: कार्मिक लोक शिकायत और

0: पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के पांचवें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331041 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है आजादी के उत्सव के बाद

0: सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA टू रिकंडक्ट UGC नेट एग्जाम्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
3: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
2: The National Testing Agency NTS announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTA said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m.

0: Asit Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw of stumps yesterday evening. Devdutt Padikkal hit his maiden test century, scoring 167 runs. KL Rahul scored 82 runs and Dhruv Jurayal contributed 51 runs. For Sri Lanka, Prabhat Jayasurya clinched 4 wickets, while Keshara Nuwantha took 3 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Abhishek. Amit Shah seeks Congress apology over Vande Mataram Rao, reports The Hindu. West Bengal launches Ayushman Bharat, CM health insurance schemes, says The Statesman. Hindustan Times in its editorial piece, A Roadmap for Progress, writes that the successes of the PM Sabsadhara focus is critical to resolving the immediate crisis of jobs. The paper elaborates that like every such address from the ramparts of the Red Fort over the past 8 decades, Prime Minister Narendra Modi's speech to mark the 80th Independence Day combined a short-term actionable roadmap with the long-term path that the country should embark on. And finally, in a world record and Guinness feat, the Asian Age writes that 3 UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज कराने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात IMD ने उड़ीसा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में सितंबर के महीने में मर्दमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत आबादी के इंदराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल आज से खुद इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लद्दाख मुल्क में मरकज के जेर इंतजाम ऐसा पहला इलाका बन जाएगा जहां 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान आबादी के इंदराज का अमल के साथ ही मर्दमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुद इंदराज के अमल आज से शुरू हो रहा है। लद्दाख में मुकम्मल कवरेज के लिए तकरीबन 637 इंदराज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मर्दमशुमारी के ऑपरेशन से मुतालिक अफसर अमित शर्मा ने बताया कि इस खित्ते में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल, मुश्किल रास्तों और लद्दाख तक महदूद रसाई की पेश नजर सितंबर के शेड्यूल का मंसूबा बनाया गया था। मर्दमशुमारी 2027 डिजिटल तरीके से की जा रही है। मकानात की फहरिस्त साजी का अमल यकुम जून से 30 जून तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेह लद्दाख से यंगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
2: जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल तरीके से खुद इंदराज का अमल आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा।

8:45 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी वो भी सोमवार की सुबह। तो चलिए आज हम एक मॉर्निंग चैलेंज ले लेते हैं, मॉर्निंग चैलेंज जो पूरा हफ्ता निभाएंगे। अब क्या है चैलेंज बताऊंगी आपको, पहले बता दूं कि मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से, और एक प्यारा सा गाना आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग चैलेंज की हम बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि इस हफ्ते आपको सिर्फ 5 काम करने हैं सुबह उठते ही। पहला ये कि सबसे पहले उठते ही उन 3 चीज़ों का धन्यवाद दीजिए जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। दूसरा, कम से कम 15 से 20 मिनट अपने शरीर को दीजिए, यानी वॉक, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी। तीसरा, आज के सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण काम लिख लीजिए, सिर्फ 3, और उनमें से सबसे पहला काम सबसे पहले पूरा कीजिए। और चौथा, कम से कम 1 व्यक्ति के लिए कोई अच्छा काम कीजिए बिना किसी अपेक्षा के। और पांचवा, ये सोचिए कि आप अपने देश को बेहतर बनाने के लिए क्या छोटा सा योगदान कर सकते हैं आज के दिन। बस ये 5 चीज़ें बड़ी बड़ी योजनाओं से बहुत बड़ी हैं, और अगर आपको ये 5 चीज़ों की आदत हो गई तो हर दिन इतना सार्थक और अच्छा बीतेगा कि आप सोचेंगे अरे वाह, आज तो मैंने कमाल ही कर दिया।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हर चीज के लिए हमें रिएक्ट करने पे मजबूर कर देती है, गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेट हो रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो तुरंत हम एक रिएक्शन दे देते हैं बिना सोचे समझे, इससे कितना कुछ खराब हो जाता है। उसके बजाय अगर हम शांत रहें, सोच समझकर व्यवहार करें या अपनी परिस्थिति को समझें और फिर तय करें क्या करना है, तो फिर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए मंडे का दिन है ना, इसमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि किसी भी बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऊर्जा बचती है, यानी फालतू की बहस नहीं होती, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आपकी एनर्जी बचती है इसकी वजह से, या आप सही फैसले ले पाते हैं क्योंकि शांत दिमाग होता है, तो फिर जो सोचते हैं वह बिल्कुल सही तरीके से सोचते हैं और उसका फैसला भी सही ही होता है। और यही बात रिश्ते सुधारने में भी मदद करती है। इसलिए मंडे को, जब ये संडे वाला थोड़ा सा खुमार रहता है, उसे छोड़ दीजिए और हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करने के बारे में सोचिए। और इसी को पूरे हफ्ते तक रखिए, अपने मन को बताइए कि मुझे इस हफ्ते किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं बोलना है, बस हर एक के साथ आराम से बेहतर तरीके से बात करनी है, रिस्पॉन्ड करना है। इतना सा करने से भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा, और बदल जाएगा आपका मूड इस गाने को सुनने से।

8:52 और सुबह की बात, वो भी म्यूजिकल दिल लगी के साथ। ऐसे में क्या होता है कि सोमवार को ना अक्सर हम संडे की खुमारी में होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई कुछ ना बोले, आज कैसे ऑफिस जाएं, क्यों जाएं, और तब ये जो हमारी मनोस्थिति होती है ना।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना। और ये गाना याद दिलाता है कि अगर आप अपने रूटीन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत किसी अच्छी चीज़ से करें जो आपको बेहद पसंद हो, जैसे मैंने कि इस गाने के साथ जो मुझे बेहद पसंद है। तो मंडे ब्लूज़ यानी सोमवार का जो आलस होता है, तनाव होता है, उसे दूर करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप रविवार को ही तैयारी करके रखें, जैसे जो ज़रूरी सामान है सुबह के लिए वो निकाल कर रखें, कपड़े इस्त्री करके रखें, पसंदीदा नाश्ता अपना सुबह सुबह करें, और सुबह के समय बहुत भारी काम ना करें सोमवार के दिन, उसे आप ट्यूसडे या वेडनेसडे के लिए रख सकते हैं। एनर्जेटिक म्यूजिक सुन सकते हैं जैसे कि हम आपको सुनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मंडे को आपके मूड को बेहतरीन बना सकती हैं, और यही हमारी कोशिश होती है म्यूजिकल दिल लगी में। फिलहाल इस कोशिश को मैं यहीं विराम देती हूँ, यानी पूनम को जाना है, पर नीतू आ चुकी हैं स्टूडियो में, वो होंगी आपके साथ आगे के सफर को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल समय है समाचार सुनने का, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड हमेशा सुनते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नाग पंचमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सभी जीवों के प्रति करुणा और सह अस्तित्व की भावना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग रही है। श्री सिंह ने कहा कि नाग पंचमी एक पवित्र त्योहार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिड़ला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मदन लाल ढींगरा का जीवन अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और निस्वार्थता की प्रेरणादायक गाथा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का

ज़िंदगी क्या है जिससे प्यार हो जाए? ज़िंदगी वो है जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ सहजता है। ज़िंदगी वो है जिसमें हम सिर्फ सब कुछ होते हुए देखते नहीं हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। तो यही ज़िंदगी का जो एक सही रूप है, इसी रूप के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इसी नोट पर शुरू करते हैं म्यूजिकल दिल लगी 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। आपके साथ है नीतू।

0: ये जो मौसम है ना, बारिश वाला और कभी धूप कभी छांव वाला, इसमें खांसी जुकाम सांस फूलना आम बात है। लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो अपना पूरा बचाव करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, और बुखार वगैरह बहुत तेज हो या कोई और ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखा ले। याद रखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या करना है क्या नहीं करना है ये डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली की।
1: सुकू, सुकू।
2: आई आई या करूं मैं क्या, सुकू सुकू

अय्या करूं मैं क्या सुख सुख खो गया दिल मेरा सुख सुख

ये सवाल ना बारिश के मौसम में बहुत दफ़ा आता है, ख़ासतौर पर जब आप बारिश में बाहर हो और आपका मोबाइल आपके हाथ में हो और पर्स भी आपका ऐसा हो जिसमें नोट भीगने की पूरी पूरी गुंजाइश हो। क्योंकि बारिश में क्या होता है, हम खुद को बचाने से ज़्यादा ना हम इन दो चीज़ों को बचाते हैं, अपने नोटों को और अपने मोबाइल को। मोबाइल के लिए तो फिर भी आजकल कवर्स हैं, पर नोट भीगने का डर जो है वो तो अक्सर रहता ही है। अब नोटों की जो उम्र है ना, अब जल्दी ही लंबी होने वाली है, क्योंकि मार्केट में आने वाले हैं पॉलीमर नोट्स जो कि ड्यूरेबल भी होंगे और मज़बूत भी, तो ना बारिश के पानी से भीगने पर ख़राब होंगे और ना ही फटेंगे, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं। अभी ट्रायल बेसिस पे आ रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं आगे कैसे चलता है, तो हमारे पास भी होंगे ऐसे वाले नोट्स।

बारह आना आज के बच्चे शायद समझते भी नहीं होंगे कि बारह आना क्या होता है, लेकिन यही है ना, हम पुराने गाने सुनते हैं तो सवाल उठता है बारह आना क्या होता होगा, तो शायद बच्चों को समझ में आएंगे बारह आना क्या होता है। खैर, बारह आना और पैसों की दुनिया से ज़रा बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने पारंपरिक लोक पूजा की तरफ, क्योंकि आज है नाग पंचमी, जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही श्रद्धा से की जाने वाली एक लोक पूजा है। इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ कई जगहों पर सांपों की देवी मनसा की आराधना भी की जाती है और ये लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। मनसा पूजा आज से प्रारंभ हो रही है और खासतौर पर ये सावन के महीने में होती है, जब बारिश के कारण सांपों का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये जो पर्व है ना, ये प्रकृति के प्रति सम्मान और एक साथ रहने की जो परंपरा है कि जीव जंतु और पशु पक्षी और इंसान सब एक साथ रहें, और जीव जंतुओं को संरक्षण का भी संदेश देता है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी त्यौहार हैं ना, वो क्या कहते हैं कि भूल जाइए जो भी आपकी ज़िंदगी में गम है, दुख है, दर्द है, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए जब तक त्यौहार है उसका आनंद उठाइए और बस एक तरह के आनंद में डूब जाइए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
5: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। अब क्या होता है, दिल लगी ना हम अपने साथ सबसे ज्यादा करते हैं। सारा दिन हम कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं और फिर हमारे हाथों में हमें दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है हाथों की ग्रिप कमज़ोर हो गई है या अचानक से आपकी गर्दन की नसें ना इधर उधर हो गई हैं और ऐसा लगता है गर्दन पर भारी सा बोझा आ गया हो। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इन प्रॉब्लम्स की एक ही वजह है, उसे ख़त्म कर दीजिए। और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उस

छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। अब छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता है ये बात की बात है, वो है हमारा मोबाइल, जिस पर हम काम तो करते ही करते हैं लेकिन उसके अलावा बेवजह भी समय जो है उस पर बिताते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें दे रहा है मोबाइल, यानी हमारे हाथों की ग्रिप कम होना, बार बार गर्दन में दर्द होना या कंधों को भारीपन आना, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह मोबाइल ही है। अब आप माने या ना माने, सच तो यही है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसी की बात कर रहे हैं अब हम, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रियायती यानी शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के समय भी उनके भोजन की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रभावित ना हो। ये पहल समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने और समावेशी कल्याण की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

आज हम याद कर रहे हैं मशहूर साहित्यकार अमृतलाल नागर को, आज उनकी जयंती है। बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन और नाचो बहुत गोपाल जैसी कृतियों की रचना उन्होंने की। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज, लोक जीवन और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। सरल भाषा है उनकी रचनाओं की और बहुत ही गहन अध्ययन मिलता है उसमें, और प्रभावशाली कथा शैली के कारण उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारी कालजयी कृतियाँ दी जो आज भी पाठकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। खासतौर पर जिन्होंने हिंदी साहित्य अगर पढ़ा है कॉलेज में, स्कूल में, तो उन्होंने ज़रूर अमृतलाल नागर की कोई ना कोई कृति तो ज़रूर पढ़ी होगी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली की।

बंदरों से ना हम सबका सामना होता है। मैं तो जब भी स्टूडियो आती हूँ सुबह सुबह, बंदरों की पूरी फौज जो है वो बाहर घूम रही होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से आते आते पूरे रास्ते में बंदर होते हैं। खुली जगहों पर ना बंदरों को आने से रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि बंदर किसी से नहीं डरते सिवाय लंगूर के। और इसीलिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 4 लोगों की एक टीम तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि आज से यानी 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक होने वाली है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इस दौरान बंदरों से निपटना बहुत जरूरी है। तो ये जो 4

इन गानों का आनंद उठाते जाइए और इन गानों में डूबते रहिए, डुबकी लगाते जाइए। मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी दिल का मेल बॉक्स में 10:30 बजे। आपको ईमेल आईडी तो याद ही होगा, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो चलिए मिलते हैं 10:30 बजे। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए, ये गाना सुनिए, इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप तंत्र के माध्यम से किया गया है। उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

बिहार के लखीसराय जिले में आज अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंभीर रूप से घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला सदर अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ थाने के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत में फैल गई। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। नेपाली सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल सेठ को आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्हें नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 3 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान सेना प्रमुख कल शिवपुरी में सेना कमान के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षकों तथा विदेशी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल धीरज सेठ बुधवार को पोखरा में पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे बुधवार को स्वदेश लौट आएंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास।
1: कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल है।
0: विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में क्षमता से अधिक 153 यात्री सवार थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को तेज लहरों के कारण नौका पलट गई। पुलिस ने बताया है कि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की संख्या पिछले दिन के 72 से बढ़कर 84 हो गई है। जिम्बाब्वे की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 77 लोगों को बचा लिया।

गया है, नौका में 90 लोगों को ले जाने की अनुमति थी। करीबा झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शक्तिशाली जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ये 200 किलोमीटर से अधिक लंबी है और कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक चौड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन प्रमुख पीट हेक्सेथ को दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भारी कटौती करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये अभ्यास बहुत खर्चीले हैं और उत्तर कोरिया को शत्रुतापूर्ण और अनुचित संदेश देते हैं। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज से शुरू होने वाले 11 दिन के उलुची फ्रीडम शील्ड अभ्यास को पूरी तरह रद्द करना अब संभव नहीं है। श्री ट्रंप के निर्देश के बावजूद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नियमित ग्रीष्मकालीन अभ्यास योजना के अनुसार ही होंगे और इसमें दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण को उत्तर कोरिया अक्सर युद्ध का पूर्वाभ्यास बताकर इसकी निंदा करता है। यह अभ्यास ड्रोन हमलों से निपटने, साइबर हमलों को रोकने और GPS व्यवधान से निपटने जैसे आधुनिक सुरक्षा खतरों पर केंद्रित है। इसराइल और होंडुरास ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। होंडुरास के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल की इसराइल यात्रा के दौरान इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स और होंडुरास के रक्षा मंत्री एनरिक रोड्रिक्स बुकार्ड ने कल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। होंडुरास के इस शिष्टमंडल में देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री और होंडुरास सेना के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों तथा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। इसराइल रक्षा बलों IDF ने एक बयान में कहा है कि अबू हसन अला दीर अल जहरानी पर हुए हमले में मारा गया। ये कार्रवाई सीमा पर हुए ड्रोन हमले में इसराइली सैनिकों के घायल होने के जवाब में की गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में 4 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। IDF ने एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में रात भर चले हमलों के दौरान हिजबुल्ला के विशिष्ट रदवान बल के कमांडर अली समीर अल हज हसन को मार गिराया। दक्षिणी गांव अंसार पर इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए, जो 2024 में युद्ध विराम होने के बाद से इसराइल के सबसे घातक हमलों में से एक है। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनेर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है, जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फलस्तीनी इलाके से पीछे हटना है। पिछले साल मिस्र में कुशनर और स्टीव विटकॉफ तथा हमास नेताओं के बीच हुई बैठक में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर प्रगति नहीं हो पाई है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के साथ होगा। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वेल्स के खिलाफ भारत के 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही आए थे। संजय के पहले गोल के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जिससे भारत को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले।
BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा,

वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्वी से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमट गई। देवदत्त पाडिकल ने 167 और केएल राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में एक विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स लेकर हाजिर है नीतू आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दिल का मेल बॉक्स यानी कि आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम, आपकी रिक्वेस्ट होती है यहाँ पर पूरी। और रिक्वेस्ट भेजने का एड्रेस है fmgoldairdelhi@gmail.com, यानी ये ईमेल आईडी आप रट लीजिए। और वैसे तो रट ही रखा है आप लोगों ने, टाइम भी नहीं होता, उससे पहले ही मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए हम बता देते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अभी आज सबसे पहले जिन लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो रही है वो हैं देव शंकर तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर। तो आइए इंजॉय करते हैं इनकी पसंद के गीत को।

बिल्कुल, वादा जो है वो निभाने के लिए ही होता है, तोड़ देने के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, गाने जो है वो तोड़ने पे भी बनते हैं और निभाने पे भी बनते हैं। ये जो गाना था ताजमहल फिल्म का, फिल्म तो खैर अपने आप में कमाल थी ही, गाने एक से बढ़कर एक। और ये जो गाना सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, इस गाने को सुनना चाहा था अनिल जैन, जैन साहब, संजय जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम ने। और उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। आगे ये जो गाना आ रहा है, ये सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, एम एस अब्बासी और उनका पूरा परिवार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

पिल बॉक्स में ये गाना चरस फिल्म से आपने सुना। माणिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत हेमंती, रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े, इन सब की पसंद पर। और अब बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ, जो कि है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन की पसंद का गाना। तो इस गाने को इंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हैं दिल का मेलबॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

रिश्तों के बारे में ना हम कुछ भी कहें, जाने, समझें, लेकिन रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि हम जैसा उनके साथ करेंगे वैसे ही रिश्ते हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते, बहुत सारी जगहों पर ऐसे अभी नहीं होता है कि आप जिस तरह से रिश्तों को मानते हो वो रिश्ता भी आपको उसी तरह से माने। लेकिन ठीक है, रिश्तों की अपनी एक परिभाषा है और उस परिभाषा को हर कोई अलग तरह से मान सकता है, ये भी एक बात है। पर गाने की बात जहाँ तक है तो बदलते रिश्ते फिल्म का गाना था ये, और जिन्होंने सुनना चाहा था उनके नाम मैं बता चुकी हूँ। अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सुनने जा रहे हैं, डबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष खुदाबख्श, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल की पसंद पर। तो आप इस गाने को इंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में। तो नीति चलती है, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित राज्य में अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अशोक धाम स्टेशन से मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजली का एक खंभा गिरने से करंट आने की अफवाह के कारण अफरा तफरी मची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की

कुछ जगह ऐसी होती है ना जिनके बारे में कितना भी कहा जाए कम ही लगता है। उनकी खूबसूरती को ना वहां जाकर ही महसूस किया जाता है। और ऐसी ही है हमारी आज की डेस्टिनेशन मध्य महेश्वर, जहां कुदरत अपने प्योरेस्ट फॉर्म में दिखती है, जहां कुदरत की पवित्रता इतनी ज्यादा हो वहां अपने अंदर अध्यात्म का संचार वैसे ही होने लगता है। और ये तो है भी भगवान शिव का धाम। तो आज तस्वीर मध्य महेश्वर की 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक शांत जगह है मधमहेश्वर। पंच केदार में से एक मधमहेश्वर समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुंचने का सफर आसान नहीं है। लेकिन सोचा जाए तो हमारे जितने भी तीर्थ हैं वहाँ की यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। वो तो अब सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, पर असल में तो हर तीर्थ यात्रा बेहद कठिन ही हुआ करती थी। लेकिन उस कठिनाई को पार करके जब हम अपने आराध्य का दर्शन करते हैं तो वो दर्शन और भी पवित्र हो जाते हैं। और इस यात्रा में तो रास्तों की सुंदरता बेमिसाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इस गाने के बाद।

मध्य महेश्वर तक पहुंचने के लिए करीब 24 किलोमीटर का ट्रैक है, जहां रास्ते में आपको मिलेंगे कई पहाड़ी गांव। पर असली खूबसूरती ना उन रास्तों में है, जहां कहीं आपको फूलों की घाटियां दिखेंगी और कहीं ऊंचाई से गिरते हुए झरने जिनकी छींटे दूर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। और अगर आप लकी हुए, बरसात का मौसम हुआ तो आपको जमीन पर ही रेनबो भी देखने को मिल सकता है। हरे भरे घास के पहाड़ी मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनके ऊपर उड़ते रुई जैसे बादल, और रास्ते में बहुत सारे गांव। जैसा मैंने कहा था कि कुछ चीजें ना तभी महसूस की जा सकती हैं जब आप खुद वहां जाएं। मध्य महेश्वर ऐसा ही है, और वहां तक पहुंचने का सफर भी।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

आज हम तस्वीर में उस जगह की बात कर रहे हैं जो कि है भगवान शिव का धाम, जिसे पंच केदार में से एक माना जाता है। और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के शमन की प्रार्थना के लिए भगवान शिव की खोज की, तो भगवान शिव ने अपने शरीर को 5 हिस्सों में बांटकर उन्हें दर्शन दिए। जिन जगहों पर भगवान के ये 5 हिस्से प्रकट हुए थे उन्हें पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। और केदारनाथ में शिव जी की पीठ प्रकट हुई थी ऐसा कहते हैं। रुद्रनाथ में उनका मुख, तुंगनाथ में उनकी बाजू, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, और जहां उनका धड़ प्रकट हुआ था वो जगह है मध्य महेश्वर, जिसकी बातें आज हम कर रहे हैं तस्वीर में।

ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर है मधमहेश्वर मंदिर, जो चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ पर्वत चोटियों के ठीक सामने है। यहाँ से जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाते हैं तो तीन तरफ खुला मैदान दिखेगा, ऊपर साफ सुथरा लंबा चौड़ा आकाश और दिखती हैं ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ और पास में बहती हुई मधुगंगा नदी। भगवान के दर्शनों के बाद आप चाहें तो 2 किलोमीटर आगे बूढ़ा मधमहेश्वर भी जा सकते हैं, जो कि मधमहेश्वर से भी पुराना माना जाता है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। पर ऊपर जाने के बाद जो व्यू आपको दिखेगा वो हर तरह की थकान मिटाने के लिए काफी है। केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, कामेट और पंचशूली जैसी कई चोटियों के सुंदर नजारे यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ छोटे छोटे तालाब हैं जहाँ का पानी इतना ठहरा हुआ और ट्रांसपेरेंट है कि आसपास की पहाड़ियों का रिफ्लेक्शन उनमें साफ साफ नजर आता है।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: दशमलव एक आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है तस्वीर जिसमें बात हो रही है मध महेश्वर की। नंदीकुंड झील, कंचनी ताल जो कि एक ग्लेशियर झील के तौर पर है, जो कंचनी ताल जो है वो एक ग्लेशियर झील है और ये दोनों ही ना बहुत ही ऊंचाई पर हैं और आप इन्हें देखना चाहें तो ट्रैक ही एकमात्र जरिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो ट्रैक है ये और भी ज़्यादा मुश्किल है और आपको वापस भी पैदल ही आना है। तो अगर आप मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हैं तो ही आगे बढ़ें और पहुँच जाएँ, इन सब ट्रैक्स को पूरा करें और वापस आएँ सही सलामत।

मधमहेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। इस दौरान मौसम जो है वो सही रहता है और ट्रैक करना आसान होता है। मॉनसून के समय पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना वैसे थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसलिए अवॉइड करते हैं मॉनसून के दौरान यहाँ जाना। लेकिन मॉनसून में जिस तरह की इसे कुदरत धुल जाती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़्यादा तेज सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है यहाँ पर, तो मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान जो भगवान की पूजा है वो ऊखीमठ में की जाती है, इसीलिए ये कहा जाता है

आप भी जाने का सोच रहे हैं मद महेश्वर, तो फिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा। उसके बाद सड़क मार्ग से ऊखी मठ और वहां से टैक्सी लेकर रांसी या अगतोली धार तक पहुंचना होगा। वहां पर कई होम स्टेज भी हैं, आप चाहें तो एक रात वहां रुककर आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। वहां से घोड़े, पोर्टर और गाइड की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। और रांसी या अगतोली से मध्य महेश्वर के लिए लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो शुरू होता है, यानी आपको पैदल यात्रा करनी है। लेकिन रुद्रप्रयाग तक पहुंचने के लिए या उस तरफ जाने के लिए जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है, और हवाई अड्डा

जो है वो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो आपको जो समझ में आए, जैसे रास्ता आपको सही लगे, आप वो इस्तेमाल कीजिए और पहुंच जाइए मधमहेश्वर। फिलहाल नीतू के जाने का समय हो गया है, तो मैं चलती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होती है इसी चैनल पर, आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू
2: और रश्मि कुकरेती। हम स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज है सावन का तीसरा सोमवार यानी कि शिव के आराधन पूजन का दिन। सावन हरियाली है, सोम भक्ति है, शिव है शक्ति
2: जी। और शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव सत्य हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव सृजन हैं तो शिव संहारक भी हैं, और शिव अहम हैं तो शिव ही ब्रह्म हैं,
1: और वो शिव ही तो हैं जो कणकण में है, हर कंकड़ में है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूंज है।

0: शिव भक्ति से सराबोर। अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी भैरवी और आवाज़ थी कविता कृष्णमूर्ति की।
1: जी, और रेनू, एक चीज़ जो आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, जिसके बिना लगता है कि ज़िंदगी एकदम थम सी जाए।
0: बिल्कुल, तो भाई वो क्या है, आप ही बताइए।
1: वो है मोबाइल। और कभी सोचा है अगर इसके बिना एक दिन बिताना पड़े तो कैसा लगता है?
0: अरे बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता, लेकिन यही है आज का हमारा सवाल कि आपके वो अगर एक दिन कभी मोबाइल बगैर बिताना पड़े तो क्या हो, कैसे कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। तो जी हमें आपको, जैसा कि हमारा एड्रेस आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com, तो इस पर आपके पत्रों का और आपके मेल्स का हमें रहेगा इंतजार।
1: और भाई रेनू, अभी जो गीत आप सुनवा रहे थे, हर सपना एक सांप है मन से लिपटा जाए, विष अमृत कबहू न बने काहे जतन लगाए। भाई चर्चा हो रही है विष अमृत और सांपों की, और आज तो आज बड़ा विशेष दिन है, आज श्रावण का सोमवार। आपने ये सुंदर भजन सुनाया और उसके बाद
0: बिल्कुल आज नाग पंचमी जो है भाई, और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला ये त्योहार केवल त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपरा, आस्था और प्रकृति के साथ गहरे संबंधों का भी प्रतीक है। लोक आस्था और परंपरा से जुड़े इस अनूठे पर्व में नाग देवता की, उनके प्रतीक या उनके चित्र की पूजा की जाती है और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की जाती है।
1: जी, और आज के दिन झूले, लोकगीत, मेले, इन सब का आयोजन भी होता है। विशेषकर अगर हम थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएं और नागपंचमी के इस पर्व में कथाओं और मान्यताओं के साथ साथ प्रकृति संरक्षण और लोक परंपराओं का भी गहरा संदेश निहित है। हमारी संस्कृति में नागों के पूजने की परंपरा है, और ये रेणु जो है ना, मनुष्य और प्रकृति के सह अस्तित्व की भावना से हमें परिचित कराती है। हर जगह इस त्योहार को मनाने की विधियां और लोक मान्यताएं भले ही अलग हों, लेकिन इसके केंद्र में जो है वो प्रकृति है, आस्था है, सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है, ये समान रूप से दिखाई देता है।
0: बिल्कुल समान रूप से दिखाई देता है, और यह आध्यात्मिकता का जो है समन्वय भी है। और शेष नाग, वासुकी नाग और तक्षक जैसे

का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। भगवान विष्णु की सैया में शेष नाग हैं, तो नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के गले का हार हैं, तो तक्षक उनकी भुजाओं का आभूषण। इसीलिए इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने की परंपरा है। और मान्यता यह है कि भगवान शिव प्रिय माह अपने जो सावन में आने वाला त्यौहार होता है, इसमें नागों की पूजा करने से भक्तों पर शिव कृपा होती है। और आज सावन का सोमवार है, तो भाई नागपंचमी भी है, और ये जो अद्भुत संयोग है इसमें तो भाई भक्तों पर शिव की विशेष कृपा होगी ही।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नागिन और आवाज लता मंगेशकर की। अमृत लाल नागर हिंदी साहित्य के उन गिने चुने मूर्धन्य लेखकों में हैं जिन्होंने जो कुछ लिखा वो साहित्य की निधि बन गया। उन्होंने इतिहास को लोक स्मृति से, लोक संस्कृति को यथार्थ से और साहित्य को आम आदमी के जीवन से जोड़ा।
1: और आज उनकी

0: विनती है हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनकी कहानियों और उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जितने विविध चरित्र उन्होंने निर्मित किए वो कहीं नहीं मिलते। उन्होंने समाज के उपेक्षित और हाशिए के पात्रों को अपनी रचनाओं में आवाज़ दी। दहेज, शोषण और बेमेल विवाह जैसी सामाजिक विसंगतियों के साथ उन्होंने मानवीय मन और उनके जो अंतर्द्वंद्व होते हैं उसको बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय संस्कृति, खासकर लखनऊ की तहजीब और लोक संस्कृति के सजीव रंग उनके साहित्य में दिखता है और इतिहास, पुराण, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर उनके गहन अध्ययन ने उनके साहित्य को व्यापक दृष्टि दी। इतिहास को कल्पना और यथार्थ के साथ जोड़कर जीवंत करना उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका उपन्यास मानस के हंस, गोस्वामी तुलसीदास और उनके समय का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का सजीव चित्रण है।
0: और भाई नाचियो बहुत गोपाल को हम कैसे भूल सकते हैं, साथ ही खंजन नयन जो सूरदास के समय और उनके लोक जीवन की झलक मिलती है। इसी तरह से उनकी जो अन्य कृतियां हैं, गदर के फूल या बूंद और समुद्र, और उसमें भी जिसे कहते हैं ना व्यक्ति और समाज के गहरे संबंधों का यथार्थवादी और संवेदनशील चित्रण है।
1: बिल्कुल, और नागर जी का साहित्य इतिहास, यथार्थ और लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय तो है ही। उन्होंने इतिहास को केवल राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे आम जनजीवन के उनकी स्मृतियों, संघर्षों और लोक विश्वासों से जोड़ा। उनका साहित्य आज भी भारतीय समाज और संस्कृति और लोक जीवन का जीवंत दस्तावेज है।
0: और भाई रेनू, उन्होंने बंबई में 7 साल काम किया और बहुरानी, संगम, कुमारा बाप, किसी से न कहना, पराया धन जैसी कुल 18 फिल्मों के लिए संवाद लिखे, पटकथा लिखी। और हम ये भी बताना चाहेंगे उनकी सुपुत्री अचला नागर वो भी प्रख्यात लेखिका हैं। उन्होंने बागमा और निकाह जैसी फिल्मों की जो पटकथा और कथा लिखी है और वो सुपरहिट फिल्में रही हैं। तो ऐसी जिसे कहते हैं ना कि ऐसे साहित्यकार की ऐसी सुपुत्री और ये दोनों आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, साहित्य सेवा इनका जीवन ही रहा पूरा। तो उनकी जयंती पर आज हम उन्हें नमन तो कर ही रहे हैं लेकिन उनके प्रति जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि जब भी हमें अवसर मिले उनकी किताबों को हम पढ़ें और गुनें।
2: प्राण प्राण प्राण धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनननन झनननन झनननन झनननन प्राण प्राण प्राण धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनननन झनननन झनननन झनननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया

लहराय रही, सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत शर्माय रही, सिगदत सिगदत सिगदत सिगदत मुस्काय रही, पलकाय रही, तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन तिन इधर बंश में लहर सी उठी, कृष्ण के मुख पर सजने लगी।

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की लाग उठी, राधा तय कह दूंगा, धागे से गया था।

0: था अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे।
1: झनक झनक पायल बाजे, अभी आपने इस फिल्म से सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे को, और रश्मि जी लगता है कुछ मेल हमें प्राप्त हो गई हैं अब।
2: जी बिल्कुल, तो क्योंकि आपने आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था भाई कि अगर मोबाइल आज एक दिन आपके ना मिले या आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ जवाब आ गए हैं, ईमेल्स आ गई हैं। वो कह रहे हैं राजू अग्रवाल जी, केशव प्रियांशी चौधरी वास हिसार से कह रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ों के आविष्कार हुए थे, बेमतलब का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल का, ये बहुत गलत बात है। भाई हम कर क्या सकते हैं, पत्नी के सामने हाथ जोड़ कर गुजारा कर सकते हैं लेकिन हाँ। बच्चों का क्या करें, मोबाइल बगैर ना रोटी खाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, भाई जरा देख कर चलो मोबाइल, घर जाकर सुनो मेरी गाड़ी से टकरा जाएगा, आपके चाहने वालों को रुला जाएगा, मतलब कविता सी इन्होंने लिख दी है। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छे गीतों के कारण हम रेडियो सुनते हैं, तो FM गोल्ड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो धन्यवाद आपको, लेकिन अच्छी बात है आप समझदार हैं कि मोबाइल के बगैर भी गुजारा करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और मोबाइल अगर नहीं रहे, अगर पहले नहीं भी होता था तो देखिए ना काम चलता ही था। तो ये दूसरी मेल जो मेरे पास सामने है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और ये लिखते हैं शांति नगर सोनीपत से, और ये कह रहे हैं कि जिंदगी में खुश रहना है तो किसी भी चीज का शौक रखना तो ठीक है लेकिन उसे आदत नहीं बनानी चाहिए।
2: जी, और योगी दीक्षित पीतमपुरा दिल्ली से कहते हैं मैं 72 वर्षीय वृद्ध हूँ और मोबाइल का जमकर प्रयोग करता हूँ, लेकिन रील देखने के लिए नहीं, ब्लॉग लिखना, मेल, मैसेजिंग, बैंकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जितने भी काम ऑनलाइन हो सकते हैं मोबाइल से करता हूँ। मेरे जानकार चकित होते हैं कि इस आयु का व्यक्ति इतना टेक्नोसेवी कैसे हो सकता है, मेरे लिए एक दिन भी मोबाइल के बिना रहना मुश्किल नहीं है, FM रेडियो भी सुनता हूँ मोबाइल से, ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे जी, जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।
1: और एक और मेल है मेरे हाथ में, ये है लिख रहे हैं उग्रसेन यादव जी, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और ये लिख रहे हैं कि जिस वस्तु के लिए जितना हो उतना दूर रहना चाहिए, लेकिन जरूरत तो है, जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात कही है।
2: और उमेश कुमार खयाला से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो भाई हम FM के कार्यक्रम कैसे सुनेंगे, FM गोल्ड कैसे सुनेंगे। जी FM गोल्ड तो सुनिए, लेकिन भाई वो भी तो दूर रखकर सुना जा सकता है, क्योंकि आकाशवाणी तो और रेडियो ऐसा माध्यम है कि उसको तो मोबाइल में हाथ लेने की जरूरत नहीं, बस उसे बजाइए आराम से, उसका ऐप डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर, और अपना मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड और इंद्रप्रस्थ

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल आप सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मोबाइल का प्रयोग कीजिए लेकिन सीमित, और इतना ना कीजिए कि वो आप पर हावी हो जाए। और बात इसकी है कि जब कोई चीज़ हावी हो जाती है या कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर आपके हानिकारक होती है तो उस पर ध्यान देना ही चाहिए। और अगर बच्चों के स्वास्थ्य की बात आती है तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है।
2: मुझे लग रहा है तुम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की बात कर रही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाजा सही था। और बच्चों के पेट में कीड़े यानी कृमि संक्रमण का होना एक आम समस्या तो है, लेकिन उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं। ये परजीवी आंतों में रहकर बच्चे के भोजन में जरूरी पोषक तत्व से चूस लेते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर, पोषण पर और पढ़ाई पर, तीनों पर जो है वो प्रभावित होती है।
2: जी बिल्कुल, अगर पेट में कीड़े हों तो देखें ना, बच्चों को जब भी एनीमिया होता है सबसे पहले डॉक्टर यही शक करते हैं कि शायद पेट में कहीं कीड़े ना हो, तो इसीलिए 18 से 22 अगस्त तक दिल्ली में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के जो सभी किशोर किशोरी हों उनको कृमिनाशक गोली बिल्कुल निशुल्क दी जाएगी, और ये दवा जो है सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को दी जाएगी।
1: बिल्कुल, तो इस अभियान से में शामिल होकर विशेषकर बच्चे इसे सफल बनाएं और अपने स्वास्थ्य, पोषित और कृमि मुक्ति भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं।

0: आकाशदीप, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को।
1: जी, और भी काफ़ी सारी मेल्स आ गई हैं रेनू।
0: हाँ, ये मेल एक मेरे पास मेरे सामने खुली हुई है। ये है राजेश शर्मा जी, और ये लिखते हैं कि मैं तो संडे को अपने परिवार के साथ टीवी देखता हूँ या कुछ किताबें पढ़ता हूँ। अपने परिवार में संडे को मोबाइल और इंटरनेट बंद रहता है, सिर्फ कॉल सुनने के लिए या फोन करने के लिए ही फोन का उपयोग करता हूँ। ये सिर्फ संडे को होता है।
1: वाह, क्या बात है,
0: तो भाई
1: डिजिटल ब्रेक ले लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये
0: अब ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर
1: जी
0: पूरा नहीं छूट सकता तो कम से कम थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूरी है।
1: राघव दिलशाद गार्डन से कह रहे हैं, मैं घर के काम निपटाता हूँ, परिवार के साथ चाय पीता हूँ, पुराने फोटो देखता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ। भाई, पता चलता है घर में भी तो बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, बस उनकी आवाज इंसानों की है। और सुरभि हमारे साथ मोबाइल जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कहती हैं कि भाई, मैं जो हूँ पहले 2 घंटे तो मोबाइल ढूंढूंगी, तीसरे घंटे चार्जर ढूंढूंगी, और चौथे घंटे में मुझे समझ आ जाए कि आज मोबाइल नहीं है, फिर तो मजबूरी में परिवार से बात करनी पड़ेगी। फिर हंस रही हैं, कहती हैं कि नहीं, मैं मोबाइल छोड़कर किताब, परिवार और प्रकृति के साथ समय बिताऊंगी, और कोशिश करूंगी कि कम से कम एक बार घड़ी देखकर ये ना सोचूं कि फोन कहाँ है।
0: बिल्कुल सही है। तो अगर आप सोच रही हैं तो ज़रूर ये कर गुजरेंगी, और ब्रेक, डिजिटल ब्रेक जरूर लेंगी। और रश्मि जी, अब चलते हैं उड़ीसा के ओर और अपनी संस्कृति और कल्चर की कुछ बातें जानते हैं, समझते हैं। उड़ीसा भारत का एक समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों वाला राज्य, जो जाना जाता है अपनी अनूठी परंपराओं और वास्तुकला के लिए भी।
1: जी, और जो उड़ीसा का कटक शहर है वो जाना जाता है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के रूप में, क्योंकि यहाँ होती है विश्व प्रसिद्ध रूपा तारकशी, यानी चांदी की कलाकृति, जिसे सिल्वर फिलिग्री कहा जाता है। कटक की ये बारीक शिल्प कला लगभग 500 वर्ष पुरानी है और आज तक जीवित है।
0: बिल्कुल, और उड़िया भाषा में तार का मतलब है तार, और कशी का मतलब है डिजाइन, जिससे शुद्ध चांदी को पिघलाकर इंसानी बालों से भी बारीक, सोचिए इतनी बारीक जो है वो डिजाइन बनाई जाती है। इन तारों को आपस में मोड़कर, गढ़कर सुंदर और जटिल जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। इससे बहुत ही नाजुक आभूषण जैसे कि झुमके, पायल, अंगूठियां, हार तैयार किया जाता है। सिकरी या सांकल यानी चेन भी इसी बारीक तारकशी की कला का नमूना है।
1: भाई वाह, भाई ओडिसी नृत्य की जो नर्तकियां होती हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण जैसे सिर का सिंथी, बाजूबंद, बेल्ट इसी तारकशी तकनीक से बनाए जाते हैं। उड़ीसा की संस्कृति में शादी के समय दुल्हन को तारकसी से बनी चांदी की पायल और बिछिया देना बहुत शुभ और अनिवार्य माना जाता है।
0: बिल्कुल, और आभूषणों के अलावा रश्मि जी, पता है इस तारकशी की डिजाइन से सजावट की भी बहुत सारी वस्तुएं, पूजा के बर्तन बनाए जाते हैं। और इस कला को मुख्य 3 शैलियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि रोज वर्क यानी फूल पत्ती की डिजाइन, सीको वर्क यानी मोटे तारों से बना मजबूत फ्रेम, और होता है जाली वर्क यानी महीन जाल की नक्काशी। कटक की मशहूर दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के मुकुट और झांकियों को सजाने के लिए इसी चांदी की तारकशी कला का विशेष रूप से उपयोग होता है।
1: और इसी कारण रेनू, भारत सरकार द्वारा इसे GI टैग भी प्रदान किया जा चुका है। तो अगर आप भी उड़ीसा के इस सिल्वर फिलिग्री के गहने को खरीदना चाहते हैं तो उड़ीसा राज्य सरकार के हस्तशिल्प विभाग के अंतर्गत काम करने वाली सहकारी संस्था हस्तशिल्प निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट उत्कलिका उड़ीसा के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। यहां से आपको सीधे और असली और प्रामाणिक सिल्वर फिलिग्री उपाधि मिलेगा।

0: और ये गीत सुना आपने, फिल्म थी मेला और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और रश्मि जी, एक और मेल मुझे प्राप्त हुआ है, ये है राधा पाठक। ये लिखती हैं कि मोबाइल के बिना या तो मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या अपने बच्चों के साथ फिल्में देखती हूँ। तो भाई बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ तो वक्त बिताना ही चाहिए, और मोबाइल के अलावा अगर आप बच्चों के साथ बिताती हैं तो यही तो संस्कार और जो आपके घर के परंपरा है उसको समझाने का और सिखाने का मौका मिलता है, बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
1: शीशपाल अकेले

0: या तो मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या अपने बच्चों के साथ फिल्में देखती हूँ। तो भाई बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ तो वक्त बिताना ही चाहिए, और मोबाइल के अलावा अगर आप बच्चों के साथ बिताती हैं तो यही तो संस्कार और जो आपके घर के परंपरा है उसको समझाने का और सिखाने का मौका मिलता है, बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
1: शीशपाल अकेला जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई आज का विषय बहुत गजब का है। और हमारे साथ जो है वो विवेक विहार से जुड़ गए हैं अनुवंश, वो कह रहे हैं कि मैं मोबाइल के बिना एक दिन बिताऊंगा, कि भाई वाईफाई का पासवर्ड किसे पता है, फिर याद आएगा कि भाई वो भी तो मोबाइल में ही है, तो कहेंगे भाई मेरे को बहुत दिक्कत होगी और मोबाइल के बिना एक दिन बहुत मुश्किल है साहब, ना घड़ी ना मौसम ना इतनी सारी जानकारी से हम कैसे वंचित रहेंगे, तो आखिरकार हम रेडियो ही सुनेंगे, आखिर मोबाइल गया तो रेडियो तो है ना, ऐसा कहते हैं वो।
0: बिल्कुल सही बात है, और बात तो आपकी वैसे भी सही है क्योंकि मोबाइल हमारे जीवन में इतनी गहराई तक वो जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके कुछ विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर मन मस्तिष्क पर पड़ते हैं, तो थोड़ी सी दूरी अगर हम बना सकें तो जरूर बनानी चाहिए। और रेडियो वाली बात आपने कही तो ये तो सच है ही है।
1: जी, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स हो जाए तो
0: हाँ
1: अच्छा
0: अच्छा है
1: है ना। और जहाँ तक डिजिटल डिटॉक्स की बात है, तो थोड़ा सा मोबाइल से कभी कभी दूरी अगर बनाएंगे तो एक संतुलन जरूर बना
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बना रहेगा। और हाँ, जानकारियां भी इसी माध्यमों से मिलती हैं, रेडियो से और मोबाइल से और सब चीजों से, तो जानकारी रखनी भी बहुत जरूरी है। और अभी
1: आप
0: एक
1: कौन सी
0: जान
1: जानकारी दे रही हैं
0: हाँ
1: आप?
0: बिल्कुल आपने सही समझा, तो ये जानकारी हम देने वाले हैं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, कि भारत सरकार की ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये दुर्घटना योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता को कवर प्रदान करती है। इसमें एक वर्ष का कवरेज मिलता है जिसे वार्षिक रूप से रिन्यू भी किया जा सकता है।
1: जी, और ये योजना जो है मात्र 20 रुपये सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख तक का कवरेज देती है। इस योजना के माध्यम से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर भी 1 लाख रुपए का कवर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी बैंक या डाकघर में आपका खाता होना बहुत जरूरी है, जहां से 20 रुपए की जो इसकी छोटी सी राशि है प्रीमियम की, वो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते से अपने आप ऑटो डेबिट कट हो जाती है। तो ये योजना इतनी किफायती भी है और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अति आवश्यक है, तो इस योजना का लाभ अवश्य लें।

0: दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी रफी और लता की।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गई है रेनू, आप कहो तो मैं पढ़ दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जितेंद्र कह रहे हैं गुड़गांव से, एक दिन मैं मोबाइल के बिना रह लूंगा रश्मि जी, लेकिन मैं मोबाइल को बताऊंगा कि कैसे मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ।
0: बिल्कुल
1: जी। और वो कह रहे हैं कि मोबाइल के बिना जब मैं दिन बिताऊंगा लेकिन रात को हिसाब जरूर लगाऊंगा कि आज मैंने कितनी बार जो है बेवजह जेब टटोली।
0: ये बात तो सही है, कभी कभी अगर मोबाइल जो है वो दूर होता है बहुत ज्यादा, एकदम लगता है कुछ मिसिंग सा है और एकदम से ढूंढने लगते हैं हम, जैसे लगता है घर का मेंबर ही है कोई।
1: जी बिल्कुल। नहीं, मोबाइल के बिना रहने के बहुत फायदे हैं रेनू। देखो, कुछ घंटे दूरी जरूर बनानी चाहिए, तनाव कम हो जाता है, थोड़ा दिमाग को भी आराम मिलता है ना।
0: बिल्कुल सही बात है। और परिवार और दोस्तों के साथ अगर समय बिताना चाहते हैं तो जब मोबाइल छोड़ेंगे तभी तो वो समय निकल पाएगा
1: जी। और नींद बेहतर होती है, खासकर रात में, जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, हमारा समय बचता है। भाई, रील्स और सोशल मीडिया में हमें पता चलता है कि कितना सारा समय बीत गया।
0: बिल्कुल। और आंखों को आराम मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जर्ट होती है ना वो हमारी आंखें होती हैं। इसका प्रभाव डिजिटल, जब स्क्रीन के सामने हम होते हैं तो सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारी आंखें झेलती हैं। आंखों में दर्द होता है, फिर सिर दर्द होता है और बड़ी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं।
1: भाई, आपको किताब पढ़ने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, संगीत सुनने का और प्रकृति के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ा जो एक फायदा है वो बताऊं आपको?
0: बिल्कुल।
1: आपको पता चलता है कि मोबाइल जिंदगी का हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नजर हमारी घड़ी की तरफ भी है और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि अब हमारे समय समाप्त हो गया है और हमारे कार्यक्रम को यहीं हमें समेटना होगा। तो मुझे यानी रेनू को दीजिए
1: और रश्मि कुकरेती को आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन से दीजिए अनुमति। हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए और आनंद लीजिए हमारे कार्यक्रम का, लेते रहिए,
1: जिसका नाम है घर आंगन।
2: घर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी NEC के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, संगीत का आनंद लेने के लिए कभी कभी सिर्फ मन से ही काम चल जाता है, जरूरी नहीं है कि उसे समझा भी जाए, मतलब भाषा समझ में भी आए। अभी हाल फिलहाल में भी आपने कई ऐसे गाने सुने होंगे जो दूसरी भाषा में थे लेकिन आपको फिर भी बड़े अच्छे लगे। आप भले ही उनके शब्दों को गुनगुना ना सके हो लेकिन हाँ, आप मन ही मन ऐसे ये सब तो करते ही होंगे, है ना। अच्छा, साल 1982 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी जो कि अवधि और भोजपुरी भाषा में थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि करीब करीब पूरे देश में खूब गुनगुनाए गए। फिल्म का नाम था नदिया के पार। राजश्री प्रोडक्शंस की इस सुपरहिट फिल्म के लीड एक्टर का नाम तो आपको पक्का याद होगा, है ना, सचिन पिलगांवकर। आज कलाकार बेमिसाल में उन्हीं की बातें करने वाले हैं हम। हाँ,

हेमलता और जसपाल की आवाज में नदिया के पार फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना जो किसी जमाने में बहुत बहुत बहुत ज्यादा सुना जाता था। जी हाँ, इस एल्बम के वैसे तो सारे ही गाने बहुत मशहूर रहे, लेकिन इस गाने को खास तौर से पसंद किया जाता था। दोस्तों, पर्दे पर इस गाने में नजर आए सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह। नदिया के पार फिल्म का जो संगीत है वो दिया था रविन्द्र जैन ने, और आप तो जानते हैं किसके सारे गाने हिट रहे थे। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसे भारत के बड़े हिस्से में देखा गया, इसके गानों को खूब सुना गया। और इस फिल्म में जो लीड एक्टर थे सचिन पिलगांवकर, उनकी जो लाइफ है उसकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फिल्म मानी जाती है नदिया के पार। दोस्तों, सचिन पिलगांवकर हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं। सचिन को आज की पीढ़ी शायद उतना ना जानती हो जितनी बड़ी उनकी शख्सियत है। 17 अगस्त 1957 को मुंबई में जन्मे थे सचिन, और उनकी जो माताजी हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी माताजी उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन उनके पिता शरद पिलगांवकर उन्हें हमेशा से ही फिल्मों से जोड़ना चाहते थे। शरद एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे। तो अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर सचिन क्या चाहते थे, सचिन जो चाहते थे उन्हें वही मिला है। चलिए सुनाती हूँ आपको एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, आगे की कहानी इस गाने के बाद।

मैं सच बता रही हूँ, ईमानदारी की बात है कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि ये जो गाना है ये सचिन पिलगांवकर के ऊपर फिल्माया गया है, क्योंकि सचिन बहुत ही भोले से दिखते हैं चेहरे से, और ये सुपर रोमांटिक गाना है किशोरदा की आवाज़ में आपने सुना इसे, और कॉलेज गर्ल फिल्म से ये गाना है जो कि फिल्माया गया था सचिन और बिंदिया गोस्वामी पर। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गाना है, और वाकई सचिन के अंदर ये काबिलियत है कि हर तरह के रोल, हर तरह के किरदार वो बहुत ही आराम से निभा जाते हैं। दोस्तों, सचिन पिलगांवकर फिल्मों तक कैसे आए, इसके पीछे एक कहानी है। सचिन के पिता के एक जानकार हुआ करते थे सूर्यकांत, जो कि एक एक्टर थे। सचिन बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत से, बचपन से ही बहुत ही प्यारे लगते थे। तो सूर्यकांत ने जब उन्हें देखा तो सचिन के पिता से कहा कि कोल्हापुर में ऑडिशंस चल रहे हैं और वहाँ पर तुम चाहो तो सचिन को लेकर जा सकते हो। सचिन के पिता तो चाहते ही थे कि सचिन फिल्मों में जाएं, तो बस झट से उन्हें लेकर चले गए। सचिन सिलेक्ट भी हो गए, उम्र रही होगी करीब 4 साल, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि उस वक्त उन्हें किसी वजह से वो वाली फिल्म नहीं मिल पाई, और उनका करियर जो है ना वो शुरू हुआ 1962 में आई फिल्म हा माजा मार्ग एकला से। माफ़ कीजिए, मुझे मराठी नहीं आती तो नाम हो सकता है गड़बड़ बोला हो मैंने। तो सचिन की ज़िंदगी में ये जो फिल्म थी ये बेहद ख़ास रही, आप कह सकते हैं कि सबसे ख़ास। कैसे, किस तरह से बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये वाला गाना।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बचपन फिल्म का एक गाना आपने सुना और इस फिल्म में राम की भूमिका में नज़र आए थे सचिन। ये सचिन की उन फिल्मों में शामिल है जिसमें वो ना तो बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे, यानी कि टीनेज में थे। बताऊंगी आपको कैसे सचिन के करियर की शुरुआत हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, बताऊंगी। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपको तो कहीं नहीं जाना है, हाँ रेडियो के पास ही बैठे रहिए आप। हाँ
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे

0: के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बातें हो रही हैं सचिन पिलगांवकर की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आपको कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई, और एक बहुत ही ऐतिहासिक सी ये घटना है। दोस्तों, सचिन के एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर एक मराठी फिल्म से हुई थी। नाम था हा माजा मार्ग एकला। 1962 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए भेजा गया था। उन दिनों नेशनल अवार्ड्स को प्रेसिडेंट अवार्ड्स कहा जाता था। एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक वाकया हुआ इस दौरान। फिल्म देखने के बाद ज्यूरी ने कहा कि इसमें तो बच्चे यानी कि सचिन का जो किरदार है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो उनका मानना था कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है इस बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन उन दिनों नेशनल अवार्ड्स में चाइल्ड एक्टर कैटेगरी शामिल नहीं थी। अब ऐसे में इस कैटेगरी को शुरू किया गया। जी हाँ, इस कैटेगरी को इसी फिल्म से शुरू किया गया। और जो पहला प्रेसिडेंट्स अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए, वो दिया गया सचिन पिलगांवकर को। कितना खास मौका रहा होगा और कितना बड़ा अचीवमेंट है ये, है ना। चलिए सुनाती हूँ आपको सचिन का एक और गाना, कहीं ना जाना। ये तो आप सबका फेवरेट गाना होगा, है ना। बहुत ज्यादा डिमांड है इस गाने की।

मुस्कान तो इसमें सचिन रहे हैं, कितने प्यारे कितने सुंदर लगे हैं इस फिल्म में। हेमलता की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना, आंखियों के झरोखे से फिल्म से, और रविंद्र जैन का संगीत है इसमें। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है सचिन की। दोस्तों, मैं बात कर रही थी उनके करियर की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला तो उनकी जो माताजी हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, उनका जो दिल है एकदम बदल गया, और उन्होंने भावुक होकर कहा अपने बेटे यानी कि सचिन से कि बेटा तू तो इसी काम के लिए बना है, जबकि वो चाहती नहीं थी कि सचिन कभी फिल्मों में आए।

ये वो पल थे जिन्होंने सचिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और अब वो फुल टाइम एक्टर बनने की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ा चुके थे। आगे चलकर सचिन ने एक से बढ़कर एक चर्चित फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया, जैसे कि मजली दीदी, जूल थीफ, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली मेला आदि। सचिन को दो बार बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है, नेशनल अवार्ड मिला है उनको दो बार। 19वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी उन्हें ये सम्मान मिला है। ये अवार्ड भी उन्हें एक मराठी फिल्म अजब तुझे सरकार के लिए दिया गया था। अपने पूरे करियर में सचिन को 2 नेशनल अवार्ड्स, 6 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। ऐसी पर्सनैलिटी रही है सचिन की। जी हाँ, ये कोई सैड सॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और पहचान तो गए होंगे आप बालिका वधू फिल्म से।

हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं सचिन, बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोस्तों, सचिन के ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्माया गया और रजनी कुमारी के ऊपर बालिका वधू फिल्म का ये गाना है और 1976 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। लीड एक्टर के तौर पर सचिन की जो पहली फिल्म थी वो गीत गाता चल है, जो 1975 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बालिका वधू, जिसका ये गाना अभी मैंने आपको सुनाया अमित कुमार की आवाज़ में, ये तो उनकी बहुत ही ख़ास फिल्म रही है। इसके अलावा अखियों के झरोके से और 1982 में आई नदिया के पार, और इसके अलावा शोले, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता, बैराग और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं सचिन। अभिनय में तो सचिन ने कमाल करके दिखाया ही है, हिंदी और मराठी सिनेमा में और टीवी में भी। इसके अलावा भी मराठी फिल्मों और टीवी के लिए उन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स बनाए हैं, डायरेक्ट किए हैं और फिल्म मेकिंग में भी सचिन ने बेहतरीन काम किया है। सचिन को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है और आज भी वो सिनेमा को, टीवी को समृद्ध कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का गाना सुनाऊं आपको? चलो पहले बताओ आप कौन सी है उनकी पहली फिल्म? ये वाली।

गीत गाता शलफम का ये गाना आपने सुना जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में। दोस्तों ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करके मैं अभी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, क्योंकि 2:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात संगीत.com में। आप जुड़े रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के

0: साथ अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें, बने रहे हमारे साथ। आज की
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत बैंकिंग इस्लाहत और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स ताउन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने के वाले नुक्ते नजर का इरादा किया है। बिहार में अशोक धाम मंदिर

0: जान पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि मकामी इंतजामिया मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने मेलुकिन के करीबी रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपए की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के करीब एक होटल में आज सुबह सवेरे आग लगने से कम 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के इस्तकबालिया में लगी और तेजी से 4 मंजिला इमारत में फैल गई। आग लगने के वक्त ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। बीजेपी ने आज कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम के उस बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने खुद को दिफाई नक्सल कहलाने पर फख्र का इजहार किया था। नई दिल्ली में साफियों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमतें जिस नक्सलिज्म को खत्म करने में नाकाम रही थीं उस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में मोअसर तौर पर काबू पा लिया है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म डॉ मनमोहन सिंह के 13 अप्रैल 2006 के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने नक्सली खतरे को मुल्क के दाखिली सलामती के लिए तारीख का सबसे बड़ा खतरा करार दिया था।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: भारतीय फौज का दस्ता आज थाईलैंड के लिए रवाना हो गया जहां वो भारत और थाईलैंड के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क मैत्री के 15वें एडिशन में हिस्सा लेगा। ये मश्क कल शुरू होगी और 31 अगस्त को अख्ताम पजीर होगी। अमेरिका के हवाई में लाला नाम का तूफानी बादोबारा आने के बाद मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक सैलाब आ जाने के सबब एक शख्स कार हादसे में हलाक हो गया और 100 से ज्यादा इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश झारखंड और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में MR अर्जुन और हरिहरन पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। दोनों दूसरे मैच में 6-4 से सबकत बनाए हुए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत बैंकिंग इस्लाहात और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाएअमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स टाउन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने वाले नुक्ते नजर का इयादा किया है। बिहार में अशोकधाम मंदिर में भगदड़ के वाकये में 7 खवातीन की मौत हो गई जबकि मगरबी बंगाल के बीरभूम में आग लगने के वाकये में 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Viksit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham temple in Bihar. 5 people killed in fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 167 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of

0: विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन

0: प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास

से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ है आप सभी का स्वागत है संगीत.com में।

आरजू फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और 1965 की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी आरजू, जिसमें पर्दे पर नज़र आए राजेंद्र कुमार साधना, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी थी इनकी। दोस्तों आज ये जो दौर है, इस दौर में गानों की जो रिकॉर्डिंग है वो हाईटेक स्टूडियोज़ में होती है, लेकिन एक टाइम वो था जब फिल्मों के गाने लाइव गाए जाते थे। जी हाँ, लाइव, बिल्कुल 1931 की बात मैं कर रही हूँ, जब कोई साधन ही नहीं था प्लेबैक सिंगिंग का। तो फिर पहला जो गाना है, ज़रा सोच के देखिए कि जो पहला गाना है वो कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा, कैसे तैयार हुआ होगा, बताऊंगी आपको ये कहानी। इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से हैं और कहानियां हैं फिल्मों से जुड़े। सुनते रहिए संगीत.com।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अजनबी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। बिल्कुल अभी 1974 में फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। दोस्तों, आपने रेलगाड़ी पर तो बहुत सारे गाने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन मालगाड़ी पर फिल्म आए गए सबसे खूबसूरत गानों में से एक ये है और इस गाने में नज़र आए थे राजेश खन्ना और जीनत अमान। और आज हम बातें कर रहे हैं भारत के पहले फिल्मी सॉन्ग की। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि 1931 में बहुत ही मुश्किल हुआ करता था गानों को फिल्माना, गानों को रिकॉर्ड करना। असल में उस वक्त वो टेक्निक ही नहीं थी जो आज के टाइम है। तो दोस्तों, देश का जो पहला फिल्मी गाना है वो 1931 में रिलीज़ हुआ था और ये भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का गीत था। निर्देशक थे आरदेशिर ईरानी। आलम आरा

प्रीमियर 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में हुआ था। इसी फिल्म में इंडियन सिनेमा का पहला गीत भी गाया गया था। गीत के बोल थे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। जब इस फिल्म के लीड एक्टर और गायक वजीर मोहम्मद खान पर्दे पर आए तो फिर इस गाने की डिमांड हुई कि भाई ये गाना कैसे फिल्माया जाए, कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे तो प्लेबैक सिंगिंग का मसला ही नहीं था, कुछ था ही नहीं दूर से दूर तक। तो उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग का जो इंतज़ाम है वो कुछ इस तरह से किया गया था कि सेट के ऊपर ही लाइव इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था। और उस गाने का जो संगीत है वो फिरोज शाह, एम मिस्त्री और बी ईरानी ने तैयार किया था। बहुत ही मेहनत, बहुत ही मशक्क़त में तैयार हुआ करते थे उस दौर के गाने। वैसे मेहनत तो आजकल भी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए फ़िलहाल तो एक और मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ जिस गाने में आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और बड़ा ही डिमांड में रहता है गाना। हाँ, पहचाना? हाँ हाँ, वही है जो आप सोच रहे हैं, कर्ज फिल्म का गाना।

0: कर्ज फिल्म का गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में, आपने सुना बिल्कुल अभी, और उम्मीद करती हूँ कि गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। और भी बहुत सारे गाने आपको सुनाऊंगी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन थोड़े से हाँ बचे हैं अभी गाने सुनाऊंगी आपको, साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ कहानियां। लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं नहीं है जाना।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। गले में खराश आ गई है। तो होता है ऐसा, जब गाने बहुत ज्यादा सुनती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना भी है। तो दोस्तों, अब संगीत.com में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इस गाने के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सी बातें बताती हूँ। जी हाँ, ये गाना आपको लगा होगा कि बहुत ही आराम से सोचा होगा गीतकार ने और उसके बाद ये बन गया होगा। हाँ, मेहनत तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन इस गाने का आइडिया किसी और ने उनको दिया था। जी हाँ, चलिए बताती हूँ। धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया था ये गीत, और ये हिंदी सिनेमा की सबसे रोमांटिक गीतों में शुमार किया जाता है। इसका संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद। ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना है और इसके बोल हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दोस्तों, वैसे तो इस गाने को, जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा

हाँ, लेकिन इसका जो आइडिया है वो विजय आनंद ने दिया था। कहते हैं कि विजय फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी रवाना होने वाले थे और म्यूजिक टीम के साथ थोड़ा सा उनका डिस्कशन चल रहा था, तभी अचानक विजय को ये लाइन सूझी, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को ये जो लाइन है वो सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई, तो उन्होंने गीतकार राजेंद्र कृष्ण के साथ इस लाइन को साझा किया। राजेंद्र कृष्ण ने कहा

पल पल दिल के पास तो रहते हैं किशोर दा, आज भी उनके गाने हमें कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। वैसे दोस्तों, अब मैं आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनाने वाली हूँ एक गाना, और इस गाने के जो बोल हैं वो लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का दिया हुआ संगीत है इस गाने का, और एक प्रसंग में बताया जाता है कि ये जो गाना है ये दोस्ती फिल्म का गाना है, और इस गाने को साउंड ट्रैक से हटाना चाहते थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि नहीं नहीं, इस गाने को शामिल कर लो एल्बम में। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस गाने को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और इसे दो फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल गए। जी हाँ, कौन सा गाना है ये वाला।

0: तो दोस्तों, दोस्ती फिल्म का ये गाना है जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गाने को शामिल नहीं करना चाहते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साउंड ट्रैक में, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये गाना बहुत अच्छा है, इसे शामिल करो। और इस गाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड मिला था फिल्म फेयर, और बेस्ट सिंगिंग के लिए रफ़ी साहब को भी अवार्ड दिया गया था, बेस्ट सिंगर अवार्ड। तो दोस्तों, इतिहास ऐसे ही बन जाता है। चलिए फिलहाल तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार की समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भावी कार्यदिशा पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मानवता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित है। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
4: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीसराय भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने पर भारी भीड़ होने से मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन नागपंचमी पर कपाट खुलते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने को कहा। प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने प्राधिकरण से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। तमिलनाडु की याचिका पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ग्रस्त चार जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के पीड़ित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। गुवाहाटी में श्री सरमा ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15,000 रुपये की सहायता राशि जारी की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने चायकाल तक 5 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision of a Vikasit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the two-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future role of banks. She noted that Indian banks are in a position of strength, with non-performing assets at their lowest ever levels, providing a strong foundation for further reforms.
2: On the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you in advance, will hopefully provide that substantive meat for the committee to also look at. So the committee would probably have that material before them, even as they deliberate. And even as they deliberate, to give us their thoughts and also the recommendations which will help us to clearly understand where the committee wants India to go towards Vikasit Bharat, and in that the role of banks.
5: Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that in an era of artificial intelligence and fast evolving technology, graduation is not the end of education but a transition into a life of constant adaptation. He was addressing the 11th convocation of the Central University of Tamil Nadu in Tiruvannamalai.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, 3:11 और ठीक 1 सेकेंड मन भावन लेकर हाजिर है देविका। और मन भावन की ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com, जहां आप अपनी मेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि मन भावन में हम करते हैं कि पहली जो फरमाइश है वो हम अपनी और आपकी दोनों की पूरी करते हैं, तो मन भावन का आगाज़ हम कर रहे हैं जी हाँ तीसरी मंजिल के इस गीत के साथ।

आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, फिल्म तीसरी मंजिल, और आपकी बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच ही चुकी हैं. और पहली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजी है सनावाद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, और ये कहते हैं फिल्म रज़िया सुल्तान के इस गीत की फरमाइश.

लता जी की आवाज़ फिल्म थी रज़िया सुल्तान। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजी है कदमा जमशेदपुर से चिन्मोय महातो, रेखा महातो, शिवांश मंडल, कुमार सौरभ महातो। और ये कहते हैं कि हमें इस गीत की फरमाइश है, लव इन टोक्यो फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

पानी परिया मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए हमको इशारों से बुलाए।

सच मानिए रफ़ी साहब के इस शरारती अंदाज के साथ हम भी साथ साथ गुनगुना रहे हैं। और कुछ होता है हमारे जिनके नाम हम लेना चाहेंगे, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से, भोपाल राजस्थान से।

0: गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, ईशान चिपा, पूजा परिहार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष हैं, और रथुनापुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित हैं, अपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अबासी हैं, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनभावन सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: 3:28 और ठीक 40 सेकेंड। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है और प्रोग्राम है मनभावन। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवानकर, प्रणीता गवानकर, लाडला टुकटुक गवानकर, मेहरनगर उमेर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रिंस एकांश गवानकर और आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवानकर, सुमित गवानकर, कुमारी ध्वनि गवानकर परी, और इन्होंने फिल्म खूबसूरत के किसी भी गीत की फरमाइश की है, तो फिल्म खूबसूरत का ये गीत।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

मनभावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और देविका है आपके साथ मनभावन लेकर। और आपको ये भी बता दें कि ईमेल आईडी क्या है मनभावन की, fmgoldairdelhi@gmail.com, जहां आप अपनी मेल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें भेजी है दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने नागिन फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है। आवाज़ है लता जी की।

जी हाँ, फिल्म नागिन का गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में, और कुछ होता है हमारे जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। हम तक पहुंचा है मास्टर अशोक वर्मा का, और इन्होंने कम से कम 20 या 25 मेल्स हमें कर डाली हैं। अर्चना वर्मा है, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदाना मनगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। जिस गीत की आपने फरमाइश की है, अगर आपने कलाकार बेमिसाल सुना है अभी, तो ये गीत कलाकार बेमिसाल में प्ले हो चुका है। बालिका वधू का गीत था और आज कलाकार बेमिसाल, जैसा कि आप सब जानते हैं, सचिन जी पे गया है। और हम तक पहुंचा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरिया जलंधर से अतार सिंह करदम है, और इसके साथ हम तक पहुंचा है मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री, इसके साथ छिपा कॉलोनी खंडवा से, और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा है और सिटी दीवाना है। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, कमलेश खोरवाल, और इन्होंने फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा के इस गीत की फरमाइश की है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: तीन बजकर 44 मिनट और ठीक 40 सेकेंड। जी हाँ, मनभावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और अगली मेल जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से भोतराज खोरवाल, कमला लानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, और इन्होंने फिल्म आन मिलो सजना के इस गीत की फरमाइश की है।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: 3:50 हो चुके हैं और आपकी बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मन भावन को इतना पसंद करने के लिए। और हम तक जो श्रोता लिखते हैं वो हैं गुनौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, खेल बाजार पानीपत से नलेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और ये हम तक कुछ बच्चे हैं जिन्होंने भेजी है मेल। कहते हैं कि प्यारी प्यारी आपको बहुत बहुत आदाब और नमस्कार, और हम भी मंतजर हैं, क्या बात है। और अल्तमाश समीना, मुदस्सिर फिरदौस और जुमा नगर खंडवा के बच्चे, क्या बात। और हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया हैं, मुकेश, जतिन, अनन्या, पूनम, ममता, सुमन, और ये बिहार से हमें लिखते हैं। और अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं वो हमें

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आवाज़ थी किशोर कुमार की। और हम अंतिम मेल जो शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है श्रीनिवासन, श्रीजा, अभिलाष, अंकिता और अभिषेक ने केरला से। और ये लिखते हैं कि मिस्टर इंडिया के बहुत ही चुलबुले गीत की फरमाइश की है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं, जिनमें डॉ हेमांग जोशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष रूप कुमार

0: कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार की समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भावी कार्य दिशा पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित सहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और गोपनीय संचालन व्यवस्था, सुरक्षित कक्षों, एयर गैप्ड सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित है। बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित थी। 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीसराय भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने पर भारी भीड़ होने से मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन नागपंचमी पर कपाट खुलते हैं और इस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन आज मेजबान श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। एमआर अर्जुन और हरिहरन हमसा करुणन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, light 5 cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from the

0: जी हाँ, एक मुसाफिर एक हसीना का गीत आपने सुना। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। देविका है आपके साथ।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: सपना
1: जी हाँ, फिल्म अप्पू राजा का गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और आपको बताती जाती हूँ, थोड़ी सी देर में होंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार, और उसके बाद 4:30 पे परिक्रमा होगा।

0: राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड ए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन ग्रेड ए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पे लेवल 2। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.niot.res.in। इसके अतिरिक्त 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप आवश्यक जानकारी के लिए देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एक प्रमुख नियामक है जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा पंजीकृत है। आमंत्रित कर रहा है प्रबंध निदेशक के एक पद को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए आवेदन। समेकित वेतन रहेगा वार्षिक आधार पर 24 लाख रुपए से 30 लाख रुपए लगभग। योग्यता अनुभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट icsiiip.in/careers.php। CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स को आवश्यकता है सुरक्षा सहायक यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। एक पद है जो कि अनारक्षित है। नियम और शर्तों की तथा वेतन और आरक्षण की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट www.csircmc.res.in। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर के प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार वैष्णवी।

0: Yes, Vaishnavi, so the monsoon season is going on and the month of Shravan is full of festivals in our country, isn't it? We celebrated Haryali Tej last Saturday and today it is another Somvar and along with it, the festival of Nag Panchami. Mm-hmm. Nag Panchami is a traditional Hindu festival dedicated to the worship of serpent deities or the Nag Devta and celebrated to honor snakes for protection, the family well-being and ecological balance. Snakes have divine associations as well in our country. If you remember, Lord Shiva wears a serpent around his neck mm-hmm. and then Lord Vishnu is also always seen resting on his Sheshnag. So, saapo ka bhi bahut importance hai hamare, agar divine tarike se bhi dekhe to. But celebrating Nag Panchami also celebrates triumph over evil, which is like marking Lord Krishna defeating the venomous serpent Kalia in the Yamuna River. Aapne purane mythological stories mein ye baat padhi hogi. Snakes also symbolize water, fertility, hidden wisdom, rebirth, and cosmic balance. As guardians of springs, rivers, and underground treasures, they represent both life-giving and destructive natural forces. It's amazing, Vaishnavi, to note how our culture highlights ancient cultural values that view all creatures as sacred parts of a shared environment. Like snakes, they help farmers by eating rats and mice, which protects food crops in the fields. Mm-hmm. And if we note the timing of this Nag Panchami, mm-hmm. it is celebrated during the rainy season when snakes leave flooded underground homes. The day reminds people to safety coexistion of with them rather than harming the snakes. Mm-hmm. And then it also takes care of the biodiversity. Like traditional practices encourage protecting the natural habitats and sacred groves where local wildlife thrives. Mm-hmm. So for our real existence, the nature and the animals along with it, everything is so very important. And we try to give importance to each one of them.
1: Bilkul.
0: And now, Vaishnavi, to set the ball rolling, let's surprise all of you with news making headlines at this hour of the day. Government destroyed ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah.
2: सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी।
0: इंडिया रीअफर्म्स पीपल सेंट्रिक ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच टू ब्रिक्स कोलैबोरेशन ड्यूरिंग इट्स चेयरशिप।
2: बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए।
0: IMD shows red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today.
2: और खेलों में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू, भारत के MR अर्जुन हरिहरन हमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे।
0: And Vaishnavi, like always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, in a series of topics that we'll talk about, the first is strengthening India's space sovereignty. India's space story is no longer just about reaching space. It's about building the technologies, infrastructure and talent to shape what happens there. And today we are looking at how far that journey has come and where India is headed next.
2: बिल्कुल, आंकड़े अगर हम देखें तो भारत के स्पेस सेक्टर की तेज प्रगति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2014 में भारत में केवल एक रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप था। आज 2026 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 440 हो गई है। वर्तमान में भारत की स्पेस इकोनॉमी का मूल्य लगभग 9 अरब डॉलर है। अनुमान है कि अगले दशक में ये बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
0: एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन ड्रिवन बाय मेजर रिफॉर्म्स। इंडिया ओपन द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन 2020, फॉलोड बाय द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। एंड दिस ओपन द डोर फॉर स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट अक्रॉस सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस एप्लीकेशंस।
2: अनुज, इसका मतलब यही हुआ कि अब स्पेस सेक्टर सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, इसमें निजी कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में स्पेस सेक्टर में निजी निवेश करीब 10 करोड़ डॉलर था, मार्च 2026 तक ये बढ़कर 61 करोड़ 80 लाख डॉलर से अधिक हो गया है.
0: एंड देन देयर इज द लॉन्च स्टोरी. इंडियाज इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल्स लाइक PSLV, GSLV, LVM3 एंड SSLV आर सपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशंस टू कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस.
2: असल में भारत से विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. 2014 से पहले भारत ने 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे. वहीं जनवरी 2026 तक ये संख्या बढ़कर 399 हो गई है. ये इस बात का संकेत है कि दुनिया अब किफायती और भरोसेमंद स्पेस सर्विस के लिए तेजी से भारत की ओर देख रही है.
0: And the point to be noted, Vaishnavi, here is that India's ambitions go far beyond the Earth orbit. Chandrayaan 3's historic soft landing near the Moon's South Pole in 2023 placed India among the leading lunar exploration nations.
2: इसका मतलब यही हुआ कि भारत की नजरें अंतरिक्ष में अगले बड़े लक्ष्यों पर है. चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत चांद की सतह से सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाया जाएगा. इसके साथ ही भारत और जापान मिलकर ल्यूपिक्स मिशन पर काम कर रहे हैं. इस मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी और दूसरी वापशील चीजों की मौजूदगी का पता लगाना है.
0: Not only this, we have also reached the sun. Aditya L1 is studying our nearest star from the sun, Earth L1 point, while missions like Exposat are taking India deeper into advanced astronomy.
2: Anuja, अब बातचीत को हम फिर वापस से एक बेहद रोमांचक विषय पर लाते हैं, यानी इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा. ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला की एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन की यात्रा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही. अगर हम देखें तो इस मिशन से भारत को माइक्रो ग्रेविटी में काम करने और मानव अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अनुभव मिला.
0: एंड एक्सपीरियंस दैट विल फीड डायरेक्टली इनटू गगनयान, इंडियाज ओन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. द प्लान इज टू सेंड 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू अ 400 किलोमीटर ऑर्बिट फॉर अ 3-डे मिशन विद द फर्स्ट crewed experimental mission targeted for the fourth quarter of 2026.
2: अनुज, यही भारत की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जिसे वर्ष 2035 तक शुरू करने का लक्ष्य है. इस अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में भारत की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा. ये रिसर्च नई तकनीकों के विकास और लंबे समय तक चलने वाले मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराएगा.
0: प्लस इंडिया इज वर्किंग ऑन रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजीज, सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स एंड ऑल्सो एडवांस्ड प्रोपल्शन. द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, मोर केपेबिलिटी, ग्रेटर सेल्फ रिलायंस एंड लोअर कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस.
2: अनुजा, अब हम देख ही रहे हैं कि पूरे देश में हमारी वर्षगांठ 80 साल आज़ादी के हो गए हैं, वो मनाया जा रहा है. और इसी तरह से देश की अंतरिक्ष यात्रा की विकास यात्रा भी हमें एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है. ये सफर बुनियादी क्षमता विकसित करने से शुरू हुआ और आज भारत दुनिया के साथ कदम मिलाकर अत्याधुनिक और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष तकनीक विकसित कर रहा है.
0: एंड परहैप्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज दिस, मेनी ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ इंडिया स्पेस स्टोरी आर स्टिल वेटिंग टू बी रिटन.
2: यानी संक्षिप्त में कहा जाए तो चांद और मंगल से लेकर सूरज तक और अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर स्पेस स्टेशनों तक भारत के अंतरिक्ष सफर का अगला पड़ाव बेहद रोमांचक और महत्वाकांक्षी होने वाला है.
0: India's space journey continues and the countdown to the future has already begun. And moving on to our next topic now, we will talk about the changing culture of cinema going from theaters to streaming platforms.
2: श्रोताओं, क्या आपको याद है कि जब फिल्म देखने के लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता था, शो के समय के हिसाब से समय तय करना, टिकट बुक करना, लाइन में लगना और फिर खचाखच भरे सिनेमा हॉल में अपनी सीट संभालना.
0: But today that entire ritual can be replaced by a few taps on a phone or smart TV. Pick a film, press play and your living room becomes your cinema hall.
2: बिल्कुल अनुजा, स्ट्रीमिंग ने फिल्में देखने का हमारा तरीका पूरा तरह बदल दिया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है सुविधा. अब ना शो का कोई समय तय है, ना ही कहीं आने जाने की जरूरत और ना ही इंतजार करना पड़ता है. अब आप जब चाहें अपनी पसंद की फिल्म या कार्यक्रम देख सकते हैं.
0: एंड द ऐप सीम टू नो व्हाट वी वांट इवन बिफोर वी डू. एल्गोरिथम्स रिकमेंड फिल्म्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव वॉच्ड, सर्च्ड और even abandoned halfway. They know everything. They are like smart TVs and all.
2: Bilkul.
0: They can read our mind also.
2: बिल्कुल. अब एक बड़े बदलाव की बात करते हैं, यानी binge watching culture. पहले लोग 2 घंटे की फिल्म देखने के लिए समय निकालते थे, अब दर्शक एक पूरी सीरीज के कई

0: एपिसोड लगातार देखना पसंद कर रहे हैं और कई बार पूरा वीकेंड इसी में बिता देते हैं.
1: बट देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग शिफ्ट हैपनिंग, द कैजुअल सिनेमा आउटिंग, द लेट्स जस्ट गो वॉच समथिंग दिस फ्राइडे, वो जो एक चीज थी इट्स बिकमिंग लेस कॉमन नाउ.
0: बिल्कुल, आजकल लोगों को घर पे ही रह के बैठ के देखना, कोई भी अपनी फेवरेट फिल्म हो या चाहे सीरीज हो, वो देखना बहुत पसंद है. हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर छोटे ड्रामा, कॉमेडी और किरदारों पर आधारित कहानियों को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसी कहानियां कम समय में दर्शकों को जोड़ने में कामयाब हो रही है. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिनेमा हॉल खत्म हो रहे हैं?
1: नॉट क्वाइट वैष्णवी, इट्स चेंजिंग. थिएटर्स आर बिकमिंग मोर ऑफ अ प्रीमियम एक्सपीरियंस, रिक्लाइनर सीट्स, गुरमे फूड, इमर्सिव साउंड एंड लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन्स. सो द इक्वेशन सीम्स टू बी चेंजिंग फ्रॉम वेयर कैन आई वॉच अ मूवी टू इज दिस मूवी वर्थ लीविंग होम फॉर. And as our movie watching habits move from cinema halls to mobile phones and smart TVs, platforms like Waves by Prasar Bharati become increasingly important.
0: बिल्कुल अनुजा, Waves एक ऐसा digital platform है जहां मनोरंजन और जन सेवा से जुड़ा content एक ही जगह उपलब्ध है. यहां दर्शक घर बैठे फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम, रेडियो और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कई तरह के content का आनंद ले सकते हैं.
1: So in a way, Waves reflects this larger transformation in viewing culture. We may be moving away from traditional cinema outing, but we are not moving away from stories. We are simply choosing new screens, new formats and new ways to watch them.
0: और यही बात वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म को खास बनाती है. ये डिजिटल स्ट्रीमिंग की सुविधा को भारतीय दर्शकों से गहराई से जुड़ी चीजों के साथ जोड़ते हैं. इनमें हमारी भाषाएं, हमारी कहानियां और हमारी समृद्ध ब्रॉडकास्टिंग विरासत शामिल है. यानी आधुनिक डिजिटल सुविधा के साथ भारतीय कंटेंट और संस्कृति से जुड़ाव भी बना रहता है.
1: बिकॉज द फ्यूचर ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट मे नॉट बी अबाउट चूजिंग बिटवीन द थिएटर एंड द स्क्रीन एट होम, बट अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर Both experiences can continue to evolve.
0: और अनुजा, से पहले आगे बढ़े हैं, श्रोताओं को एक जरूरी जानकारी दे देते हैं. यहाँ पे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा.
1: Right, and to participate, simply dial the telephone number 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 after 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR.
0: और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है.
1: सो वे आर वी गोइंग फर्स्ट वैष्णवी, लेट्स गो टू भोपाल. देर इज अ ह्यूज क्राउड ऑफ डिविटीज इन उज्जैन इन मध्य प्रदेश एज द थर्ड मंडे ऑफ श्रावण एंड नाग पंचमी इज फॉलिंग ऑन द सेम डे टूडे. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव कम टू विजिट बाबा महाकाल एंड नाग चंद्रेश्वर. वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आर कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम भोपाल.

0: अनुजा, हम किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जब जाते हैं या घर पर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तब भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद पाते हैं। वैसे तो प्रसाद में कोई मिठाई या पकवान देने की परंपरा है, लेकिन महाराष्ट्र के विख्यात तुलजापुर मंदिर में तुलजा भवानी देवी के प्रसाद के रूप में पेड़ा या कोई मिठाई नहीं बल्कि पौधा मिलता है। मंदिर की ओर से हाल ही में इस नई परंपरा की पहल की गई है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भगवान की पूजा का संपन्न होना, भगवान को लगे भोग का कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित तुलजापुर के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधा देने की परंपरा मंदिर की ओर से इस स्वतंत्रता दिन से शुरू की गई। हमारी प्रतिनिधि वैभवी जोशी ने इस बारे में और अधिक जानकारी साझा की।
2: मंदिर की ओर से बताया गया कि पेड़ों की कम होती संख्या को देख यह निर्णय लिया गया। इस मंदिर के दर्शन के लिए न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी कई श्रद्धालु आते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधा दिया जाता है और उस पौधे का अपने घर के आंगन में, खेत में या अपनी सहूलियत के अनुसार रोपण करने की और जतन करने की अपील की जाती है। मंदिर की इस पहल का श्रद्धालुओं की ओर से भी स्वागत किया जा रहा है।
1: मंदिर की इस पहल से पौधारोपण अभियान को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही लोगों में पेड़ पौधों से लगाव होने में भी ये पहल लाभदायक सिद्ध होगी। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
0: और महाराष्ट्र से अब आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। कटिहार जिले में इस बार आजादी का जश्न एक खास मिठास के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन ने इस बार राज्य स्तरीय समारोह में आगंतुकों के लिए मखाना जलेबी की व्यवस्था की गई थी। क्या है मखाना जलेबी की खासियत, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता से।
3: 80वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर इस बार कटिहार जिले वासियों के लिए एक खास मिठास लेकर आया। इस विशेष मौके पर कटिहार के नागरिकों ने मखाने से तैयार हेल्दी जलेबी के साथ ही मखाना पेड़ा, मखाना ठेकुआ समेत अन्य मिठाइयों का स्वाद चखा। जिला प्रशासन की ओर से स्वाधीनता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में लोगों के लिए मखाने से बनी विशेष जलेबी की व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मखाने से बने उत्पादों का पहला आउटलेट समाहरणालय परिसर में खोला गया है। इसके बाद जिले के सभी खंड कार्यालयों में भी ऐसे आउटलेट शुरू करने की योजना है।
4: वैल्यू एडिशन भी मखाना के प्रोडक्ट्स से किया जाए, जिससे कि जो मखाना के उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेहतर रेम्यूनरेशन मिल सके। इसी क्रम में मखाना से मिठाई, जलेबी, बिस्किट, ठेकुआ, ये सारी चीजें बनाने का काम शुरू किया गया।
3: मखाना जलेबी तैयार करने वाली पिंकी देवी बताती हैं कि इस जलेबी को लोगों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से उनका उत्साह बढ़ा है।
5: हम लोग सोचते थे कि मखाना का जलेबी बनाएंगे, तो एक बार पहले टेस्ट किए कि मखाना का जलेबी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखे तो मखाना जलेबी बन गया। तो बनाए तो सोचे कि तो इसका भी ये करेंगे, कहाँ डिमांड है इसका।
3: इस पहल से सुपर फूड के नाम से मशहूर कटिहार के मखाने को नई पहचान मिलने के साथ ही नया स्वाद भी मिला है। इससे मखाने के विकास और इसके मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: कच्छ जिला प्रशासन की एक अनूठी और ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत गुजरात में संभवतः पहली बार एक दिन के लिए बेटियों ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। ये आयोजन राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके अंतर्गत बेटियों की केवल शिक्षित होने पर ही नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ भुज स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में शक्ति लीडरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष मॉक संकलन का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की रिपोर्ट।
6: कच्छ कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस शक्ति लीडरशिप मॉक संकलन में कक्षा 10वीं से लेकर कॉलेज स्तर तक की 106 छात्राओं ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। इन मेघावी छात्राओं ने एक दिन के लिए जनप्रतिनिधियों और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य मंत्री, सांसद, विभिन्न विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला विकास अधिकारी जैसे उच्च पदों की जिम्मेदारी संभाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। मॉक संकलन के दौरान छात्राओं ने अपनी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा और परिपक्वता के साथ निभाया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के रूप में कच्छ जिले को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, महिला कल्याण, सड़क और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को सदन के समक्ष उठाया। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका निभाते हुए उन्होंने इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान और उत्तर भी प्रस्तुत किया। इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें प्रशासनिक कामकाज और जनता की सेवा करने के तौर तरीकों से गहराई से अवगत कराया। इस कार्यक्रम का सबसे रोमांचक और यादगार पहलू यह रहा कि जिस प्रकार वास्तविक जनप्रतिनिधि और अधिकारी सरकारी गाड़ियों में बैठकर बैठक में आते हैं, उसी प्रकार इन छात्राओं ने भी अपने अपने प्रतीकात्मक पदों के अनुरूप सरकारी वाहनों में

0: सवार होकर कलेक्टर कचहरी में प्रवेश किया। एक दिन के लिए माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी बनने तथा अपने पद की गरिमा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का यह अनुभव छात्राओं के लिए अत्यंत गर्व और भावुकता से भरा पल रहा। परिक्रमा के लिए भूज से परेश मारू।
1: And now some news from the sports field. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 274 for 9 in their first innings against India in the first test of the two-match series at Goa when reports last came in. Earlier in the day, India were bowled out for 462 in their first innings. The hosts still trail visitors' first innings total by 188 runs.
2: और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। वहीं हॉकी की तरफ रुख करें तो विश्व कप में आज नीदरलैंड्स की अमस्टेल फेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा।
1: And in some business news, benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points.

0: Joshi at that time, and then made the movie Runaway to Mumbai in 1942 to enter the film industry. And of course, he edited Ray's seminal masterpiece, Pather Panchali. Their continuous artistic collaboration lasted for 36 years. He was highly praised for understanding Ray's inherent sense of timing, musical pacing, and camera movements. And of course, he edited many of the masterpieces done by Satyajit Ray, like Charu Lata, Jal Sagar, and Appu trilogy.
1: आज सचिन पिलगांवकर अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका फिल्मी सफर बचपन से शुरू होकर अभिनय, निर्देशन, निर्माण और गायन तक पहुंचा. गीत गाता चल, बालिका वधु, अखियों के झरोके से और नदिया के पार जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय बनाया. अब अगर नदियों के पार की अनुजा बात हो ही रही है तो यहाँ पे श्रोताओं को उस फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं.

0: In fact, he received two National Film Awards, including the Best Child Artist for Ajab Tujhe Sarkar in 1972. He received 6 Maharashtra State Film Awards and 2 Filmfare Awards for Marathi movies. So that's about Sachin Pilgaonkar.
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे और अनुजा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए.
0: नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनरल एटॉम

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गाते गुनगुनाते लेकर देविका हाजिर है और शाम के करीब 5:11 और 3 सेकंड हो रहे हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, सड़कें अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं और लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन हर कोई घर नहीं लौटता। कुछ लोग बस अपनी खामोशी में लौटते हैं, अपने कमरे में, अपनी यादों में और उन बातों में जो किसी से कह नहीं पाए। शामें वैसे तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब इंसान अकेला होना तो यही शाम थोड़ी लंबी लगने लगती है। एक कप चाय सामने होती है, फोन हाथ में होता है, कई नाम स्क्रीन पर होते हैं, लेकिन जिस एक इंसान से बात करने का मन होता है उसी का नाम कहीं नहीं होता। तो अगर आज की शाम आप भी अकेले हैं तो याद रखिए, अकेला होना और अकेलेपन को महसूस करना दो अलग बातें हैं। कभी कभी खुद के साथ बैठना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है ना।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आपने गीत सुना। फिल्म थी जी हाँ कयामत से कयामत तक, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, आनंद मिलन का संगीत। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?

0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: बज के 19 मिनट और ठीक 55 सेकंड। गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। खुदा मोहब्बत में दूरी मायने नहीं रखती, मंजिल मायने रखती है। महबूब कहता है कि इतना बड़ा समंदर पार करोगे मेरे लिए। आशिक कहता है कि समंदर चाहे कितना भी गहरा हो, तुम उस पार हो तो मुझे जाना ही है। और वो लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में समंदर भी रास्ता बन जाता है। आशिक, तुम्हारे लिए समंदर पार करना मुश्किल था, तुम तक पहुंचना नहीं।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, विषात्मा का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी साहब के बोल, विजू शाह का संगीत और आवाज सपना मुखर्जी की थी। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ, गाते गुनगुनाते का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से, इंदिवर साहब की बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की, और गाते गुनगुनाते में बस इतना ही। देविका आपसे

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो फार्मर्स, कैसे हैं आप? हेलो फार्मर्स, हम लेकर आ गए हैं सोमवार को एक बार फिर से 5:30 बजे का समय होता है आपके इस कार्यक्रम का, जिसमें जुड़ जाते हैं हमारे वो फार्मर्स जो अपने खेतों से निकलकर अपने घर तक पहुंच गए हैं और हमसे जानकारी लेने के लिए हाजिर हो गए हैं। तो मैं हाजिर हो गई हूँ, यानी मैं हूँ सुषमा और मेरे साथ है मेरे साथी
4: निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार
3: निरंकार, आज हम बात कुछ ऐसी करने वाली हैं जो कि हमारे किचन से, हमारे किचन क्या, हमारी थाली से जुड़ा हुआ एक ऐसी सब्जी है जो कि बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, हेल्थ के लिए।
4: हाँ बिल्कुल,
3: आप मेरा इशारा समझ गए।
4: हाँ बिल्कुल, आपका इशारा समझ रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं खीरे की, और इसे भी पोली हाउस में खीरे की सफल खेती कैसे करें और उससे कैसे मुनाफा लें, इस विषय पर आज की जानकारी हम लेंगे। हम जानते हैं कि बदलते मौसम और सीमित कृषि भूमि और बढ़ती बाजार की मांग के बीच में संरक्षित खेती कृषि की आय बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विकल्प रही है, और पॉली हाउस में नियंत्रित वातावरण के कारण खीरे की सफल खेती को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाकर किया जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सफल खेती के लिए सही किस्म, पौध तैयार करने की तकनीक, तापमान, नमी प्रबंधन, सिंचाई, पोषण और रोग नियंत्रण आदि विषय की जानकारी अगर हमें होती है तो हम अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं, डॉक्टर पीके सिंह जी जो प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा नई दिल्ली में।
3: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
3: जी। और हम अपने किसानों से भी कहना चाहते हैं कि जुड़ जाइए, हमें कॉल करिए, हमारा नंबर आपके पास है। और फिर भी हम दोहरा देते हैं अपने नंबर को
4: जी।
3: अगर दिल्ली से बाहर से कॉल करें तो 011 जरूर लगाएं, और नंबर है 2342-1081 और दूसरा नंबर है 2342-1083।
4: और इन नंबर से हमारे सभी श्रोता पूरी तरह से वाकिफ हैं और कई को तो जवानी याद है, तो जरूर इन नंबरों पर फोन करके सीधे संपर्क कर सकते हैं विशेषज्ञ से।
3: बिल्कुल। तो सर हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पॉली हाउस की बात करें, हमारा टॉपिक भी यही है कि पॉली हाउस में खीरे की सफल खेती और मुनाफा कैसे कमाया जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि ओपन में ही जनरली खेती होती है, और ऐसी मान्यता भी है कि हाउस मतलब सीमित संसाधन होंगे, सीमित जगह होगी, बहुत ही कॉस्टली ना हो जाए हमारी कहीं ये पॉली हाउस में जो भी हम प्रोडक्शन का हम लोग कोई भी खेती करें। तो अंतर अगर हम जाने तो क्या रहेगा अंतर?
5: देखिए, जब हम खुले खेत में खेती करते हैं और संरक्षित जो संरचनाएं हैं उनमें हम खेती करते हैं
3: जी,
5: तो उसमें 3-4 चीजें जो हैं मुख्य होती हैं। एक तो जब हम पॉली हाउस की खेती की बात करते हैं तो हम लगभग साल भर उस फसल को उगा सकते हैं। तो जैसे खीरा अगर देखें अमूमन तो या तो बरसात में होता है या गर्मी के टाइम में होता है। जो सर्दी के समय है वो खीरे की फसल ना के बराबर होती है। तो आप और अगर आप पॉली हाउस में खीरे की खेती करते हैं तो आप 3 तो मोटी मोटी फसलें ले ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो 4 फसलें भी ले लेते हैं। दूसरा कि जो गुणवत्ता है खुले खेत में और पॉली हाउस के, तो उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है,
3: क्वालिटी
5: जिसको कहते हैं। और अगर तीसरी बात करें तो उत्पादकता, प्रति एरिया जो है उत्पादन जो है हमें पॉली हाउस में लगभग 2.5 से 3 गुना 4 गुना तक भी मिलता है खुले खेत की अपेक्षा।
3: बिल्कुल।
5: खुले खेत में एक और समस्या होती है कि आंधी पानी बरसात या जो सूखा विपरीत परिस्थितियां जिसको कहें, तो उनसे हम फसल को नहीं बचा पाते हैं। लेकिन संरक्षित संरचनाओं में इनसे भी बचाव हो जाता है काफी हद तक, तो ये किसान भाई इसको समझ सकते हैं
4: जी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में जब लगाते हैं, गुणवत्ता वाली उत्पादकता हमें प्राप्त होती है, तो इसकी वजह क्या है? क्या बीमारियां कम लगती हैं, कीट कम लगते हैं?
5: नहीं, देखिए जब जो संरक्षित संरचनाएं हैं वो एक तरह से इस तरह का वातावरण फसल को या पौधों को मुहैया होता है, जिससे उनकी अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादकता दोनों जो है वो और प्रतिकूल परिस्थितियों से उसका बचाव होता है। क्योंकि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो पौधा अपनी अधिकतर ताकत उससे लड़ने में ही लगा देता है।
4: जी जी जी। तो क्या खीरे की कोई खास किस्म लगाई जाती है?
5: देखिए, जो भी चाहे खीरा हो या टमाटर हो या जो भी और फसलें जो पॉली हाउस और खुले खेत में होती हैं, दोनों में ही अंतर होता है। जो पॉली हाउस के अंदर लगने वाली प्रजातियां हो बिल्कुल अलग तरह की प्रजातियां होती हैं। जैसे खीरे की बात करें तो जिनको लोग जापानी खीरा, चाइनीज खीरा, यूरोपियन खीरा, जीरो वेस्ट कुकुम्बर भी कहते हैं, तो ये एक तरह की ऐसी मतलब प्रजातियां होती हैं जिनमें नर फूल नहीं आते हैं। ये गाइनोसियस हाइब्रिड्स होते हैं जिनमें केवल मादा मादा फूल ही, हर गांठ पे मादा फूल ही आते हैं, तो उससे जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
3: जी सर, हम और भी जानकारी लेंगे लेकिन कुछ कॉलर्स हैं। कई बार क्या होता है कि सर विषय से अलग भी कुछ प्रश्न हमारे किसान
5: जी,
3: पूछ
5: बिल्कुल,
3: लेते
5: बिल्कुल।
3: हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसका भी अगर आंसर दे पाए तो जरूर दें।
5: नहीं, बिल्कुल।
3: हेलो हेलो जी सर, हमारे एक कॉलर थे सर, वो बाजरे की खेती लगा रखी, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे कि इतनी सारी घास उसमें उगाई है, उस घास को मैं कैसे हटाऊं या मेरी खेती उत्पादकता कैसे होगी।
5: वो जहां से भी बोल रहे थे तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, वहां पे भी जो सस्य विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु विशेषज्ञ होंगे वो उनको बेहतर सलाह दे पाएंगे।
4: और हम गुजारिश करेंगे कि हमें जो श्रोता है वो खीरे और पॉली हाउस में खेती से संबंधित सवाल।
3: हाँ, मैं फिर से दोहरा देती हूँ।

0: हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि खीरे से संबंधित जो भी आपका जानना चाहते हैं, आपने अगर पॉली हाउस में अगर खीरे की फसल लगाई हुई है उससे जुड़ा हुआ यदि कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर कॉल करें। अभी भी पूरा समय है आपके पास। हमारे फोन नंबर्स मैं दोहरा देती हूँ, 011 अगर दिल्ली से बाहर से करें तो जरूर लगाएं 2342-1081, दूसरा नंबर है 2342-1083। हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: बिल्कुल फार्म टू सिटी, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। बिल्कुल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और सोमवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए हेलो फार्मर्स 5:30 बजे, लेकिन दिन सोमवार और फार्म टू सिटी इज रविवार। तो ये दो दिन है आपके लिए जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं और सोमवार वाले दिन लाइव प्रोग्राम में आप फोन करें और विषय पर जानकारी लें। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपके साथ, नंबर आपको दोहरा दिए हैं निरंकार, और हम बात कर रहे हैं खीरों की, है ना। प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आजकल बाजार में कितनी प्रजातियां हैं खीरे की, जिसमें कहते हैं ये जी देसी खीरा है और ये देखिए ये चाइनीज खीरा है और ये दूसरा खीरा है। तो सर प्रजातियों पर भी एक बार बात करना चाहेंगे आपसे।
2: जी सुषमा जी, आपने सही बताया। कई बार हमारे किसान भाइयों के हमें भी सवाल आते हैं कि हमने ये प्रजाति लगाई हुई है खीरे की पॉली हाउस में, लेकिन इसमें फल आता है और उसके बाद फल झड़ जाता है। तो उसका ये होता है कि पॉली हाउस के अंदर जो है कोई परागण की कीड़ा मकोड़ा तो उपलब्ध होता नहीं है, तो इसलिए परागण नहीं हो पाता है। तो इसलिए पॉली हाउस के अंदर जो प्रजातियां हम लगाते हैं वो गाइनोसियस हाइब्रिड्स होते हैं जिनमें परागण की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसके लिए जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा एक विकसित है DPC6 दिल्ली पॉली पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6 या दिल्ली पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6, तो उस खीरे की प्रजाति को आप ले सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की एक प्रजाति है पंजाब खीरा 1, तो इन दोनों प्रजातियों का आप भी, एक्चुअली इसका बीज बहुत महंगा आता है। आप देखें तो जो पॉली हाउस का खीरा है उसका बीज एक दाना 6 रुपये से लेके 12 रुपये प्रति दाना तक पड़ता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो निजी कंपनियां हैं विदेशों से बीज आयात करती हैं और उनको वो तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे देश में भी अब तीन चार ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की DPC6 है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की पंजाब खीरा 1 है, ऐसे ही अन्य जगहों पर भी एक दो प्रजातियां और भी हैं जो उपलब्ध हैं और वो उनका खीरे का बीज करीब 2.5 रुपये प्रति बीज के आसपास पड़ता है। तो अब बीज इतना महंगा है तो किसानों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर वो पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो उचित प्रजाति का ही चयन करें।
0: बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर आप इतना कॉस्टली, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है क्योंकि अगर आपने कॉस्टली उसे प्रोडक्शन के लिए अपने तैयार कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। सर एक कॉलर है, उनसे जरा पूछ लेते हैं। कुछ कॉलर्स ये भी जानना चाहते हैं क्या गमलों में भी हम खीरा उगा सकते हैं अपने घरों में, कुछ ऐसा ही प्रश्न आया है, जानते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो सूरज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
2: ये फोन रखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं।
0: हाँ, लेकिन प्रश्न उनका यही था कि हम गमले में उगाना चाहते हैं लेकिन।
2: तो आप गमले में भी खीरा लगा सकते हैं लेकिन आपको दूसरी प्रजातियां लगानी पड़ेंगी जो खुले खेत में लगती हैं। वो उनमें कई सारी प्रजातियां, जैसे पूषा उदय है एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रजाति है, या दूसरी जगह पे हैं तो कोई और भी प्रजाति जो खुले खेत की है आप उसको लेकर लगा सकते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर सब्जियां जो हैं वो गमलों में लगाई जा सकती हैं और अगर आपके पास छोटा सा पॉली हाउस है इस तरह का आप संसाधन छत पे बना सकते हैं तो पॉली हाउस की प्रजाति को भी लगा सकते हैं।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बीज भी काफ़ी महंगा आता है तो जी इसकी जी रोपाई में और इसकी बीज की पौध तैयार करने में भी काफ़ी सावधानियां बरते जाने की जरूरत है, क्या क्या सावधानियां बरतें?
2: निरंकार जी बहुत आपने बढ़िया सवाल उठाया और अधिकतर किसान भाई हमारे इसी सावधानी को न बरतने की वजह से फसल का नुकसान उनको होता है। देखिए जब इतना महंगा बीज है तो बीजों की जो पौध, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर तो पौध

0: रोपित करेंगे आप।
1: जी
0: कभी कभी हम सीधे बीज भी बुवाई कर देते हैं अगर हमें देर हो रही होती है, लेकिन हमें रोपाई नर्सरी की ही करनी चाहिए। तो इसकी नर्सरी को हम मृदा रहित माध्यम में बनाते हैं। तो मृदा रहित माध्यम के लिए आप उसमें हम कोकोपीट, परलाइट, बर्मिकुलाइट, ये तीन अवयव होते हैं और इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। तो इसको हम मात्रा के अनुसार 3:1:1 मतलब तीन भाग आपको कोकोपीट लेना है, एक भाग परलाइट लेना है, एक भाग बर्मिकुलाइट लेना है। मान लिया 3 बाल्टी आपने लिया तो 3 बाल्टी के हिसाब से 1-1 बाल्टी कोकोपीट वो परलाइट और बर्मिकुलाइट मिला लीजिए और मिक्सचर बन जाएगा आपको। उसको जो प्रोट्रेज होती हैं हमारी उनमें भर लीजिए और उसके बाद उसमें बीज लगा दीजिए और हल्का पानी डाल के उसको एक के ऊपर एक ट्रेज को रख देते हैं। और जैसे खीरा ये 3रे दिन में निकल आता है, तीसरे या चौथे दिन, तो आप 3रे दिन देख लीजिए अगर उग रहा है तो उसको हटा दीजिए ट्रेज को एक दूसरे के ऊपर से। और फिर उसमें हम 1% का जो एनपीके हमारा, 3 तरह के ग्रेड आते हैं एनपीके के, 16, 18 और 20। तो 16 जो ग्रेड होता है एनपीके, इफ्को कंपनी का, हमारी जो सहकारी कंपनी है तो उसका इफ्को का एनपीके आप ले लें, क्रिवको का भी आता है और भी कई कंपनियों का आता है, तो उनको लेके आप उसमें हल्की सी सिंचाई कर देते हैं हम पानी के साथ में ही, तो खाद भी पौधे को मिल जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो विषाणुजनक बीमारियाँ हैं तो वो क्योंकि आपके पौधों के माध्यम से ही फैलती हैं। आपने 10 रुपए का बीज लगाया हुआ है तो एक तो आपने ऐसी जगह लगाया हुआ वहाँ जमाव पूरा पूरा होगा। अब यहाँ पे बचाने वाली बात है, इसलिए जो नर्सरी है उस स्ट्रक्चर को ढंग से सुरक्षित रखें और सफ़ेद मक्खी चूँकि जो विषाणुओं को फैलाती है उसका ध्यान रखें। तो उसको हमें जो मॉनिटर करने के लिए हम पीले रंग के स्टिकी ट्रैप लगाते हैं नर्सरी में भी, ताकि हमें पता चल जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत नाजुक पौधे होते हैं, शायद फोन है।
2: जी हम एक कॉलर है उनसे पूछते हैं। हेलो
0: जी।
2: हेलो
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
3: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी धर्मवीर जी, बताइए।
3: डॉक्टर साहब हम आपके पूसा में गए थे
0: जी, जी।
3: तो वहाँ से सब्जियों के बीज का पैकेट लाए थे 200 रुपए का।
0: हाँ, वो खुले खेत में लगाने वाला जी।
3: हाँ वो हमें नहीं मालूम था कैसा दिया, तो हमें तो गमलों में लगाने थे। अच्छा वहाँ हमने डॉक्टर साहब के पॉली हाउस में शिमला मिर्च और खीरा
0: जी,
3: खीरा तोड़ के हमने खाया भी और वो खीरे में एक भी बीज नहीं था। वो कहते हैं चाइनीज,
0: चाइनीज नहीं है एक्चुअली,
3: हमारे को मार्केट में इसकी उत्पादन आते नहीं आते,
0: बिल्कुल आता है,
3: सारा नहीं मिल पाता डॉक्टर साहब। वो बड़े बड़े खीरे बीज वाले
0: देखो ये तो मंडी में जिस तरह का आ रहा होगा, लेकिन आप कोई मदर डेरी आपके पास है, सफल की दुकान है, उनपे आपको ये जो हमारे यूरोपियन खीरे जिनको कहते हैं या कोई जापानी खीरा कहता है, ये सारे खीरे उपलब्ध हैं। और
3: बीज मार्केट में मिलते हैं?
0: बिल्कुल, बीज भी इनके आपको पूसा से ही मिल जाएगा और आप पौध भी ले सकते हैं जो हमारा संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र CPCT।
3: जापानी खीरा बोलेंगे डॉक्टर साहब?
0: नहीं नहीं, आप कह दीजिए पॉली हाउस में लगाने वाला, लेकिन आपको फिर खुले खेत में नहीं लगाना है, खुले गमले
3: में, गमले में लगाना डॉक्टर।
0: नहीं नहीं, खुले तो गमले आप छत पे रखेंगे तो खुले में हो गया, तो उसमें विषाणुओं की आने की संभावना ज्यादा रहती है,
2: बिल्कुल
3: जी, जी, जी।
0: तो इसलिए वो सफल नहीं होगा जी।
2: जी
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। धन्यवाद धर्मवीर जी। और सर और भी इसी तरह के कॉलर्स हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन हम जो आज का विषय है उस पर और आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की कि कीट पतंगे से बहुत प्रोटेक्शन होता है, लेकिन फिर भी कुछ संभावना रहती है कि किस तरह की हमारी जो फसल है वो खराब हो सकती है, तो उसके मेन कारण
0: हम बात कर रहे थे कि नर्सरी में हम एलो स्टिकी ट्रैप्स लगाते हैं, तो उसकी वजह हम मॉनिटर कर पाते हैं कि व्हाइट फ्लाई का लेवल क्या है, कब हमें दवा छिड़कनी है। अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि वो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो हमें फिर एक दवाई आती है, इमिडाक्लोरोपीड है या दूसरी और भी दवाइयां होंगी इस तरह की, उनको आप ले सकते हैं। और 1 लीटर मतलब 3 लीटर पानी में 1 ml दवाई का आप नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं, उससे इस जो कीट को है रोका जा सकता है। तो जब स्वस्थ पौध, और ये पौध लगभग 15 दिन में आपकी रोपने लायक हो जाती है, अधिकतर किसान क्या करते हैं वो 20-25 दिन तक चलती रहती है उनकी, तो 15-20 दिन के बीच में आपको पौध को पॉली हाउस में शिफ्ट कर देना है। जब आप वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि अब सिंचाई वहाँ पर होती है ड्रिप के माध्यम से, और इसकी जो हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर की हमारी बेड होती है और 30 सेंटीमीटर पे हम इसको रोपित करते हैं पौधे से पौधे, और लाइन से लाइन की दूरी हमारी 60 सेंटीमीटर होती है।
1: डॉक्टर साहब जो पौधे जब बड़े हो जाते हैं उनको सहारा देने के लिए क्या टेक्निक है?
0: देखिए इसमें जब हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो ट्रेलिस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो पहले ही ऊपर से एक धागा आता है, वो प्लास्टिक का धागा होता है और ऊपर एक चरखी लगी होती है, तो ये सिंगल स्टेम हम लेके चलते हैं, इसमें कोई दो तरह की शाखाएं लेके नहीं चलते हैं।

0: स्टेम ऊपर जाता है और इसमें हर गांठ पे फल आता है, और इसमें पहली तुड़ाई जो है वो करीब 35 दिन में हो जाती है, और उसके बाद ये उसको हम लपेटते रहते हैं उस धागे के, प्लास्टिक की जो रोप होती है उसके सहारे पे, और ये लगभग आपकी 3 महीने तक में ये फसल हमारी जो है ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आप साथ में नर्सरी लगा सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो लगभग 3 फसलें तो आराम से आप पॉली हाउस के अंदर ले सकते हैं।
1: अच्छा, आपने बताया कि जो इसमें पॉली हाउस के अंदर हमारी उपज है वो 2.5 गुनी 3 गुनी 4 गुनी तक भी हो जाती है
0: खुले खेत की अपेक्षा। जी
1: हाँ जी, तो खीरे की उपज 1 एकड़ में कितनी हो जाती है?
0: देखिए, एकड़ तो कोई लगाता नहीं है,
2: बिल्कुल, क्योंकि पॉली हाउस
0: 1000 स्क्वायर मीटर का जो मोटा मोटा आइडिया, तो 1000 स्क्वायर मीटर में आप देख लें कि कितने पौधे आएंगे, और प्रति पौधा लगभग आप 3.5 किलो से के आसपास हमारी उपज आ जाती है, 3.5 किलो 4 किलो तक। तो और लगभग जो एक मोटा मोटा अनुमान है 22 रुपये का लगभग इनको थोक में होलसेल का रेट भी मिल जाता है, जो मतलब पीछे के बाजार के वो मैं बता रहा हूँ आपको। और जितनी भी फसलें पॉली हाउस में लगाई जाती हैं उनमें खीरा सबसे ज़्यादा लाभदायक, मतलब रिटर्न देने वाला जो फसल है उसको खीरे को माना जाता है।
2: बिल्कुल सर, और हर जगह इसकी डिमांड होती है। जी, आप होटल इंडस्ट्री से लेके हमारे घरों तक हर जगह इसकी डिमांड होती है बहुत ज्यादा। तो हम एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर।
0: जी जी,
2: उसके बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: बिल्कुल, माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती है, और पॉली हाउस की आज हम बात कर रहे हैं, खीरे के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने काफ़ी जानकारी ले ली। सर, एक छोटा सा म्यूजिकल अंतराल भी लेते हैं, फिर उस आपसे जानेंगे कि जो पॉली हाउस का जो ढांचा जब बनाया जाता है क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है? अगर नहीं होता तो क्या गवर्नमेंट इसमें मदद करती है? ये सब जानकारी आपसे लेते हैं, लेकिन सावन चल रहा है तो एक गीत तो बनता है। सर, आप सुन रहे हैं हेलो फार्मर्स ओनली ऑन FM गोल्ड।

0: बिल्कुल, दिल्ली का मौसम भी रिमझिम जैसा हो ही रहा है और अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश हो जाती है। सर, हम पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जरूरी बात ये होती है कि इसका जो एक ढांचा तैयार करना पड़ता है तो कितना महंगा पड़ता है, क्या गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, सब्सिडीज मिलती है हमारे किसानों को?
1: जब हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर मीटर से जो छोटे ढांचे होते हैं वो बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं माने जाते हैं
0: जी।
1: और इस पर लगभग 1200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर से लेके 1400 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर तक का खर्चा आता है। और सरकार, जो केंद्र सरकार की तरफ से पहले तो 50% की अनुदान था, अभी शायद 40% अनुदान जो है वो केंद्र सरकार देती है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह का 10 से लेके 15-20% तक अनुदान विभिन्न राज्य सरकारें देती हैं
0: जी। तो ये अनुदान जो है बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उससे एक प्रोत्साहन मिलता है हमारे किसानों को कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है और हमें इसकी ओर बढ़ना चाहिए।
2: और डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है,
0: प्रशिक्षण?
1: रंका जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा इस समय, क्योंकि देखिए जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो जो भी किसान भाई हमारे इस पॉली हाउस या संरक्षित खेती के उसमें जाना चाहते हैं तो वो अपने किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, जो भी नज़दीकी उनका कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि अनुसंधान संस्थान हो, तो वहाँ से संरक्षित खेती पर प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें। वैसे दिल्ली में हमारा जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है, तो ये समय समय पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के आवश्यकताओं अनुरूप ये कराते रहते हैं, तो किसान भाई वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। सर, हम खीरे की पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, तो खीरे के साथ साथ क्या और भी ऐसी कोई फसल हम सह फसली के तौर पर लगा सकते हैं ताकि एक पंथ दो काज, जैसे हमारी कहावत होती है?
1: आपने सही कहा, ये हमने कई उस फसलों में करके देखा भी है, चाहे टमाटर में, तो आप इसमें जो पत्ते वाली फसलें हैं जैसे पालक है, पालक के अभी जैसे बरसात के टाइम में या गर्मी के टाइम में आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पाकशोई भी लगा सकते हैं, बरसात जब सर्दी का मौसम होता है तो पाकशोई लगा सकते हैं, या कोई इवन हमने तो ब्रोकली भी लगा के देखी है, तो आप ब्रोकली भी उसके अंदर लगा सकते हैं, जो हमारे ये होते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज, तो उनके अंदर आप इस तरह की सह फसली खेती कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो लागत होती है उसको काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, वो इन फसलों से हमारी कंपनसेट हो जाती है एक तरह से।
0: जी
2: डॉक्टर साहब, जो हमारी फसल तैयार होती है उसकी तुड़ाई में, ग्रेडिंग में, मार्केटिंग में क्या सावधानियां बरतें?
1: देखिए, जैसे मैंने बताया कि लगभग हम 35 दिन पे पहली तुड़ाई होती है, तो जब आप तुड़ाई करें तो इसको, जैसे किसान भाई कई बार हमारे जो मजदूर करते हैं तो खींच के नहीं तोड़ें, क्योंकि ये बेल है और उस पर चढ़ी हुई है एक धागे के सहारे, तो कैंची से इसको सावधानी से कटाई करें। और इसकी ग्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीरो वेस्ट कुकुम्बर है, इसमें जब आपको खाना है तो आप खाली धो के ऐसे ही खा सकते हैं, इसमें ना तो काट के घिसना है आपको, कोई भी खीरा कड़वा नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपके साइज के अनुसार से आप उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसकी पैकिंग भी कर सकते हैं। जो पैकिंग ट्रेज आती हैं जिनमें 5 खीरे जो है लगभग पैक होते हैं और फिर उनको आप श्रिंकेज पैकिंग से रैप कर सकते हैं, तो उससे उसकी जो उत्पादक मार्केटिंग है तो उसके लिए उससे अच्छा पैसा मिल जाता है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, तो जो नसील किसान भाई हैं वो इसको अपना सकते हैं।
2: तो एक सवाल आता है डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई इतनी बातें उन्होंने सुनी और वे विचार बना रहे हैं कि हम पॉली हाउस में खीरा उगाएंगे,
1: जी
2: तो
1: जी,
2: पहली बार उगाएंगे, वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे?
1: देख लो, पहले मैंने बताया आपको कि देखिए खीरा जो जब उगाते हैं पॉली हाउस में तो सबसे पहली एक तो उसकी नर्सरी, पहले तो उससे पहले भी प्रजाति का चयन करें, नर्सरी का ठीक तरीके से बनाएं, और प्रबंधन, हर आदमी को पॉली हाउस के अंदर घुसने ना दें, क्योंकि जैसे जो भी कीट पतंगे जाते हैं वो हमारे कपड़ों के माध्यम से उसके रोगाणु पॉली हाउस के अंदर जाते हैं,
0: डिसइंफेक्ट करें पहले,
1: वो ऐसा रखें कि वो कोई दिखाने की चीज नहीं है
0: जी।
1: और उसके बाद जो फसलों की तुड़ाई वगैरह है वो करें, तो और उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रबंधन है या जल प्रबंधन है उसको ठीक तरीके से करें, तो उससे उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है।
0: बिल्कुल सर, और हम अपने किसानों से भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो हेलो फार्मर्स कार्यक्रम है आपके लिए एक नए समय पर आ रहा है, हर सोमवार शाम 5:30 बजे, तो आप फोन के जरिए अपनी जो भी विषय होता है उसमें जानकारी ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हर दिन, हर सोमवार को एक नए विषय पर बात होती है निरंकार, और फोन नंबर आप जानते ही हैं, फिर भी दोहरा देती हूं आपको, 2342-1081 एक ये नंबर है, दूसरा है 2342-1083, ये दो नंबर हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं इस वक्त FM गोल्ड पर हेलो फार्मर्स।
3: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी

0: लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो फार्मर्स में आज बस इतना ही धन्यवाद करना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट का हमारे साथ जुड़े
2: डॉक्टर पीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी सर। और किसान भाइयों, सुनते रहिए इस कार्यक्रम को, हर सोमवार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए मैं सुषमा और मेरे साथी निरंकार आपसे लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत। नमस्कार
2: नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव

0: UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The initiative combines the extensive reach of postal networks with India's digital public infrastructure to provide an efficient and convenient channel for cross-border remittances. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at stumps on day 3 of the first test in Galle. Manav Suthar led the wickets column for India with 4 scalps, while Ravindra Jadeja picked up 3. Jadeja became only the fourth player in Test cricket history to reach the milestone of 350 wickets and 4,000 runs. He's also the first Indian left-arm bowler to achieve the haul. In badminton, Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have won their first round clash against Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain at BWF World Championships 2026 in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। श्रोताओं, विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। विकसित भारत की मजबूत नींव तभी तैयार होगी जब देश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार हों। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया है। मातृ स्वास्थ्य से लेकर टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, बालिकाओं के स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन तक कई योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है और किस तरह आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय शासन, संसद और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी है। मातृ स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ, पोषण, टीकाकरण और कैंसर की जांच जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न पहलों से महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है।
3: महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से होती है। स्वस्थ महिला न केवल अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मातृ स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 12 अगस्त 2026 तक इस मिशन के तहत 110 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े जा चुके हैं। वहीं अब तक आभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.72% है। इसका अर्थ है कि महिलाएं भी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से जुड़ रही हैं और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। और अब बात पोषण और शुरुआती बाल विकास की। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन का उद्देश्य कुपोषण से निपटना और बच्चों के शुरुआती विकास को बेहतर बनाना है। इसके तहत पोषण और आंगनवाड़ी से जुड़ी विभिन्न पहलों को एकीकृत व्यवस्था के रूप में लागू किया जा रहा है। 31 जुलाई 2026 तक इस मिशन के तहत 8.94 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं दी जा रही थी। इनमें 64,46,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं, 45,44,000 से अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं और 15,68,000 से अधिक किशोरियां शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,29,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। वहीं 31 जुलाई 2026 तक लगभग 13,31,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पदों पर कार्यरत थे। श्रोताओं, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीकाकरण भी बेहद आवश्यक है। मिशन इंद्रधनुष और डिजिटल प्लेटफॉर्म यू विन के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को बेहतर तरीके से दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है। 18 मार्च 2026 तक

0: यूविन पोर्टल पर 11 करोड़ 87 लाख बच्चों और 3 करोड़ 96 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका था। इसी अवधि तक 5 करोड़ 46 लाख बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा चुके थे। महिलाओं के निवारक स्वास्थ्य की दिशा में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 17 फरवरी 2026 तक देश भर में 8 करोड़ 73 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी थी। बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 28 फरवरी 2026 को देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख पात्र 14 वर्ष की बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। 15 जुलाई 2026 तक देश भर में 52,10,302 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जा चुका था। यानी मातृ स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और कैंसर की समय समय पर जांच, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता भी महिला सशक्तिकरण का अहम हिस्सा है। वित्तीय समावेशन से लेकर पंचायती राज, संसद और रक्षा क्षेत्र तक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आइए सुनते हैं एक और रिपोर्ट और जानते हैं कि किस तरह नारी शक्ति विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है।
2: स्वस्थ और शिक्षित महिला के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही परिवार और समाज में अपने फैसले खुद लेने में अधिक सक्षम होती है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को भी विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य केवल उनकी व्यक्तिगत आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें परिवार और समाज के आर्थिक फैसलों में अधिक सक्षम बनाना भी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र में भी साफ दिखाई देती है। 8 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाताओं में 47 करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाएं थी। ये आंकड़ा बताता है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कितनी व्यापक हो चुकी है। स्थानीय शासन में भी महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। 19 मार्च 2025 तक देश में 14,50,000 महिलाएं निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थीं। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। यानी गांवों और स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े फैसलों में महिलाएं अब बड़ी भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात लागू होगा। श्रोताओं, नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी अब रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से 17 महिला कैडेटों के पहले बैच ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर स्नातक किया। अब तक लगभग 160 महिला कैडेट NDA में शामिल हो चुकी हैं। ये बदलाव दिखाता है कि महिलाओं के लिए अवसर अब पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता, कृषि, स्थानीय शासन और रक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, आज नारी शक्ति केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। सरकार का जोर अब कल्याण से आगे बढ़कर महिलाओं को नेतृत्व, सम्मान और अवसर देने पर है। जब किसी महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता, इसका लाभ उसके परिवार, बच्चों और पूरे समुदाय तक पहुंचता है। यही वजह है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में नारी शक्ति को एक महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। चाहे महिला उद्यमी के रूप में हो, किसान के रूप में, कर्मचारी के रूप में, जन प्रतिनिधि के रूप में या देश की सुरक्षा में योगदान देने वाली अधिकारी के रूप में, महिलाओं की भूमिका लगातार व्यापक हो रही है। स्वस्थ महिला, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर महिला, यही मजबूत परिवार, मजबूत समाज और मजबूत

राष्ट्र की पहचान है। नारी शक्ति की यह बढ़ती भागीदारी भारत को अधिक समावेशी, सक्षम और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हैं अलका सिंह। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार निखिल, नमस्कार अनुभव, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आर्थिक सुर्खियों पर एक नज़र.
0: थैंक यू निखिल. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes, and global crude oil prices rise.
1: शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 300 अंक की सुस्ती, जबकि निफ्टी 24,300 अंक के नीचे बंद हुआ. सेबी के प्रमुख ने कहा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अभी जारी रहेगा, सेबी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी लाएगा. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.

0: आज बढ़त का रुख देखा गया। मिड कैप सूचकांक में मामूली तेजी आई जबकि स्मॉल कैप में 0.4% का उछाल आया।
1: Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points or 0.36% to close at 77,728. The Nifty lost 78 points or 0.32% to settle at 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, HCL टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे। इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े।
1: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended with losses. Among the top underperformers, information technology declined 1.7%, focused IT dropped 1.6% and telecommunication fell by 1.2%. In contrast, realty increased 1.4%, metal gained 1% and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,353 companies declined. Shares of 2,087 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: पोरी सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
2: सर, कटे डे को नहीं आए थे आप सर?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत हो रही है, बताइए।
2: सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करेंगे सर वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें अब बाइंग कर सकते हैं? दूसरी चीज सर, जो अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 पे जैसे इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है? हेलो सर।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे और सडनली वो ओपन हो जाता है फिर से 435 पे, तो उसके बाद 340 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आ जाती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही 100 रुपए पे ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा और डर सा ज्यादा लगा रहता है। धन्यवाद सर।
3: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज हैं। रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो अब जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होती हैं तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर कूल डाउन होने, सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है अमित कि उस सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स फिर स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है। और ये तो बहुत आसान है पता लगाना, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर हैं, FMCG है, डिफेंस है, IT है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूँ, आप सेक्टर्स की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर, जो होता है हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
0: जी।
3: तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा आपने पूछा, अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पर लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है। ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैश, तो इसमें अब आखिरी वक्त

0: ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है, जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है, ठीक यही परेशानी ज़्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है। इसको लेके काफ़ी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी। उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है निफ्टी, एकदम नीचे चली जाती है। तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा, और थोड़ा सा हालांकि मेरे अंदाज से ज़्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है, और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
1: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग about this closing auction session, the concerns that Amit has raised and which Arshada ji just addressed, the SEBI chairman, Securities and Exchange Board of India chairman Tuhin Kamta Pandey addressed those concerns today, and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, Mr. Kant, the SEBI chairman is aware of the concerns, and of course the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
0: Absolutely. I think as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system, you know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, update the system which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
2: जितेंद्र है जयपुर से, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए।
3: हाँ सर, जैसे आईपीओ निकलता है तो मैं उसको देखा, तो जैसे एक ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, फेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है। तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फेस इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने किसको क्या मार्क करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो हम लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
0: आपका जितेंद्र, दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने आईपीओ, ओएफएस और नेट ऑफर टू पब्लिक आया है। आईपीओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका, तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफ़े कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है, उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रोमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
2: रिस्क मैनेजमेंट की शायद बात कर रहे थे।
0: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आया जी।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, इट्स कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। दिनेश हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार,
1: दिनेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे।
4: हेलो
1: जी, हाँ जी बताएं। जी
4: हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो हम बीजेपी वोट आ रहा है
0: दिनेश जी, ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है।
1: वी विल आस्क यू दिनेश जी, आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। रत्नाकर हैज जॉइंड अस।
5: हेलो
2: जी रत्नाकर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता है
0: जी,
5: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन, और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्ट्रिप डाल सकते हैं क्या? और उसका असर जब भी मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को, तो उसमें क्या होता है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है। थैंक यू।
0: चलिए रत्नाकर जी, दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है। तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है, इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग के लिए खुल जाती है। इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है, पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से। तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल, उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है। आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा, कभी आप उसको ट्राई करेगा, आपने अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय। पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं। दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, हालांकि आप ये पहले कई दफ़े पूछ चुके हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा। FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो EVs पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नज़र बना के देखते हैं। IT वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है, ऑटोमोबाइल नॉन EV सेक्शन में डाइसी है, ऑयल कंपनीज भी डाइसी हैं, स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा अब तेज़ी पकड़ता यहाँ से नज़र आ रहा है, खासकर कॉपर हो गया
6: जी।
0: और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रॉस्पेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है जी।
2: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर है। दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से।
7: हाँ नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
0: जी बताइए।
7: ये जो डॉलर रुपी का रेट है, रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स, एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज। हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है। तो क्या हम लोग को रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए धीरे धीरे करके, एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड, लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। तो व्हाट इज द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विजे विज स्ट्रेंथन कर सके।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डिवैल्यू कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए, ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है। और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज़्यादा रहना है, आज भी $90 के आसपास है, हमें ज़्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमज़ोर होता है। अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी, बल्कि RBI ने अभी FCNR B डिपॉजिट्स निकाले, उसमें $52.3 बिलियन आया है। अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं, पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी। तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है, जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है ऐसे जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो रुपी पे प्रेशर पड़ता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ RBI अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है, और RBI डॉलर रुपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में, तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा, और पूरी RBI इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए, पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है।
2: और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रमबल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है, और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया, और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
0: देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूँ अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं, कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती हैं मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और ऐसा, उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी GDP की अच्छी रफ्तार और अभी IIP के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद AI की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारतीय भारत के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसका मार्केट जिसको क्यू लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
1: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स, सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ बाय सम यू नो सम एस्टिमेट्स द Q1 रिजल्ट्स हैव कम आउट बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी सी द मार्केट्स आर नॉट रिएक्टिंग to those better than expected results.
0: I think Anubhav, market the international factors are overriding,
1: right,
0: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon, they say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time,
1: right. Let's move forward.
2: Aur agli khabar par aage badhte hain. Sarkar viksit Bharat ka lakshya hasil karne ke liye banking sudhar par jald hi uchch stariya samiti gathit karegi. Vitt mantri Nirmala सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का यह बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बना करके चलने की।
0: जी हाँ, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब NPAs का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहाँ जहाँ रिकवरी है वहाँ रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीन अप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन्स बहुत अच्छे आई हैं, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास बन रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
1: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
2: Jee haan. नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। वहीं यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो जर्मनी का डेक्स और लंदन का फुटसी 100 दोनों ही समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
6: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, सवाल पूछिए।
6: मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक यूनिक जो चीज है, हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला है कि ये यूनिक होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कोहली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अभी जो यूक्रेन, रशिया, ईरान ये बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग में डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में इन बिजनेस में, इस बिजनेस में बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफी लोगों की तादाद में काफी रोजगार मिलने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए?
0: चलिए, प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं

0: फैन नहीं हूँ, और सैद्धांतिक रूप से भी मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है नहीं ले पाती है तो प्रश्न चिन्ह है, पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी, तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है
1: जी।
0: ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब वगरी, पहले लड़ाइयाँ होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है जी।
1: और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए बाद में रिकंस्ट्रक्शन, और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme, or ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
2: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I'm still continuing job at the age of 59. Kindly help me, is it the right thing or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
0: Well, Mukesh, I would suggest in such a case, you should contact the Provident Fund authorities because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest because you've retired from there. So obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58, if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest, and it's all online these days. It's going to be quite easy, Mukesh. Right.
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in. And a look at the gold and silver prices, Nikhil.
3: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
0: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहाँ तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है, जैसे बोलते हैं अभी कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। $90 है और खतरनाक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगर ये $100 और उसके बाद जाता है हमारा इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती क्या पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है, पर और ज़्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती हैं, और चाइना है, कोरिया है, इनके लिए दिक्कत आ सकती है।
3: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस।

0: Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने

0: ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमेरिका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applicants are related to the manufacturing of projects, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents, including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the National Treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as Organizational National General Secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Himang Joshi as the Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President and Bansilal Gurjar as Kisan Morcha President. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has congratulated the newly appointed national office bearers of the party and those who have been given various responsibilities. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary Department of Higher Education, DG of the National Testing Agency and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all examination processes and submit a report on the corrective action taken. The Qatar-India remittance service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The initiative combines the extensive reach of postal networks with India's digital public infrastructure to provide an efficient and convenient channel for cross-border remittances. India's ace shuttler PV Sindhu has advanced to the second round of the women's singles event at the BWF World Championships in New Delhi. The former world champion dominated Ireland's Sophia Noble, winning 21-7, 21-11. Meanwhile, in the women's double, India's Treza Jolly and Gayatri Gopichand have also progressed to the second round. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at the stumps on day 3 of the first test in Galle. And that is the end of this news bulletin. Surkhiyon mein.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू
3: मुकुल जी। पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
5: देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे, औरों के ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहां से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज एक छोटा सा ग्रुप तीन देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील जो देशों को भी जोड़ा जाए, तो उसमें ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा अब ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170-180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोर देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश के पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। ये चीज सामने आ गई है
3: जी।
5: पहले ये कहा जाता था, या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही हैं, पर हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगें, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं
3: जी। मुकुल जी, भारत की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है, तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
5: देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस इस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
3: जी।
5: ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है, क्योंकि तापमान ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ होता है कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं, वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है, पर अपनी लाइफस्टाइल जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं। इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में, हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए, पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेके भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफस्टाइल करके, कि भाई देखो अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं, पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते।
3: आपने लाइफस्टाइल की बात की है, तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी।
5: देखिए इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए, पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी, कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
3: अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है, तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों की जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
5: देखिए अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए। चाइना का विकास हमारे से पहले हुआ है
3: जी।
5: उनने एक दिशा दिखाई कि भी जरूरी नहीं है कि उसी तरह से शहर बने, उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना

0: यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा। हमको ये देखना है, और पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, पर हमको जो जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उनने हमसे कहा है, जो उनके लिए फायदामंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। और जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइफ से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर, उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
1: मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मंच हो या अंतरराष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिशें की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
0: देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कहा, अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स समिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है, उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
1: जी।
0: तो वहाँ ये बात आ रही है कि मिसाल से जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए पर कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर, डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए, ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
1: मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को, और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो।
0: देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। ये देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
1: जी।
0: किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए
1: जी,
0: कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है, क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन

0: होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा
1: जी। मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

हमराही फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज से सजे इस गीत के साथ मैं अभिनीत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू हो चुके कार्यक्रम सांझ ढले में एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन का था संगीत। दिन ना सही लेकिन ये गीत और फिल्म तो याद ही कीजिए जिसमें मशहूर कॉमेडियन राजेंद्र नाथ ने नकारात्मक यानी कि विलन की भूमिका निभाई। अब सांझ की बात चली ही है तो सुनिए अगला गीत उस फिल्म से जिसमें तीनों आनंद भाई यानी कि देवानंद, चेतन और विजय आनंद साथ दिखाई दिए। नाम है काला बाजार, आवाज आशा भोसले और मन्ना डे की, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

आरती मुखर्जी का गाया, गुलजार की शब्द रचना और आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत था फिल्म मासूम से, जिसमें कई खूबसूरत गीत भी थे, जिनमें तुझसे नाराज नहीं जिंदगी भी था। लेकिन इसे फिल्म में बाद में जोड़ा गया और पैसों की कमी के चलते इसमें वो सीन इस्तेमाल किए गए जिन्हें शूट तो किया गया लेकिन फिल्म में लिया नहीं गया था पहले। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत, बोल एस एच बिहारी के और सुर ओपी नैयर के, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी, जिसके एक दृश्य में शर्मिला टैगोर ने विश्वजीत को थप्पड़ मारा। विश्वजीत के 4 वर्षीय पुत्र प्रसेनजीत भी सेट पर मौजूद थे और उन्होंने भी

जी हम बिल्कुल मिलेंगे, कभी क्यों, आज ही मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, यही FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। सांझ झले की यात्रा आज यहीं तक, आगे सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार, भारतीय जनता पार्टी ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये टीम सेवा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सुदृढ़ करेगी। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा की तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। दिल्ली सरकार कल सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के 1200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू, भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
8: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में नवीन दायित्व ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठनात्मक मार्गदर्शन में ये टीम सेवा समर्पण और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ संगठन को जन जन तक और अधिक सुदृढ़ करेगी। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू की है। इसका उद्देश्य सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस जारी करने और जांच की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा तय समय के भीतर पूरा करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही अलग अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एकीकृत सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: इस व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय की समस्या को दूर करते हुए आवेदकों को स्पष्ट जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नई SOP के अंतर्गत पहली समिति जिला लाइसेंसिंग DLC का गठन किया गया है। ये समिति राजस्व विभाग के जिला प्रशासन के अधीन गठित की गई है, जो कि लाइसेंसिंग संबंधी अंतिम निर्णय लेगी। वहीं नई SOP के अंतर्गत दूसरी समिति जिला निरीक्षण समिति DIC का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब इसी समिति द्वारा प्रत्येक सिनेमाघर का निरीक्षण संयुक्त रूप से किया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से जबकि वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और गोपनीय संचालन व्यवस्था, सुरक्षित कक्षों, एयर गैप्ड सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार कल त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण समारोह आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में 1200 छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। ये समारोह शैक्षणिक उत्कृष्टता और एक उज्जवल भविष्य के लिए योग्य छात्रों को डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता मेडिकल सीटों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में योग्य मेडिकल और डेंटल पेशेवरों की कमी को दूर करना और साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को और मजबूत करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस रोड मैप के अंतर्गत सरकार ने 3 तरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें नए चिकित्सा संस्थानों में सीटों का विस्तार, मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार और स्नातकोत्तर तथा विकसित मेडिकल प्रोग्राम का विस्तार शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज राष्ट्रीय रेटिना कौशल विकास केंद्र में मॉड्यूलेटेड रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रेटिना संबंधी देखभाल में नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करना है। रेटिना केंद्र के प्रोफेसर रोहन चावला ने कहा कि यह अनुकूलित मॉड्यूल आधारित रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम नेत्र रोग विशेषज्ञों को रेटिना संबंधी रोगों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा।
10: ये प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षकों को रेटिना रोगों के बारे में अधिक जानकारी में मदद करेगा, ताकि वे रोगियों का उचित उपचार और रेटिना रोगों के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने में मदद कर सकें। इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय रेटिना ऐप को अपग्रेड किया है और यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मैनुअल भी बनाया है, जिससे ये नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लेटेस्ट
7: टेक्नोलॉजी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, कूड़े के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित करना है। ये विशेष अभियान पूरी दिल्ली में 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।
10: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अगले 12 महीनों तक वार्ड स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक महीने जो वार्ड सबसे अधिक स्वच्छ पाया जाएगा, उसे 1 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई वार्ड लगातार अगले महीने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कूड़ा प्रबंधन के लिए 4C यानी कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महीने की 23 और 30 तारीख तथा अगले महीने की 6 और 13 तारीख को झुग्गी झोपड़ी समूह में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत हर शनिवार और रविवार को सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़कों की सफाई करना नहीं, बल्कि दिल्ली तस्वीर, नागरिकों की आदत और स्वच्छता के प्रति सोच में बदलाव लाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नई दिल्ली

0: नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी है। एक रिपोर्ट।
1: यह यात्रा हर घर तिरंगा 2026 अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई। इस तिरंगा यात्रा में 6,000 से अधिक NDMC के विद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और NDMC कर्मचारियों

0: ये केवल हाथ में भारतीय ध्वज पकड़ के चलना नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी प्रेम की यात्रा है, हमारी गौरव की यात्रा है।
1: उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये तिरंगा यात्रा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की यात्रा है और इसमें शामिल बड़ी संख्या में बच्चे युवा भारत की नई ऊर्जा और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मौजूद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलदीप चहल ने कहा कि तिरंगा यात्रा में युवाओं की भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि नई पीढ़ी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: युवा आज जब इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं तो उस विश्वास के साथ होते हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का है, जो राष्ट्रीयता का भाव 2047 का है, जो माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व है, उस पे एक विश्वास जताते हुए लेके चलते हैं।
1: इस अवसर पर एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और परिषद के कई सदस्य भी शामिल रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
3: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के निर्देश पर पार्टी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें एक शिकायत पत्र सौंपा। पार्टी के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में उल्टा राष्ट्रीय ध्वज दिखाने वाली कथित फर्जी तस्वीर तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों पर प्रसारित करने का प्रयास किया गया। श्री मल्होत्रा ने इस प्रयास की जांच कर दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कूलिंग वाटर पंप हाउस पर लगे 1100 मिलीमीटर व्यास वाले हेडर वॉल्व के नवीनीकरण और मरम्मत के कारण कई क्षेत्रों में 20 अगस्त को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि नारायण छावनी, इंद्रपुरी, कृषि कुंज और पंजाबी बाग में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराया। वहीं आयुष ने पुरुष सिंगल्स के अपने पहले मुकाबले में चीन के शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिग्स को 21-9, 21-13 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। इससे पहले पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले गेम 21-16 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में दोनों 6-4 से आगे चल रहे थे, तभी उनके प्रतिद्वंदी आयरलैंड के स्कॉट गिलिडिया और पॉल रेनॉल्ड्स चोटिल होकर खेल से बाहर हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी देशवासियों को नागपंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव के प्रिय नागदेव की आराधना का ये पावन पर्व लोगों की प्रकृति, आस्था और संतुलन का संदेश देता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048। राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा ये टीम सेवा राष्ट्र प्रथम के भावना के साथ संगठन को और अधिक सुदृढ़ करेगी। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
5: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
4: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
6: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है

0: अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को भी कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। तेलंगाना में आज मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया। हैदराबाद में मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि मतदाताओं से 78.30% गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में शामिल करीब 92 लाख आवेदकों को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वे 15 अक्टूबर 2026 तक आवश्यक जानकारी जमा कर सकें या अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिलेगी। PV सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने महिला डबल्स तथा MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने

कुछ इसी तरह चमक और खनक के साथ हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां शुरू हो चुका है रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का एक सुरीला गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं मधुरिमा। मैं अभिनीत शुक्ला एक बार फिर आपका करता हूँ स्वागत, नमस्कार। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज का राग है बिलावल थाट का राग पहाड़ी, जिसे आमतौर पर इसी समय यानी कि शाम 6 से 9 के बीच गाया जाता है, और इसी पर आधारित पहला गीत था फिल्म वक्त से, आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा हुआ और रवि का सुरबद्ध किया गया। अगला गीत आराधना फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस डी बर्मन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आज और कल से आपने सुना ये गीत, शब्द रचना साहिल लुधियानवी की, संगीत दिया रवि ने। आपको एक बार फिर से याद दिला दे साथियों कि आज हम बात कर रहे हैं राग पहाड़ी की, और ये राग औडव जाति का है जिसका वादी स्वर सा है और संवादी स्वर पा। मा और नी इसमें वर्जित स्वर हैं। आरोह में सा रे गा पा धा सा और अवरोह में सा धा पा गा रे सा। तो चलिए देर किस बात की, आगे चलते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत जो कि इसी राग यानी कि राग पहाड़ी पर ही आधारित है। ये गीत है फिल्म बाजी से गीता दत्त का गाया हुआ। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम कहते हैं SD बर्मन।

इतना तो हम बहुत ही यकीन के साथ कह सकते हैं कि एफएम गोल्ड चैनल आपका दिल और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इस प्यार भरे नगमे के साथ ही इस सरल और बेहद मधुर राग जिसका नाम है राग पहाड़ी, उस पर आधारित आज का मधुरिमा समाप्त होने की ओर है, या कहें कि समाप्त ही हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, एफएम 100

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज इस कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो बैडमिंटन की ये विशाल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है और आज पहले ही दिन पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और उनके साथ साथ MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह अपनी पक्की कर ली है अपने मुकाबले जीतते हुए। आज कार्यक्रम में इसके बाद बात होगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में अपनी पकड़ कुछ और मजबूत कर ली है मैच पर, और पहली पारी के बाद भारत ने कुल 178 रन की बढ़त अपने हिस्से में हासिल कर ली है। और कार्यक्रम में बात होगी FIH हॉकी विश्व कप की, जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर लेकर के आया, जहां भारत को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोलों से हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की दुनिया के साथ, जहां BWF विश्व चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ हो गया। आज पहला दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास नजर आया, जहां भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थकों के बीच अपने प्रदर्शन में एक शानदार निखार दर्ज करते हुए नजर आए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स में अपने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला डबल्स में त्रिशा जौली गायत्री गोपी चंद की जोड़ी और अब से कुछ देर पहले सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। इससे पहले दिन की पहली जीत भारत के लिए MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी लेकर के आई, जिसने दूसरे दौर में जगह बनाई। और इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे हमारे संवाददाता भानु इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से सीधा। भानु, पहला दिन भारत के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आया, इतना बड़ा आयोजन और उस पर इतनी सारी जीत, सोने पे सुहागा।
1: जी शक्ति, आपने एकदम सही कहा, भारत के लिए आज का पहला दिन विश्व चैंपियनशिप में बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। आज के दिन की जो हाईलाइट आयुष शेट्टी की जीत रही, जहां उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन CUG को 21-14, 13-21 और 21-19 से हरा दिया। वहीं हमारे बाकी खिलाड़ियों के लिए भी जीत उनके लिए बहुत आसान रही, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में सारे अपने गेम्स जीते और आज का दिन जैसा कि आपने कहा बहुत ही अच्छा रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपने आयुष शेट्टी की जीत का जिक्र किया कि किस तरह विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पहले ही दौर में चित किया इन्होंने और काफ़ी हद तक आगे के दौर के लिए अपनी चुनौतियों को काफ़ी सरल कर दिया है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुकाबला, सबसे कठिन जो है ड्रॉ आयुष को मिला था। अब पीवी सिंधु के मुकाबले के बारे में भी अगर भानु आप हमको बताएं, क्योंकि भारत की स्टार खिलाड़ी हैं, जब भी कोर्ट पर उतरती हैं भारतीय खेल प्रेमियों की नज़रें रहती हैं पीवी सिंधु पर कि वो किस तरह से अपने आगे की इस टूर्नामेंट को बिल्ड करते हुए नज़र आएंगी।
1: जी बिल्कुल शक्ति, आज स्टेडियम का भी कुछ वैसा ही हाल रहा। स्टेडियम में सब लोग आज सिंधु को देखने आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वे मैच से कंट्रोल में बाहर थी। उन्होंने पहला गेम 21-7 से जीता और दूसरा गेम उन्होंने 21-11 से जीता। दोनों मैच में वो कंट्रोल में दिखाई दी, उन्होंने अपने बेहतरीन अटैक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, उनके स्मैशेस बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज थे और ओवरऑल उनका गेम आज बहुत ही अच्छा रहा।
0: जी बिल्कुल, आयरलैंड की सोफिया नोबल पर जो जीत दर्ज की, पूरा कंट्रोल जिसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल मैच, जहां आपका हर शॉट शायद वहीं जा रहा था जहां पे सिंधु चाहती थी। उन्होंने मैच के बाद अपने अनुभव भी कुछ इसी तरह साझा किए। डबल्स में भी भारत का दिन आज के लिए काफ़ी लकी रहा, भारत की मिक्स डबल्स की एक जोड़ी और पुरुष डबल्स की एक जोड़ी पहले ही बाई पा के अगले दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय महिला डबल्स की दोनों जोड़ियां, जिसमें त्रिशा जौली और गायत्री हैं, साथ ही साथ सिमरन की जोड़ी है जो पहुंच चुकी है अगले दौर में, और पुरुष डबल्स में MR अर्जुन ने भारत की जीत का खाता खोला था हरिहरन के साथ। डबल्स की परफॉर्मेंस पे कुछ कहना चाहेंगे भानु?
1: जी बिल्कुल, डबल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही।

0: और स्ट्रेट गेम्स में जैसे कि आपने बताया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने पॉला लोपेज और लुसिया रॉड्रिगेज की जोड़ी को हराया। पहले गेम में वे थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में दिखाई थी, लेकिन उन्होंने पहला गेम सिंगल डिजिट में ही खत्म कर दिया और दूसरा गेम उन्होंने 13 पे खत्म किया। और अगर बात करें हमारे पुरुष युगल जोड़ी की, तो उन्होंने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-16 से जीत लिया था। दूसरे गेम में उन्हें चोट, उनकी जो ओपोनेंट पेयर थी उनको चोट के कारण विड्रॉ करना पड़ा।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय खिलाड़ियों के लिए जिस तरह का आज का पहला दिन गुजरा, और ये खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में शायद भारत को इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बेहतरीन एक अनुभव दे के जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भानु। और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस स्टेडियम में खेलना उनके लिए एक नया अनुभव रहा। पीवी सिंधु ने कहा कि घरेलू मैदान पे खेलना हमेशा से एक अलग अनुभव जैसा है।
2: Playing first time here, first match here, it was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out it's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but sometimes, you know, when you actually get on the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
1: जी बिल्कुल, अपनी नब्ज़ पे किस तरह संतुलन रखना है यही सिंधु का अनुभव बताता है। और सिंधु ने अपने पहले मुकाबले को लेकर के स्पोर्ट्स कैन की टीम से क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
2: Yeah, of course, I'm playing with her for the first time, and I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. And I think more than anything, I mean, I was excited to get onto the court happening here in India. So it was really good to, you know, get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. And I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best.
1: और दिन में भारत के लिए पहली जीत दर्ज करने वाले हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भी अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने बताया कि किस तरह मैदान में भारतीय प्रशंसकों का प्रोत्साहन देखने को मिला।
3: First round into the world championship, we didn't actually expect so many people come out and support, but as soon as we entered the main arena, we heard a lot of cheering when our names were announced, and that actually gave us an extra boost and extra energy, definitely helped. I mean, conditions, I feel it's at par with the all other tournaments, be it the last year's world championship, I think he had played, I think, in Paris. I mean, we are at par with the level and the conditions that you're provided, but to play at home is obviously, everybody asks the same question, but again, I feel every athlete would give the same answer because it's an added advantage.
1: जी बिल्कुल, एक शानदार एडवांटेज कह सकते हैं। और उनके जोड़ीदार और इस जीत में उनके सहभागी हरिहरन ने क्या कहा है, ये भी सुनते हैं।
4: Dan coach asked me to try with Arjun because our game style was, both game style was like fast. Dan coach saying was try for 4 tournaments. I said okay, I will try. So we played all 4 tournaments, continue the throw. Now is world championship year. We searched for Asian games as well. I said thanks to coach first and thanks to my senior also.
1: जी बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव अब साथ खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को हो चुका है। और इसी तरह का अनुभव गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने भी साझा किया, जिन्होंने घरेलू मैदान पर इस जीत को बेहद खास बताया।
5: बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आई थिंक द कोर्ट कंडीशंस आर प्रीटी गुड, इट्स अ ह्यूज स्टेडियम। या आई थिंक इट्स अ लिटिल स्लो समटाइम्स फास्ट, बट आई थिंक वी हैव अडैप्टेड वेल, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट।
1: बैडमिंटन के कोर्ट पर इस बेहतरीन दिन के बाद अब बात की जाए क्रिकेट के मैदान की, जहां गोल में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। अब श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। आइए सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
6: अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। पहली पारी में भारत के लिए पर्डिक्कल ने सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो के रूप में शुरुआती झटका लगा और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सोनल दिनुषा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए

0: 146 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। निरोशन 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 100 रन का योगदान दिया। भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो दूसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि शिकंजा और कसा है। और इस पूरे मैच पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज का जिस तरह का खेल गया है, अब दो दिन का खेल बचा है और रणनीति पे तो बात होगी ही होगी, लेकिन अब तक कह सकते हैं कि कितनी पकड़ भारत की नज़र आ रही है?
2: ये शक्ति अभी श्रीलंका को 178 रन की जो है, भारत को 178 रन की बढ़त हासिल है। और इसी के साथ भारत जो है कल जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी तो कोशिश करेगी कि 170 या 200 रन बनाकर एक जल्दी टारगेट को डिक्लेयर करने के लिए देखेगी, जहां 350 से 400 रन का टारगेट दबाव बनाने के लिए काफ़ी होगा श्रीलंका पर। और भारत इसलिए भी कल जल्दबाजी करता नज़र आएगा क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है, कितने सत्र खेले जाएंगे, कितने सत्र धुल जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि क्या ये कहना गलत होगा कि आज का दिन भारतीय गेंदबाजों का दिन रहा? जिस तरह से शुरुआत में श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई थी, एक वक्त पे लगा कि शायद कहीं मामला 150 को भी ना पार कर पाए।
2: जी बिल्कुल, शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत रखी। 90 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद उनकी एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, जहां सोनल दिनुशा ने बेहतरीन शतक जमाया और उसके अलावा निरोशन डिकवेला जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी 115 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो युवा मानव सुथार ने 4 विकेट लेकर भारत को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिलाया। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेट लेकर अपना 350 विकेट का कीर्तिमान जो है वो हासिल कर लिया, और इसी के साथ वो बाएं हाथ के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ओवरऑल जिन्होंने 350 विकेट का आंकड़ा जो है छुआ है। ऑलराउंड प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए, चौथे ऐसे ऑलराउंडर बन गए जिन्होंने 4000 रन और 350 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट क्रिकेट में।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और वो अफगानिस्तान का मुकाबला जहां मानव सुथार ने अपना डेब्यू किया था और पहला ही मैच 6 विकेट, आज दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और 4 विकेट, तो काफ़ी संभावनाएं इस खिलाड़ी में हमेशा से नज़र आती हैं और कह सकते हैं कि टेस्ट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। और अब आगे भारत, जैसा आपने बताया कि कल नज़र होगी कि किस तरीके से मैच पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए, कम से कम समय में जो है अपने एक अच्छा टारगेट स्कोर बोर्ड पर चढ़ाया जाए मेहमान टीम के लिए। और अब और क्या इस मैच से कुछ खास निकलता हुआ नज़र आ रहा है भारत के लिए?
2: अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में जरूर सबसे थोड़ा ऊपर जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ वो सीरीज़ भी जीतने के लिए देखेंगे क्योंकि अभी वो 5वें स्थान पर हैं, और ये दोनों मुकाबलों में जीत भारत को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट प्रदान करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनज़र।
1: जी बिल्कुल, जैसा हमने कल भी बताया था कि इसके बाद अब अगली श्रृंखला जो है भारत की वो न्यूजीलैंड से है, जो 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेली जानी है, तो टीम चाहेगी कि जितने भी मुकाबले हैं उनको जीता जाए और WTC की फाइनल की दौड़ को और मजबूत तरीके से पकड़ में रखा जाए। और अब बात की जाए FIH हॉकी विश्व कप की, जहां आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। भारतीय टीम को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। विशेष, जिस तरह की पहले मैच में जीत थी वेल्स पर, भारत ने 3-1 से एक बेहतरीन जीत दर्ज की थी, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत 2-1 की, लेकिन कह सकते हैं कि हरमनप्रीत एंड कंपनी थोड़ी सी अनलक्की रही।
2: ये शक्ति बिल्कुल, भारत को पिछले मुकाबले से अपना काफ़ी आत्मविश्वास था और मैच की पहली सफलता से ही मतलब इंग्लैंड ने जो है दबाव बनाना भारत पे शुरू कर दिया, जहां निकोलस बंदरूक ने 14वें मिनट में भारत को गोल करके बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद मुकाबला जो है 2-1 से आगे भारत ने बढ़त दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
1: जी बिल्कुल, भारत ने एक बार करारा जवाब दिया जब पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया, फिर दिलप्रीत का गोल आया, लेकिन एक वक्त पे लगा कि भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बाद मैच का वो तीसरा क्वार्टर जहां बैक टू बैक 5 मिनट के अंदर पहले स्टुअर्ट रश्मेयर का गोल आया 40वें मिनट में, और 43वें मिनट में आपने जिस गोल की बात की क्रॉफ्ट हेनरी के, जिसने काफ़ी हद तक भारतीय टीम के मनोबल को तोड़ा और उस बढ़त को जो भारत के हिस्से में थी इंग्लैंड की तरफ लाए, और आखिरी में निकोलस जिन्होंने पहला गोल किया था दूसरा गोल करते हुए इस मैच में भारत के लिए तमाम संभावनाओं को बंद कर दिया। हालांकि इंग्लैंड शीर्ष में पहुंच चुका है ग्रुप में, भारत अपना दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से बुधवार को खेलेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.ai

0: gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए. नमस्कार.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया. भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की. पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल. खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू. और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त. और अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की. एक रिपोर्ट.
3: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी. इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे. ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए. शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है. अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं. अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है. ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे. श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
4: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं. इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं.
2: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है.
4: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है. अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है.
2: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. एक रिपोर्ट.
5: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार

0: करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
3: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ

ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने

0: हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल धन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over

0: के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2331-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भलीभांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा, जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इशूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा अच्छा हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके. उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है,

0: कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का. उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए. क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा. तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है. मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए. हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में. हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कई भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओमोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
2: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेविल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है.
1: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका.
0: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए. उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए. डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है, पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं.
3: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
3: इनफैक्ट यदि आप सारे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी.
1: जी.
3: तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है। तो

0: उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही CCP ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो CCP ने पिछले वर्षों की है।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? इसलिए इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था
1: जी,
2: इस पर थोड़ा सा आप इस पर बता दें
1: जी। कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: जी बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
3: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है
1: जी,
3: करके
1: जी जी जी जी FSSAI का।
3: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
0: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
0: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: हेलो, नमस्कार
1: जी। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, सवाल
4: जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
4: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या है, मतलब तरीका क्या है? मतलब
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
5: हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है और ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही उनका सवाल है ना। हाँ जी, मतलब एनी प्रोडक्ट, मतलब शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ्स, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में, मतलब वो रिटेलर भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लेबल नहीं देखते जनरली, अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है
1: जी। अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
0: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी भी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना
1: जी।
0: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, ये टोल फ्री है
1: जी।
0: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800-1915-8800-1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। और पिछले एक वर्षों में एनसीएस के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है।

0: और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है, नकली घी और नकली पनीर की समस्या जो मार्केट में, इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी, आपसे सवाल ये रहेगा।
1: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा। इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है, उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है। सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है, मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता, मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है, अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
0: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हैलमार्क है, ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
0: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान हैं, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमरिक कोड है, ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
0: जी,
2: वो BIS का हैलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका
0: जी, सवाल पूछिए
3: जी। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS में हम क्या बोलते हैं कंप्लेंट करते हैं या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है
0: जी। अनुपम जी,
2: पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फ़ोन नंबर है, उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहाँ कीजिए, वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं
0: कि बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
1: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है
0: जी।
1: उसमें अगर इस

तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप फोटो के साथ हमको बेच सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल अफेंस है, इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल

0: मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप. हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर. अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे.
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है. उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल. इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं.
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक. नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है. तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू. ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है.
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
0: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंस्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है. लेबल में क्या दिया है, हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं. आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए. सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से. अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम, मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच.
1: जी कविता जी, समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए. तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े, और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: धन्यवाद.
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावों को मंजूरी पत्र सौंपा।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में ऐसी टनल ब्रैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटी और कॉयल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नबीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुज्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खाते में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 6 जिले प्रभावित हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ने तथा लगातार बारिश के कारण 126 गांव अभी भी जलमग्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। PV सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबेल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on the 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The network

0: समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश की आज़ादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। लगभग 2,00,000 लोगों ने परेड में हिस्सा लिया या फुटपाथों पर भीड़ लगाई और मेडिसन एवेन्यू पर जश्न के रास्ते में तिरंगा लहराया। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की ओर से हर साल आयोजित होने वाली परेड का 44वां संस्करण था। इस तरह के भारतीय आयोजन में हिस्सा लेने वालों की संख्या के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी परेड बन गई है। परेड में 36 झांकियां थीं जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भारतीय अमेरिकी व्यवसायों, मीडिया और एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उधर इसराइल में भारतीय समुदाय ने जाफा के सेंट एंथनी गिरजाघर में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के साथ अपने गहरे जुड़ाव को दर्शाया। शनिवार को गिरजाघर में कोंकणी समुदाय द्वारा आयोजित एक समारोह में भारतीय कोंकणी समुदाय के लोगों ने कन्नड़, कोंकणी, गोअन और हिन्दी भाषाओं में शानदार गायन और नृत्य प्रस्तुतियां दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित खतर में से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से खतर में भारतीय समुदाय के लोगों को खतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: संचार मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा सीमा पार से धन भेजने के लिए एक त्वरित, सुरक्षित, सुविधाजनक और सुलभ चैनल प्रदान करती है। इससे विशेष रूप से कतर में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय और भारत में उनके परिवारों को लाभ होगा। ये पहल डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच को भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के साथ जोड़ती है। इससे सीमा पार से धन भेजने के लिए एक कुशल और सुविधाजनक चैनल प्रदान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवा कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म यूपीयू, UIP और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के सहयोग से विकसित की गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका में 79% लोगों ने भारत के प्रति अनुकूल राय व्यक्त की है। इस वर्ष फरवरी से मई के बीच 36 देशों में 42,000 से अधिक लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में भारत की वैश्विक छवि काफी सकारात्मक नजर आई। इसे दोनों देशों के मजबूत क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से जोड़कर देखा गया है। वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं से भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: यूएन मिशन इन साउथ सूडान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुबा में 210 भारतीय शांति सैनिकों, जिनमें 6 महिलाएं और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल प्रदान किए गए। मिशन ने इस भारत के ब्लू हेलमेट्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मिशन ने कहा कि संकट, चिकित्सा आपात स्थितियों और जीवन बचाने वाले अभियानों के दौरान भारतीय शांति सैनिकों का साहस और मानवीय संवेदना लोगों की जान बचाने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में वर्दीधारी कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। वर्तमान में भारत विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 4,200 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मी, जिनमें 155 महिलाएं शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। राष्ट्रपति सचिवालय ने बयान में कहा कि समारोह के दौरान नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाली सेना तथा नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: तेहरान में पत्रकारों से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जहाजों के आवागमन के मार्ग के नक्शे को लेकर सहमति बन गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये समझौता अमेरिका की अपेक्षाओं को पूरा करेगा या नहीं। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए 60 दिन की बातचीत की अवधि समाप्त हो रही है। समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई सूचना नहीं है और दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। संघर्ष से पहले विश्व की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पश्चिम एशिया के वार्ताकार जेरेड कुशनर ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। इससे एक दिन पहले उन्होंने मिस्र में फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास के प्रमुख खलील अलहैया के साथ निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर बातचीत की थी। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने धमकी दी कि अगर मस्कट से इस अहम समुद्री रास्ते पर वॉशिंगटन के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली तथा सिमन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने महिला डबल्स तथा MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। इंडिया डिसमेंटल्स ISI बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अरेस्ट्स ओवर 200 ऑपरेटिव्स। इंडियंस इन कतर कैन नाउ सेंड मनी होम थ्रू UPI फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस। Over 200 Indian peacekeepers deployed with UN mission in South Sudan awarded prestigious medal for exceptional service. Iran reaches agreement with Oman to manage transit of ships through Strait of Hormuz. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gali Test. India destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day.

पहली बार तो नहीं, बहुत बार मिलते हैं, लेकिन प्यार जो है ना वो हमेशा होता है। वो कहते हैं ना कि प्यार को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, बस कभी किसी को पहली नजर में देखकर दिल ठहर जाता है और कभी धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं इस गीत की तरह। जी हाँ, अभी जो आपने गीत सुना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने और फिल्म साजन। तभी तो कहते हैं कि जो पहली मुलाकात होती है वो कुछ अलग होती है, एक छोटी सी नज़र, एक हल्की सी मुस्कान, और दिल को पता ही नहीं लगता कि सामने वाला जो है वो अपना सा है या फिर पराया सा। लेकिन जनाब, प्यार अगर पहली नज़र में हो जाए तो फिर दिल की हालत का क्या कहना है ना, क्योंकि जब प्यार दिल में दस्तक देता है तो सबसे पहले असर होता है दिल की धड़कनों पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुमार सानू की आवाज में आपने सुना ये गीत फिल्म चमत्कार से। प्यार की खूबसूरती शायद यही है कि इसमें बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, एक नजर ही काफी होती है, एक मुस्कान ही काफी होती है ना। और कभी कभी तो खामोशी भी पूरी कहानी कह जाती है। और जब प्यार सच्चा हो तो दिल बस इतना चाहता है कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। तो बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब बारी आती है हमारे अगले गीत की।

1994 में आई फिल्म मोहरा से आपने ये गीत सुना, साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया वीजू शाह ने और इस गीत को लिखा इंदीवर ने।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में समय रहेगा समाचार का। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से

0: इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले

0: दिल्ली का एसटीडी कोड 0111 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार निखिल, नमस्कार अनुभव, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर।
2: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,300। SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes, and global crude oil prices rise.
0: शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 300 अंक की सुस्ती, जबकि निफ्टी 24,300 अंक के नीचे बंद हुआ। सेबी के प्रमुख ने कहा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अभी जारी रहेगा, सेबी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी लाएगा। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And listeners, we will be taking calls from you and Mr. Sharad Kohli will be answering them. But before that, do remember that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil.
1: श्रोताओं आपको बता दें घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.36% यानी 281 अंक गिरकर 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.32% यानी 78 अंक गिरकर 24,288 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज बढ़त का रुख देखा गया। मिड कैप सूचकांक में मामूली तेजी आई जबकि स्मॉल कैप में 0.4% का उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points or 0.36% to close at 77,728. The Nifty lost 78 points or 0.32% to settle at 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, एचसीएल टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे। इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 15 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिक्लाइंड 1.7%, फोकस्ड आईटी ड्रॉप्ड 1.6% एंड टेलीकम्युनिकेशन फेल बाय 1.2%। इन कॉन्ट्रास्ट रियलिटी इंक्रीज्ड 1.4%, metal gained 1% and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,353 companies declined, shares of 2,087 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: पोली सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
2: सर, कटेडे को नहीं आए थे आप सर?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत हो रही है, बताइए।
2: ठीक है सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करेंगे सर वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें अब बाइंग कर सकते हैं? दूसरी चीज सर, जो अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 पे जैसे इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है? हेलो सर।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे और सडनली वो ओपन हो जाता फिर से 435 पे, तो उसके बाद 340 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आ जाती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही 100 रुपए पे ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा और डर सा ज्यादा लगा रहता है। धन्यवाद सर।
3: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज हैं। रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो अब जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होती है तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर कूल डाउन होने, सबसे बड़ी उसकी पहचान यह है अमित कि उस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स फिर स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है। और ये तो बहुत आसान है पता लगाना, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर है, FMCG है, डिफेंस है, IT है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूं, आप सेक्टर्स की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर जो होता है, हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
4: जी।
3: तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा, आपने पूछा अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पे लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है। ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैश, तो इसमें अब आखिरी वक्त पर ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है। जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है ठीक यही परेशानी ज्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है, इसको लेके काफी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है निफ्टी, एकदम नीचे चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा हालांकि मेरे अंदाज से ज्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
0: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग about this closing auction session, the concerns that Amit has raised and which Arshada ji just addressed, the SEBI chairman, Securities and Exchange Board of India chairman Tohin Kamta Pandey addressed those concerns today, and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, Mr. Kant, the SEBI chairman is aware of the concerns, and of course, the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
3: Absolutely. I think, as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system, you know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, update the system which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
1: Jitendra hai, Jaipur se unse baat karte hain. Jitendra, aapka prashna puchhiye.
2: हाँ सर, जैसे IPO निकलता है तो मैं उसको देखा, तो जैसे एक OFS था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, फेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है, तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फेस इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने किसको क्या मार्क करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो

0: लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
1: आपका जितेंद्र दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने आईपीओ ओएफएस और नेट ऑफर टू पब्लिक आया है। आईपीओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका। तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफे कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है, उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
2: रिस्क मैनेजमेंट की शायद बात कर रहे थे,
1: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आया जी।
3: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, इट्स कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। दिनेश हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दिनेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे।
0: हेलो
3: जी, हाँ जी बताएं। जी
0: हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो हम भी बहुत आ रहा है,
1: दिनेश जी ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है।
3: वी विल आस्क यू दिनेश जी, आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। रत्नाकर हैज जॉइंड अस।
4: हेलो
2: जी रत्नाकर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में एक प्री ओपनिंग सेशन होता है
1: जी,
4: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन, और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्ट्रिप डाल सकते हैं क्या, और उसका असर जब भी मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को तो उसमें क्या होता है, ये सवाल है। और तो दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है। थैंक यू।
1: चलिए रत्नाकर जी, दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है। तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है, इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग के लिए खुल जाती है। इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है, पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से। तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल, उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है। आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा, कभी आप उसको ट्राई करेगा, अपने अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय। पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं। दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, हालांकि आप ये पहले कई दफे पूछ चुके, मैं फिर बताना चाहूंगा। FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो EVs पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नजर बना के रखते हैं। IT वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है, ऑटोमोबाइल नॉन ईवी सेक्शन में डाइसी है, ऑयल कंपनीज भी डाइसी है, स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा अब तेजी पकड़ता यहां से नजर आ रहा है, खासकर कॉपर हो गया
2: जी।
1: और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है जी।
2: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर है। दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से।
5: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी बताइए।
5: ये जो डॉलर रुपी का रेट है, रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स, एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है, तो क्या हमको रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके। एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड, लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। तो व्हाट इज द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विज स्ट्रेंथन कर सके?
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डिवैल्यू कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए, ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है। और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज्यादा रहना है, आज भी $90 के आसपास है, हमें ज्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमजोर होता है। अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी, बल्कि आरबीआई ने अभी FCNR बी डिपॉजिट्स निकाले, उसमें $52.3 बिलियन आया है। अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं, पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी। तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है, जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है, ऐसे जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो रुपी पे प्रेशर पड़ता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ RBI अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है, और RBI डॉलर रुपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में, तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा, और पूरी RBI इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए, पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है।
2: और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रहेगी, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है? दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया, और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
1: देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूं अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं, कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती है मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और ऐसा, उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी GDP की अच्छी रफ्तार और अभी IIP के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद AI की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारतीय भारत के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसको मार्केट जिसको क्यू लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
3: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, यू वर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ, बाय सम यू नो सम एस्टिमेट्स, द Q1 रिजल्ट्स हैव कम आउट बेटर देन एक्सपेक्टेड, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी सी द मार्केट्स आर नॉट रिएक्टिंग to those better than expected results.
1: I think Anubha, market the international factors are overriding,
3: right,
1: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon, they say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time,
3: right. Let's move forward.
2: Aur agli khabar par aage badhte hain. Sarkar viksit Bharat ka lakshya hasil karne ke liye banking sudhar par jald hi uchch stariya samiti gathit karegi. Vitt mantri Nirmala सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का यह बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही हैं, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बनाकर के चलने की।
1: जी हां, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब एनपीएस का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहां जहां रिकवरी है वहां रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीन अप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन बहुत अच्छे आई है, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास

0: रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
1: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
2: जी हाँ, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
3: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक यूनिक जो चीज है, हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला कि ये यूनिक होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा सवाल मेरा भी है कोहली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अभी जो यूक्रेन, रशिया, ईरान और बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग में डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में इस बिजनेस में बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफी लोगों की तादाद में काफी रोजगार मिलने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए?
0: चलिए, प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज बहुत अच्छा लगता है आवाज अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं प्रीतम जी बोलूंगा कि यूलिप बहुत बहुत अच्छी स्कीम मैं नहीं मानता हूँ। बैंक वगैरह जो उसको बेचते हैं वो ठीक है, उनका काम है बेचना, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मिक्स करने से क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते और बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले जाते। तो मेरा मानना है कि जिसको इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस आप लीजिए इंश्योरेंस के लिए, रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट आप करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत ज्यादा यूलिप का निजी तौर पर बहुत फैन नहीं हूं, और सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है नहीं ले पाती, ये तो प्रश्न चिन्ह है। पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी, तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है, ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब वगरीब। पहले लड़ाइयां होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है।
1: और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए, बाद में कंस्ट्रक्शन। और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme, or ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I am still continuing job at the age of 59. Kindly help me, is it the right thing or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
0: Well, Mukesh, I would suggest in such a case, you should contact the Provident Fund authorities because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest because you've retired from there. So obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58, if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest and it's all online these days. It's going to be quite easy, Mukesh. Right.
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in. And a look at the gold and silver prices, Nikhil.
2: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई. वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
0: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहां तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए. उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक. तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है. जैसे बोलते हैं अभी कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता. $90 है और खतरनाक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगर ये $100 और उसके बाद जाता है हमारा इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती क्या पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है, पर और ज्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती है. और चाइना है, कोरिया है, इनके लिए दिक्कत आ सकती है.
2: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: शुक्रिया, थैंक यू.
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,300. सेबी चीफ बैक्स कंटिन्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, सेज रेगुलेटर विल रिव्यू इंडस्ट्री फीडबैक एंड make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

अभिनेत्री फिल्म से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन में इतने बस इतना ही। राखी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि

0: आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन SPV की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नबीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। PV सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operation across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and the Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency NTA, and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. The Qatar inter-remittance service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with CEO of Checkpoint Software, Nadav Zafriv, in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said during the meeting they discussed the company's growing engagement in India, including its research and development expansion and the use of AI-driven security to protect India's digital public infrastructure. The enumeration phase of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of the electoral roll in Delhi concluded yesterday. According to Office of Chief Electoral Officer in Delhi, about 1 crore 45 lakh forms were distributed as part of the exercise in Delhi. Over 97 lakh enumeration forms have been digitized as of yesterday. Claims and objections can be filed from the 24th of this month to 23rd of September. The final electoral roll will be published on the 27th of October. The IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand today. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh today. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inaugurated the Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2026 in Dehradun yesterday. The competition will continue till Thursday. A total of 272 players from 14 Asian countries are participating in the event, including 130 Indian players. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। निशिगंधा, रात की खामोशी में घुलती हुई मधुर धुनों का नाम, यादों की उन गलियों में लौट जाने का बहाना, जहां हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। कुछ गीत मोहब्बत की पहली दस्तक है, कुछ बिछड़ने की कसक, कुछ गीत बीते दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने सजा देते हैं, तो कुछ यूं लगते हैं जैसे कोई अपना कुछ दूरी से ही सही आवाज दे रहा है।

अनामिका फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तो आइए इस सुहानी रात में बीते जमाने के उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ पल बिताएं, जिन्हें सुनकर वक्त थम सा जाता है और दिल कह उठता है, कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वो बस हमारी यादों में और गहरे उतर जाते हैं।

अभिनेत्री, फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मधुर सुरों से सजी ये गीत जब कानों में रस खोलते हैं तो मन की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हर धुन अपने साथ यादों की कोई मीठी तस्वीर ले आती है और दिल को सुकून से भर देती है। ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ सजती है संगीत की ये सुहानी महफिल।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब दिल में कोई मीठी सी हलचल हो, यादों में कोई अपना उतर आए और हर धड़कन कोई अनकही बात कहने लगे, तो दिल शायर हो ही जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 54 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कॉलेज गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार जब दिल से निकलता है तो उसे कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी कोई मीठा सा गीत ही दिल की पूरी कहानी कह जाता है।

टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। हुस्न की तारीफ हो और अंदाज में थोड़ी सी शरारत ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। कभी दो दिलों के बीच प्यार भरी नोकझोंक तो कभी एक दूसरे को पसंद करने का खूबसूरत इकरार, यही तो मोहब्बत को और भी दिलकश बना देता है।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जब किसी की मौजूदगी की आदत दिल को लग जाए तो उसकी गैर मौजूदगी हर पल महसूस होती है। घड़ी की सुइयां चलती तो हैं मगर वक्त जैसे ठहर सा जाता है। हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द घूमता है और दिल बार बार बस यही सवाल करता है, आखिर ये कैसा एहसास है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं

0: का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने धन के प्रवाह की मौजूदा और बदलती स्थितियों की कल समीक्षा के बीच आज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR नीलामी की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी आज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और धनराशि 19 अगस्त को वापस होगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को आयोजित 2 VRR नीलामियों के बाद की गई है। पहली नीलामी में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 96,914 करोड़ रुपए 5.24% की कट ऑफ दर पर स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme, ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and the Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and the CBI probe are still pending. The protesting students announced what they would discuss their remaining demands and decide the next course of action. Delhi government is set to augment medical education capacity across the national capital through a phased expansion of undergraduate, postgraduate and super speciality medical seats. As part of this roadmap, the government has adopted a three-pronged approach comprising greenfield projects, brownfield expansion of existing institutions and the expansion of postgraduate and advanced medical programs.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, दिल को फिर होश कहाँ, राह का पता कहाँ, तेरी चाहत ने कुछ यूं थाम लिया दिल को कि जहाँ भी गए बस तेरा ही ख्याल साथ चला।

ये रात फिर ना आएगी। आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। आज भी इन हवाओं में उस मुलाकात की खुशबू बसी है और इस खामोश फिजा में जैसे वो गुजरा हुआ पल फिर से मुस्कुरा उठता है। वक्त आगे बढ़ गया, मौसम बदल गए, मगर उस मुलाकात की याद आज भी दिल में उसी तरह महकती है।

जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट कर फिर आएगी। आपकी यादों की महक हर पल दिल को छू जाएगी। दूर जाने से भला कहाँ कम होता है किसी का इंतज़ार। आप जहाँ भी जाएंगे ये दिल आपको पुकारता रह जाएगा। मेरे सनम फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

लेमन टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:34 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना। रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कभी कभी किसी से बार बार मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं रहता, हर मुलाकात दिल में एक नई हलचल लगा जाती है। न जाने कब अनजाने में किसी की आदत हो जाती है और कब वही आदत मोहब्बत की शक्ल ले लेती है।

शम्मा की लौ भी बेकरार है उसे अपने पास बुलाने को, और परवाना भी चला है उसी आग में खुद को मिटाने को। इश्क की ये कैसी कशिश है, कैसी है कहानी दिल लगाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफी की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से आपने ये गीत सुना, रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ज़रा दिल को संभलने दीजिए, फिर चले जाइए। आपसे मिलकर यूं लगा जैसे कोई ख्वाब उतर आया हो। इन खूबसूरत पलों को ज़रा आँखों में ठहर जाने दीजिए। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको, दिल की बात पूरी हो जाए फिर चले जाइए।

दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉयल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। कल नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के

वक्त हुआ है 2:10, वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। जिंदगी चाहे कितने ही मोड़ ले, वक्त चाहे हमें कितने भी दूर कर दे एक दूसरे से, मगर दिल में बसे इन रिश्तों की मिठास और साथ बिताए वो अनमोल पल हम कभी नहीं भूलेंगे।

बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी कभी मोहब्बत का सबसे हसीन रंग वही होता है जो पास होकर नहीं दूर रहकर महसूस होता है।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 19 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजिया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। सूनी सूनी इन आंखों में फिर से कोई हसीन ख्वाब सजाए, दिल की जमी मुद्दत से प्यासी है, कोई घटा बनकर आए और मोहब्बत की बारिश बरसाए।

फिल्म अपनापन का आपने ये गीत सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कोई

पल बनकर दिल में ठहर जाता है, कोई रिश्ता बनकर उम्र भर साथ चलता है। रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, मगर बीते हुए लम्हों की खुशबू कभी कम नहीं होती। शायद जिंदगी का यही दस्तूर है, हम चले जाते हैं मगर हमारी यादें किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।

हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कितनी गहरी बात है। जिंदगी आगे बढ़ती रही, मौसम बदलते रहे, मगर दिल में बसी उस मोहब्बत की याद आज भी वैसी ही है। कुछ प्यार भुलाए नहीं जाते, बस उम्र भर चुपचाप दिल में बसे रहते हैं। सौतन की बेटी फिल्म का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधि मंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। तेज बहाव से रास्ता खराब होने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पैदल पुल बनाया। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी

एक रोमांचक मुकाबले में शी यूकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इससे पहले पुरुष युगल की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी दूसरे राउंड में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी गहरी होती जाती है, कुछ यादें उतनी ही करीब आती जाती हैं। कभी कभी बरसों बाद भी किसी की एक मुस्कान दिल में वैसे ही ताज़ा रहती है जैसे उससे अभी अभी मुलाकात हुई हो।

रिश्ते सिर्फ कस्में और वादों से नहीं बल्कि एक दूसरे की खामोशी समझने से खूबसूरत बनते हैं। सच्चा प्यार वो है जिसमें वक्त बदल जाए मगर दिल का भरोसा ना बदले।

जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी यादों का कोई पता नहीं होता, मगर रात की तन्हाइयों में उनका एहसास अक्सर सबसे ज़्यादा महसूस होता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल की हर बात जुबा तक आ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती। आंखों की एक झलक और खामोशी का एक पल ही बहुत कुछ कह जाता है।

रात के इस सन्नाटे में अगर कोई चेहरा बार बार याद आ रहा है तो शायद वो सिर्फ याद नहीं, दिल का वो खूबसूरत कोना है जहाँ किसी अपने की मौजूदगी आज भी कायम है।

0: मोहब्बत में दीवानगी का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी है। जिसे दिल सच्चाई से चाहे, उसकी मुस्कान दूर रहकर भी दिल को सुकून दे सकती है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस प्यारे से गीत के साथ।
1: बात पहरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर व उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर एक चीन के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मैच में शियू की को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौहली और गायत्री गोपीचंद की

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म मेरा नाम जोकर के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है को अपनी आवाज़ से सजाया है मुकेश ने, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म उपकार से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार गुलशन बावरा।

अभी आपने गीत सुना फिल्म शेषनाग से अनुराधा पोडवाल सुरेश वाडकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म तोहफा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, साथ में बेबी कविता, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा और इसी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज़ में

झुके जो तेरे नैन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर उषा खन्ना की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार अनजान। आगे बढ़ते हैं सुनते अगला गीत फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

और इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और छोड़ के जा रही हूँ इस गीत के साथ, गीत है फिल्म सत्या से लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार विशाल, गीतकार गुलजार। जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड

0: घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्ययोजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातोत्तर तथा उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े प्रत्येक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना का चरण कल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए, 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। इसमें अनुसंधान और विकास विस्तार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो होर्मोज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर वाशिंगटन अगले कुछ हफ्तों में अंतरिम समझौते को लागू नहीं करता तो ईरान अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमरीका के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ी हैं। सोमालिया के बेदुआ में सरकारी बलों ने एक हमले को नाकाम करते हुए अल शबाब के लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया। कई अन्य को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आतंकवादियों ने सोमालिया के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वाहनों में रखे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में अपने दूसरे पूल डी मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। भारत ने ओलंपिक में रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that the security forces ripped apart the network by

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस भजन के साथ जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है रविंद्र जैन ने।

सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो जैसे प्रकृति कहती है, मन पर बीती बातों का बोझ मत रखो, आज को मुस्कुरा कर जियो, मन को गुनगुनाने दी।